मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:56 और 53 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में देशभक्ति गीत के साथ।

श्रद्धा मन में धार के साई का लूना रखो सबूरी हृदय में पूरे होंगे काम।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।
1: ईद अजहा कुर्बानी की एक बेमिसाल यादगार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए खुलूस दिल से अपनी कुर्बानी को अंजाम देना कबूल किया था। अपने अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की तरफ अपनी मोहब्बत के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी का नजराना अकीदत पेश कर यह साबित कर दिया कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ की भी कुर्बानी दी जा सकती है। यही वो मुकद्दस दिन है जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दें। इस ख्वाब के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मीना के मैदान में ले जाते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस कुर्बानी से उन्हें गुमराह करने के लिए शैतान ने उनके बेटे इस्माइल और उनकी बीबी हाजरा को अनेक तरीक़ों से बहकाया, परंतु अल्लाह के बंदों ने शैतान को पत्थर मारकर भगा दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ज़मीन पर लिटाकर उनके गले पर छुरी चलाना चाहा, तो उसी समय गैब से आवाज़ आई कि है ऐ हज़रत इब्राहिम, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई, अब तुम इस्माइल के बजाय दुम्बे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म से अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के इस अकीदत ने ईद अजहा के इस खुसूसी मौके को कुर्बानी करने का दिन माना है। ईद अजहा का त्यौहार कुर्बानी के साथ ही हज की रस्मों की अदायगी के लिए भी मनाया जाता है। इस्लाम के फ़र्ज़ों के मुताबिक कुरान शरीफ की रोशनी में हज हर मुसलमान पर ज़रूरी है, बशर्ते ऐसा हर मुसलमान जो इतनी हैसियत वाला हो कि अपने खुद के हज के खर्च और अपने हज के दौरान अपने से परवरिश पाने वालों के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात को पूरा कर सके। सही मायने में हज का मतलब है किसी बड़े काम को

0: अंजाम देना या ज्यारत की कार्यवाही को अंजाम देना। हज की तमाम रस्में 5 दिनों में पूरी तरह से मुकम्मल की जाती हैं। इन रस्मों की अदायगी का ताल्लुक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक यादों को ताज़ा करने के लिए की जाती हैं। इस्लाम की रोशनी में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4500 साल पहले अपनी बीवी हाजरा और उनके नन्हे बेटे इस्माइल को अरब के जंगलों में छोड़ दिया था। वीरान जंगल और कड़ी धूप से तपती रेत में कुछ अरसा बाद ही नन्हे हज़रत इस्माइल पानी की प्यास से तड़पने लगे। नन्हे बच्चे की प्यास को महसूस कर उनके लिए पानी की तलाश में हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ती रही थीं। उनकी इस तड़फ को देखकर अल्लाह के हुक्म से वहां पानी का चश्मा गैब से फूट पड़ा, जिसको आबे जमजम कहा जाता है। हज में जाने वाले अराकीन इस पानी को अपनी पूरी अकीदत के साथ पीते हैं और अपने साथ लाते हैं। हज़रत हाजरा के इन पहाड़ियों में लगातार दौड़ने की याद को ताज़ा करने के लिए हज करने वाले सफ़ा मरवा की पहाड़ियों में दौड़ते हैं, इसे सही करना कहते हैं। इस्लाम की रोशनी में कुर्बानी के साथ ही हज को भी हर मुसलमान पर ज़रूरी करार देकर आयत किया गया है, बशर्ते कुर्बानी का मकसद अल्लाह की राह में हो, ईमान पर हो और अल्लाह के लिए हो। हज की फ़राइस को भी ज़रूरी करार दिया गया है। हज के दौरान जिन हुकूकों को अंजाम देने की हिदायत दी गई है, अल्लाह अपने बंदों को ज़रूरी फ़राइसों को पूरा करने की तौफीक दे और बंदा अपने रब की राह में कुर्बानी, हज, इबादत और बंदगी को सही ढंग से अंजाम देकर अपने फ़र्जों की अदायगी करे, यही इस्लाम का मकसद है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर था मखदूम शाह का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। गायक हैं भूपेंद्र सिंह, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

ज्ञान और भक्ति मार्ग की मीमांसा करते हुए काकभुशुंड ने जहां ज्ञान को दीपक की संज्ञा दी, वहां दूसरी ओर भक्ति को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है। इस मणि का जिस हृदय में निवास होता है वो अपने आप अनन्य रूप से परम प्रकाशित हो जाता है। ये ऐसा धन है जिससे मोह रूपी दरिद्रता मिट जाती है। लोभ रूपी हवा उसे दीपक की भांति बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाश रूप है जिसे दीपक की भांति किसी साधन से प्रज्वलित नहीं किया जाता। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होता है उनके समीप काम, क्रोध, लोभ और मोह नहीं आ सकते। भक्त के लिए विष भी अमृत के समान होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः चतुर उन्हें जानना चाहिए जो इस अनुपम मणि को पाने का यत्न करते हैं, और इसे प्राप्त करना कष्टसाध्य नहीं होता। इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राम कथा, सत्संग, सुबुद्धि, विवेक और वैराग्य के द्वारा सहज ही इसे प्राप्त कर लेते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। गायक थे भूपेंद्र सिंह, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि साम्य की बेड़ा खाड़ा चौगोट।
1: गांवकारी काश्तकार भाई बहन मन, तुम्ही सपाय बरण बरण साग भाजी पाक फरमांचो कमानी करसास। मानतर मांडमांगा गोटक असन जिनिस आहे जेचो उपयोग आम्ही साग चटणी संदानने बले करू से। तो इतरो गुण भीती मांडमांगाचो नंगत और आगर उपजन कसन धरू सकास एके मैं सांगे से। मांडमांगाचो कमानी काजे पानी निकरतो भीती बारूसरिया दुई मटिया भूई नंगत रहे से। मांडमांगाचो दुई प्रकारचो किसम आहे, गोटोकाय उन्नत किसम, गोटोकाय संकर किसम। उन्नत किस्म मनाए पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, अर्का सौरभ, अर्का अनन्या, अर्का आभा और काशी अमृत। संकर किस्म है पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 8, अविनाश 2, रश्मि और सोनाली। कितरो बीज लागे से बलो ने उन्नत किस्म चो बीज 350 ले 400 ग्राम अढ़ाई एकड़ ने और संकर किस्म चो बीज 150 ले 200 ग्राम अढ़ाई एकड़ काजे नगत आए। बुनते समय कसन होता रहा बोलो ने नर्सरी काजे ओल दाए जुलाई ले सितंबर महीना और शीत दाए नवंबर ले दिसंबर महीना ने पल्हा पकौक लाए सकू। असने रोपते समय ओल दाए अगस्त ले अक्टूबर महीना तक रोपुक सकू और शीत दाए दिसंबर ले जनवरी महीना तक रोपुक सकू। पल्हा काजे कसन क्यारी तैयार करते रहा बोलो ने 1 मीटर ओसार, 5 मीटर लाम और 15 सेंटीमीटर डेंग क्यारी बनाते रहा। क्यारी बना तो पहिल माटी के भुरभुरा बनाऊ, कूलो गोबर खाद 10 ले 15 किलो और माटी उपचार काजे 100 ग्राम फोरेट मिसा तो रहा। बीज के कार्बेंडा जिम 3 ग्राम के 1 किलो बीज हिसाब ने उपचारित करून 5 सेंटीमीटर दूरी ने धाड़ी ले बुनतो रहा। बीज निकलो पाछे बूटा के कीड़ी मन ले बचातो काजे 2 ग्राम मेनकोजेब नहले कार्बेंडा जिम के 1 लीटर पानी ने घोरून छिंचतो रहा। बूटा के पाना मोड़ तो बीती कीड़ी ले बचातो काजे

हुलहुली में आप सुन रहे थे हिंगलाजिन मातापाड़। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे शाम 4:00। सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण सुनेगा नाटक मंजिल की तलाश, लेखक थॉमस चाको, प्रस्तुति होगी शाहिद हुसैन की और होगी मधुरिमा। लोक मंजरी में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुबह 8:30 पर। सुबह 9:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म सफर के गीत सुबह 9:30 पर। सुबह 10:00 गुलशन में सुनिएगा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दों में आप सुनेंगे धुरवी आदिवासी गीत सुबह 10:30 पर। कलाकार होंगे सामनाथ और साथी। एक ही कलाकार में आज आप सुनेंगे फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की फिल्मों के गीत सुबह 11:00। सुबह 11:30 पर पेश करेंगे गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता। पाटावेनार में सुनिएगा पार्वती और साथियों के गाय ध्रुवी गीत दोपहर 12:00। दोपहर 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। पेड़ा खाड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कला और कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 से FM बैंड 100.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

0: शाम 7:21 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। डांडामाली में सुनेगा कोया और साथियों के गाए धुधवी गीत रात 8 बजे। रात 8:30 पर पिला मन काजी कोट में आज आप सुनेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में, प्रस्तुति होगी शंभुनाथ नाग की। ग्राम पंचायत की विकास गाथा में सुनिएगा वार्ता, विषय होगा संस्कृति विरासत परंपरा व्यवस्था और जैव विविधता। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। वक्त होगा रात 9:15 का। रात 9:30 पर घुमकली में सुनिएगा भतरी नाट गीत, कलाकार होंगे नंदोराम भारती और साथी। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। रात 10:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। श्रोताओ, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां 7 महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुम्, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुम्, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यम् अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ़ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चम् औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति।

0: स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः द्वादश जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यते। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

हर एक दिल में उजालों का सफर बाकी है, हर नई सुबह में उम्मीद का असर बाकी है। नई सुबह की ताजगी, खास दिनों की सकारात्मक भावना और संगीत के मधुर सरगम के साथ। नमस्कार, जगदलपुर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति परिडा। स्वीकार कीजिए मेरा अभिवादन। नमस्कार।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: श्रोताओ, आज ईद उल अजहा है और देश भर में ईद की रौनक है। भारत समेत दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लिए ईद उल अजहा, जिसे बकरीद भी कहते हैं, बेहद खास और पवित्र त्यौहार है। इस दिन लोग सुबह की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की रस्म निभाते हैं। ईद उल अजहा इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। बकरीद का पर्व चांद के दीदार पर निर्भर करता है। ये पर्व पैगंबर इब्राहिम के सर्वोच्च बलिदान और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और मोहब्बत का प्रतीक है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और खुशियां बांटते हैं। घरों में सेवैयां और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू त्यौहार की मिठास को और बढ़ा देती है। ईद हमें बताती है कि समाज में प्रेम, सहयोग और करुणा की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए।

0: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
1: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
0: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं नाटक मंजिल की तलाश। लेखक हैं थॉमस चाको, निर्देशक हैं शाहिद हुसैन।

0: मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़के से। न जाने किन बातों में खोया रहता है, न खाने की चिंता है और न ही सोने की। मैं तो हार गई हूँ इसे समझा समझा कर।
1: अरे भगवान, ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी है जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अरे क्या कर दिया है मेरे बेटे ने?
0: देखो जी, इस बात का ही तो मैं रोना रो रही हूँ। मेरा मतलब आपका ये चिराग न जाने किस बात की चिंता में हमेशा ये गुमसुम पड़ा रहता है, जैसे सारे संसार का बोझ उसी के सर पर पड़ा हो।
1: देखो देखो आशा, अपनी बातों पर जरा लगाम दो। शायद तुम ये जानती नहीं कि तुम्हारी बातों को सुनकर उस बच्चे के दिमाग पर कैसी चोट पहुंचती होगी। और वैसे भी बेचारा पहले से ही परेशान रहता है, और उस पर से तुम हो के।
0: हाँ हाँ, अब तो मैं ही आप लोगों को परेशान करने लगी हूँ ना। ठीक है, आइंदा से कुछ नहीं बोलूंगी। जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है वैसा ही कीजिए।
1: अरे आशा, मैंने तुम्हें बोलने से भला कब मना किया? मैं तो सिर्फ तुमसे ये कह रहा था कि बच्चों का उत्साह और साहस यदि हम ही ना बढ़ाएंगे तो भला और कौन बढ़ाएगा। ये तो हमारा फर्ज है कि जिगर के इस टुकड़े को हम अनंत ऊंचाइयों में जाते हुए देखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बेटा श्वेता, जरा देखना तो कौन आया है।
2: जी बाबूजी, अभी देखती हूँ। आइए अमित भैया, आइए। शायद आपके आने से प्रकाश भैया को लेकर माँ बाबूजी का चल रहा झगड़ा खत्म हो जाए और प्रकाश भैया भी खुश हो जाएंगे।
3: हाँ हाँ जरूर, पर ये बताए कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो माँ और बाबूजी झगड़ रहे थे?
2: आप ही अंदर चलकर पूछ लीजिए ना।
3: ठीक है। माँ जी प्रणाम, और बाबूजी आपको भी प्रणाम।
1: जुग जुग जियो मेरे लाल।
0: अमित बेटी, बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। घर का रास्ता भूल गए थे क्या? खैर हमारी छोड़ो, क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्त प्रकाश की भी याद नहीं आई?
1: अरे आशा, तुम भी कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो। अरे जानती नहीं हो, अमित अब एक सरकारी अफसर बन गया है। पहले वो शासन की सेवा करेगा या तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की खबर लेगा?
2: हाँ माँ जी, अमित भैया तो SDM बन गए हैं, अब कहाँ हम और कहाँ भैया।
3: श्वेता देखो, मेरा मुँह मत खुलवाओ है, फिर बाद में ये मत कहना कि भैया ने डांट दिया। अरे पगली, हमारे ऊपर शासन का इतना दबाव होता है कि चाहकर भी हम कहीं नहीं जा सकते, और देश सेवा भी तो जरूरी है ना।
2: सॉरी अमित भैया।
3: ठीक है, पर अब ये बताओ कि कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, या सिर्फ दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती हो? हैं
2: अमित भैया, एक बात कहूँ?
3: कहो, बिल्कुल कहो।
2: मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रही है। और रही बात टीवी देखने की, तो वो तो ऐसा है ना कि छोड़ नहीं सकती।
3: ठीक है ठीक है, छोड़ो अब तुम्हारी बात। अम्मा आप बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है, और बाबूजी आप ठीक ठाक तो है ना?
0: अरे बेटे, अब क्या तू हमारी तबीयत को पूछ रहा है? अब तो बस ऊपर वाले का ही सहारा है, जब तक चल जाए चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: देखो अमित बेटे, आशा को तो दिन भर न जाने किस चीज की फिक्र रहती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई बीमारी नहीं होने के बाद भी रोज कमजोर होती जा रही है, भगवान जाने क्या हो रहा है।
0: बेटे फिक्र कैसे नहीं होगी, घर पर जवान बेटा बेरोजगार बैठा है, और वह भी ऐसा एक बच्चा जो कि पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा है। न जाने कौन सा शनि चल रहा है, जहाँ भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है बस वहाँ से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, हमें खेद है आप उपयुक्त नहीं पाए गए हैं, और बेचारे के साथ फिर वही निराशा।
2: माँ तुम भी ना इतनी भी बेचैन मत रहा करो, देखना एक ना एक दिन प्रकाश भैया को अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी, ये मेरा मन कहता है।
1: हाँ आशा, तुम भी ना जाने अपना ये रोना कब खत्म करोगी, देखना देखना तुम एक दिन मेरा बेटा हमारे घर का नाम रोशन करेगा।
3: हाँ माँ जी, प्रकाश मेरा दोस्त है, मैंने तो उसे करीब से देखा है, देखना एक दिन आप अपने परिचितों और रिश्तेदारों को बुला बुला कर बताएंगे कि मेरा बेटा प्रकाश आज अफसर बन गया है, और उसने हमारे और अपने नाम को खुद ही प्रकाशित कर लिया है, उसके पास गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे, और न जाने क्या क्या।
0: चुप करे तू, भगवान जाने वो दिन कब आएगा।
3: आएगा माँ जी, जरूर आएगा, और जब वो आएगा ना तो अपने इस बेटे को मत भूल जाना आप।
0: देख अमित, तूने बहुत बातें कर ली, अब देख ज्यादा बोलेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
3: माँ जी माफ कीजिए, अब आप अपना काम कीजिए, और प्रकाश और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ श्वेता, कुछ गरम गरम पकौड़े और एक एक कप चाय तो पिला तू।
2: जी भैया, अभी लाई।
3: ठीक।
4: क्या बात है प्रकाश, तुम किसी की याद में खोए हुए थे शायद हैं?
5: क्या आदमी हो तुम भी, यहाँ मुसीबतों का पहाड़ टूटा जा रहा है और तुम तो बस।
4: अरे रे रे, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? याद है कॉलेज के वो दिन जब हम मस्ती में गुनगुनाते हुए संगीत के सहारे सारी रात गुजार दिया करते थे?
5: हाँ यार, भला उसे कैसे भूल सकता हूँ। वो भी क्या दिन थे, न कल की चिंता थी न आज की, बस हम दोनों में एक जुनून सवार हुआ करता था कि कौन क्लास में फर्स्ट आएगा।
4: हाँ मित्र, याद है और बहुत अच्छी तरह से याद है। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कॉलेज के दिन भी कितने हसीन थे। प्रकाश याद है, याद है तुम्हें वो वाली लड़की? ना जाने कितने पापड़ बेले थे हमने उसके पीछे है?
5: और हाथ में कुछ भी तो नहीं आया था।
4: अरे यार, सुना है कि उसकी शादी हो गई है।
5: हाँ सुना तो मैंने भी है, पर अपनी जुबान से बयान करने से दिल में दर्द उठता है। और अमित, जानते हो उसकी शादी अपने साथ ही पढ़ता था ना वो लड़का, भोपाल वाला,
4: वो प्रियांशु।
5: हाँ, वही प्रियांशु। मैंने किसी से सुना था कि वो लोग आजकल अमेरिका में हैं और उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली थी।
4: वेरी गुड।
5: खैर छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है?
4: ठीक है यार, अब जानते हो सरकारी नौकरी का हाल, हमेशा अधिकारियों का डर बना रहता है ना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ।
5: खैर ये सब तो हमेशा से होता आया है, कम से कम तुम इन सबों के साथ जीना तो सीख चुके हो। पर हमें देखो, कोई छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलती।
4: अरे यार, खच्चर को देखा है तुमने है ना, कितना भी बोझ डाल दो बेचारा सिर्फ यही सोचकर हमेशा चलता रहता है कि मिस्टर किस्मत में जो लिखवा कर आए हो वही तो करना है, है?
5: ऐसा नसीब भी अमित हर किसी को नहीं मिलता। अब मुझे ही देखो ना, लाख चाहकर भी खच्चर नहीं बन पा रहा हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि
4: बस प्रकाश, और आगे मत कहना। अच्छा तू ये बता कि पिछली बार तूने जो बैंक का पीओ का एग्जाम दिया था उसका क्या हुआ?
5: क्या हो सकता है, इंटरव्यू दिया था और रिजल्ट भी आ गया पर मेरा नंबर नहीं आया, जबकि मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था। और यार कहते हैं कि दुनिया पैसे वालों की है, वहां भला हम जैसे गरीबों की कौन सुनेगा।
4: कुछ कुछ तो सही भी कहता है। अब मुझे ही देखा ना, कितनी बार मैं भी पीएससी के अंतिम दौर तक अच्छे से पहुंचकर भी नकार दिया गया, पर दोस्त मैंने हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद के सहारे देख आज मैं एसडीएम बन गया हूं। और तू भी मत हारना और निरंतर प्रयास जारी रखना, देखना एक दिन तू जरूर जरूर कामयाब होगा। हाँ मेरे दोस्त। अच्छा प्रकाश ये बता कि पिछली बार तूने पीएससी का जो इंटरव्यू दिया था उस समय तेरी टीम में कौन कौन थे?
5: इसमें एक मिस्टर गोयल थे गोरे गोरे से, राघवन साहब थे, श्रीमती अंजलि और पी के शर्मा थे।
4: अरे शर्मा जी और राघवन तो मेरे इंटरव्यू के समय भी थे, बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे इस समय तेरा सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही था ना?
5: हाँ यार, सब्जेक्ट तो वही था और मेरी तैयारी भी अच्छी थी और उन्होंने जो भी प्रश्न किया था सभी का मैंने सही सही जवाब भी दिया था, पर न जाने क्यों इस बार भी मैं
4: प्रकाश हो गया। प्रकाश, हो सकता है कि कहीं तुझसे कोई गलती हो गई होगी जिसका तुझे अंदाजा नहीं लग पाया। फिर भी मेरा मानना है कि तू फिर से तैयारी में लग जा, देखना इस बार तू जरूर जरूर सफल होगा।
5: हाँ यार, इसी उम्मीद से तो जिंदा हूं। फिर कभी कभी मन में विचार आता है कि ऊपर वाला मुझे वहां बुला क्यों नहीं लेता।
4: प्रकाश देख, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि ऐसी बातें मत किया। अरे क्या हर हारने वाला व्यक्ति मर जाता है या भगवान उसे उठा लेता है? नहीं ना, अरे ये दुनिया तो एक तमाशा है, तमाशा जहां कभी कोई रिंग मास्टर होता है तो कभी कोई। देखना देखना एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा
5: अमित।

0: बेटा, प्रकाश शर्मा का घर यही है क्या?
1: हाँ हाँ यही है।
0: हाँ, एक रजिस्ट्री आया है, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए।
1: जी जरूर।
0: हाँ, यहाँ पर।
2: श्वेता, कौन है बेटी?
1: जी पोस्टमैन था, प्रकाश भैया के नाम से एक रजिस्टर्ड पत्र लेकर आया था।
2: रजिस्टर्ड पत्र? अब बेटे श्वेता, जरा दिखाना तो, किसने भेजा है? केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली। प्रकाश को नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर के लिए इंटरव्यू देने 23 अगस्त को जाना है। न जाने बेचारा कब तक यूं ही भटकता फिरेगा, कब मिलेगी उसे एक अच्छी सी नौकरी। प्रकाश, बेटे प्रकाश, देखो सेंट्रल स्कूल से तुम्हारे लिए इंटरव्यू कॉल आया है। 23 अगस्त को तुम्हारा नई दिल्ली में इंटरव्यू है।
3: बाबूजी, अब तक तो कुछ हासिल नहीं हुआ है, अब इसी में किस्मत आजमा कर देख लेते हैं।
2: हाँ हाँ बेटे, जाओ, देखना तुम जरूर कामयाब होगे।
1: भैया ये रही मेरी लिस्ट, इसे आते समय जरूर लेते आना।
3: बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर लौटूं।

0: आ गए तुम। कैसा था तुम्हारा इंटरव्यू?
1: बहुत अच्छा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आगे ऊपर वाले की इच्छा। माँ, बाबूजी नजर नहीं आ रहे हैं।
0: बेटे, बाबूजी और श्वेता श्रीवास्तव जी के यहाँ गए हुए हैं। उनका बेटा आया है ना इंग्लैंड से, उसी से मिलने गए हैं।
2: अरे प्रकाश बेटे, आ गए तुम। कैसा रहा तुम्हारा सफर? कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू?
1: जी, आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ था, सब कुछ अच्छा था। उन्होंने जो भी मुझसे पूछा, मैंने उन सभी का सही सही जवाब दिया है। इस बार देखना बाबूजी, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा।
3: प्रकाश भैया, मेरे लिए सलवार सूट और किताबें लाए या नहीं?
1: हाँ मेरी बहना, भला तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये लो तुम्हारी चीजें।
3: धन्यवाद भैया।
0: प्रकाश बेटी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ईश्वर का नाम लेकर ही हर काम किया करो। देखना, इस बार तुम जरूर सफल होगी।

0: राजपेठा, देखो सेंट्रल स्कूल न्यू दिल्ली से तुम्हारे लिए एक पत्र आया है। जरूर तुम्हारे अपॉइंटमेंट की खबर है। लो इसे तुम ही खोलो।
1: आप लोगों के आशीर्वाद से देखो मैंने सफलता प्राप्त की। लीजिए अभी इसे खोलता हूं।
0: क्या हुआ प्रकाश बेटे, तुम अचानक रुक क्यों गए? क्या लिखा है इस पत्र में?
2: हाँ हाँ बेटी, क्या लिखा है? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना?
1: माँ जी, इस पत्र में वो सब लिखा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी।
0: क्या कह रहे हो तुम?
1: बाबूजी, इसमें लिखा है कि हमें खेद है कि आप हमारे संस्था के योग्य नहीं पाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें आगे लिखा है कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
2: ये क्या कह रहे हो बेटे तुम?
0: हाँ, आशा शायद प्रकाश सही कह रहा होगा। नियति ने एक बार फिर हमारे साथ धोखा किया है। इस बच्चे की सारी आशाएं और मेहनत बेकार हो गई। न जाने कब इसे ऊपर वाला किसी मंजिल तक पहुंचाएगा।
3: भैया निराश मत हो, मैं आपके लिए ईश्वर से रोज प्रार्थना करूंगी। देखना, एक दिन मेरे भैया जरूर बड़े आदमी बनेंगे।
1: मेरी बहन, कितनी आशा थी तुम सबों को। आप लोगों के सहारे और प्यार के कारण ही तो मैं साहस जुटा पाता हूँ। बाबूजी परेशान मत होइए, आपका ये बेटा देखना एक दिन जरूर दुनिया को दिखा देगा कि वो भी आपका बेटा है।

0: प्रकाश बेटे देखो देखो, तुम्हारा पीएससी एग्जाम का एडमिशन कार्ड आया है। दिसंबर 23 को एग्जाम है तुम्हारा, अभी से तैयारी शुरू कर दो।
1: जी बाबूजी, आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरे लिए मूल मंत्र है। मैं पूरे मन से आज से ही तैयारी शुरू कर देता हूँ।
2: भैया, परीक्षा के पहले अमित भैया से सलाह जरूर ले लेना, ताकि आपको कुछ आइडिया भी मिल जाएगा और तैयारी भी अच्छी तरह हो जाएगी।
1: जरूर मेरी बहन, मैं आज ही अमित को फोन करके बताता हूँ।

0: देखो बेटा, आज पीएससी के मेन एग्जाम का रिजल्ट आया है, जरा बताना तू।
1: जी दिखाइए एक बार। मेरा रोल नंबर 156,416, 17, 18, 19। महा बाबूजी, देखिए मेरा रोल नंबर है इसमें। मैंने पीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर ली है। हाँ, मैं पास हो गया हूँ, मैं पास हो गया हूँ।
2: बेटा, भगवान को धन्यवाद दे, उसने हमारी प्रार्थना सुन ली।
0: हाँ बेटे, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। अब तू इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से शुरू कर दे, देखना इस बार तू जरूर सफल होगा।
1: जी जरूर बाबूजी, लेकिन पहले अमित को ये खुशखबरी देता हूँ।
3: पोस्टमैन, पोस्टमैन
4: जी, प्रकाश जी का घर यही है।
1: जी हाँ महोदय, मैं ही प्रकाश शर्मा हूँ।
4: जी, एक रजिस्ट्री है आपके लिए, लीजिए, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए।
1: जी धन्यवाद। बाबूजी, बाबूजी देखिए, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया है।
2: भगवान ने हमारी सुन ली बेटे। प्रकाश जल्दी खोलना इस लिफाफे को, देखो क्या लिखा है इसमें।
5: क्या लिखा है प्रकाश भैया?
1: माँ, बाबूजी देखिए, मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है। देखिए मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स पद के लिए हुआ है। श्वेता देखो, तुम्हारा भैया अब अफसर बन गया है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस गरीब परिवार की प्रार्थना सुन ली है।
0: शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। मुझे फख्र है, मुझे फख्र है तुम पर। देखा आशा, मैं कहा करता था ना, मेरा बेटा यकीनन एक दिन हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, मुझे तुम पर गर्व है।
2: मेरे बेटे, मेरे लाल, तूने तो आज ऐसा लग रहा है सारा जहां ही जीत लिया है। तुझ पर नाज है मुझे। शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे माफ करना, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा ना।
1: माँ, भला कोई माँ अपने बेटे से कभी माफी मांगती है? अरे ये तो आपका अधिकार है, मैं तो आपके खून का कतरा हूँ माँ, आपका पूरा हक है मुझ पर, आइंदा ऐसी बात मत करिए।
5: प्रकाश भैया, इनकम टैक्स कमिश्नर बनने पर कहीं इस गरीब बहन को भूल तो नहीं जाओगे?
1: चुप कर पगली। अरे ये तेरा प्यार ही तो है जो मैं आज इस मुकाम पर हूँ, भला तू ना होती तो तेरा ये भाई जीवन में अकेले घुट घुट कर कैसे जीता। तू तो मेरी आंखें हैं पगली, अरे बिना तेरे तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता।
2: चल बेटी, मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दे दे, आखिर उसने इस गरीब की प्रार्थना सुन ही ली।
0: जाकर मंदिर में माथा टेका, और हाँ, रास्ते में अमित के घर जाकर उसे ये खुशखबरी देना ना भूलना।
1: जी हाँ बाबूजी, अभी जाकर आता हूँ। और बाबूजी, मेरी पोस्टिंग इंदौर में हुई है, मुझे इस महीने के 19 तारीख के पहले ज्वाइन भी करना है, आते वक्त मैं ट्रेन का टिकट भी लेता हूँ। अच्छा बाबूजी, अब मुझे अनुमति दीजिए। माँ चलिए, बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। श्वेता बहन, बता आते समय तेरे लिए क्या लेकर आना है।
5: प्रकाश भैया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि हर व्यक्ति वह निराशा के अंधकार से निकलकर

अभी आप सुन रहे थे नाटक मंजिल की तलाश। लेखक थे थॉमस चाको। भाग लेने वाले कलाकार थे यास्मीन बानो, जी श्याम, के परेश, नारायण सिंह बघेल, जगदीश अधिकारी और शाहिद हुसैन। इस नाटक के निर्देशक थे शाहिद हुसैन। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोतो, 28 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस और विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें याद दिलाते हैं कि महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण आधार है। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक संतुलन, समय समय पर स्वास्थ्य जांच और स्वच्छ आदतों को अपनाना बहुत आवश्यक है। साथ ही महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी मिलना भी उतना ही जरूरी है। वहीं मासिक धर्म एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी आज भी इस बारे में कई भ्रांतियां, झिझक और चुप्पी देखने को मिलती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसे संकोच का विषय न मानकर सहजता और समझदारी से देखा जाए। सही स्वच्छता अपनाने, सुरक्षित साधनों का उपयोग और खुलकर संवाद करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। समय की मांग है कि चुप्पी की जगह संवाद हो, झिझक की जगह समझ हो और भेदभाव की जगह संवेदनशीलता। किशोरियों और महिलाओं को उचित जानकारी, स्वच्छ संसाधन और सम्मानजनक वातावरण मिलना उतना ही जरूरी है जितना शिक्षा और अवसर। परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाएं और समाज, सभी की साझा जिम्मेदारी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर खुलकर चर्चा हो और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिले, क्योंकि जागरूकता केवल जानकारी नहीं देती बल्कि आत्मविश्वास, सुरक्षा और बेहतर निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती है। और एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प ले जहां पर हर महिला अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग, समर्थ और निश्चिंत महसूस करे, भ्रांतियों को दूर करे, स्वच्छता को अपनाए और स्वास्थ्य को जीवन की प्राथमिकता बनाए, क्योंकि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार, संवेदनशील समाज और समृद्ध राष्ट्र की सच्ची पहचान है।

आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। नमस्कार जगदलपुर में अब वक्त है माधुरी माँ का, पर पहले ये संदेश।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

तुम चलो मंजिल की तरफ, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। तुम जो मुड़कर देखोगे, मुस्कुराते मिलेंगे हम नजारे।

फासले इतने हैं कि दिल धड़कता है सिर्फ तुम्हारे लिए, फासले इतने हैं कि दिल धड़कता है सिर्फ तुम्हारे लिए, कभी तो आओ मेरी इन बाहों में ताकि धड़कनों को सुकून मिले।

लोग कहते हैं तू अब भी खफा है मुझसे, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे।

0: आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
6: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से

0: पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
4: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुग्यो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
5: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
0: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा

0: लीजिए अब सुनिए राम और साथियों का गाया भत्री गीत।
1: गाड़ा चली गला बूढ़ा रो बोले।

सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से ये मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
3: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
3: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
3: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी।

0: सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे।

0: उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
1: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
2: बहन जी, डाकिया।
1: अच्छा, खोलते हैं भैया।
3: जी कहिए।
2: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
3: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
2: तो कोई बड़ा है घर में?
3: हाँ, घर पर माता जी है ना।
2: जी बुलाइए।
4: माँ।
1: हाँ।
4: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
1: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
2: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
1: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
4: माँ, माँ।
5: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
5: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
1: हाँ।
5: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं,
4: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
5: अरे योगेंद्र।
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का? तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: माँ,
6: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
6: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
7: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
7: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
7: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
7: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
8: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
9: जी साहब, जी साहब।
8: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
9: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
9: मुझसे?
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424। 42।
8: ओ 8700142424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700041424 पर।
7: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 1970 में प्रदर्शित हुई भावनात्मक और संगीतमय फिल्म सफर की। ये फिल्म 1970 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। जीवन, प्रेम और त्याग जैसे संवेदनशील विषयों को बड़े सादगीपूर्ण ढंग से इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया। अपनी गंभीर कहानी और प्रभावशाली संवादों के कारण ये फिल्म दर्शकों के दिलों तक पहुंची और उस दौर की चुनिंदा क्लासिक फिल्मों में इसका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का ये गीत।

अशोक कुमार, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान ने मुख्य भूमिका निभाई। सबकी अदाकारी बेहद प्रभावशाली रही और सभी ने अपने किरदार की छाप फिल्म में छोड़ी। अन्य कलाकार हैं आईएस जौहर, अरुणा रानी, नादिरा और महेश कोठारे। ये फिल्म की दृष्टि से भी बेहद मजबूत मानी जाती है। आइए अब सुनते हैं मुकेश के स्वर में फिल्म सफर का अगला गीत।

फिल्म सफर बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास चलाचल पर आधारित है। 1956 में बनी बंगाली फिल्म चलाचल, जिसका निर्देशन सफर के निर्देशक असित सेन ने किया था, उन्होंने हिंदी में सफर के नाम से रीमेक किया। फिल्म समीक्षकों के अनुसार फिल्म को राजेश खन्ना के अपार आकर्षण से बखूबी संभाला गया, जो समय अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। ये फिल्म राजेश खन्ना की 1969 से 1971 के बीच की 17 लगातार हिट फिल्मों में गिनी जाती है। धीमी गति के बावजूद फिल्म अपनी भावनात्मक ताकत से दर्शकों को बांधे रखती है। अगला गीत लीजिए सुनिए मन्ना डे के स्वर में।

फिल्म सफर का संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने, गीत लिखे हैं इंदिवर ने। फिल्म के गीतों को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश और मन्ना डे जैसे महान गायकों ने। जिंदगी का सफर और जीवन से भरी तेरी आंखें जैसे गीत आज भी अमर माने जाते हैं। संगीत ने फिल्म की संवेदनशीलता को और गहराई दी। लीजिए सुनिए किशोर कुमार के स्वर में फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

फिल्म सफर केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयों को दर्शाने वाली फिल्म है। बीमारी, रिश्तों की जटिलता और त्याग जैसे विषय को बेहद परिपक्वता से दिखाया गया। फिल्म के गीत आज भी रेडियो और मंचों पर बजाए जाते हैं और सुने जाते हैं, और ऐसा ही एक गीत है जिंदगी का सफर, स्वर किशोर कुमार का। लीजिए सुनिए ये गीत।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस संबंध में की गई मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाले ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझाव और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थान तथा अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आज से जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में शुरू हो गई है। कल 29 मई तक चलने वाले इस ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि योजना के तहत संस्थाओं के इम्पैनलमेंट और कक्षा छठवीं में प्रवेश की प्रक्रियाओं में वर्तमान में विलम्ब हो रहा है। इसी कारण प्रवेश प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल 29 मई से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। गुलशन में लीजिए सुनिए शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म खामोशी से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द गुलजार के, संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, राग है बरबा।

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म मेरा साया से। ये गीत राग नंद पर आधारित है। स्वर लता मंगेशकर का, बोल राजा मेहंदी अली खां का, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

अनुपमा अगला गीत इस फिल्म से स्वर लता मंगेशकर का, गीत कैफी आजमी का, संगीत हेमंत कुमार का, राग है खमाज़।

लीजिए अब सुनिए फिल्म बालिका वधू का गीत, आवाज अमित कुमार की, शब्द आनंद बख्शी की, तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने। ये गीत आधारित है राग हेमंत पर।

फिल्म है छोटी सी मुलाकात स्वरलता मंगेशकर का, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जय किशन का और राग है अड़ाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म महबूबा से जो राग मियां मल्हार पर आधारित है। स्वर दिया है मन्ना डे ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: गुलशन में आप सुन रहे थे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 बजे हैं। गुर्दों में लीजिए सुनिए सामनाथ और साथियों का गाया धुरवी आदिवासी गीत। पर पहले ये संदेश।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुरदुम में आप सुन रहे थे सामनाथ और साथियों के स्वर में धुरवी आदिवासी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 11:01 हुए हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: चन चन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
5: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
4: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने अपनी सोच से फिल्मों में रोमांस और पारिवारिक मूल्यों के ऐसे रंग बिखेरे कि हर कोई उनका दीवाना हो गया, जिन्होंने बड़े पर्दे पर सिर्फ कहानियां नहीं दिखाई बल्कि हमें खुलकर प्यार करना, त्योहार मनाना और रिश्तों की अहमियत को गहराई से महसूस करना सिखाया। आज वो सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का एक जगमगाता हुआ दौर बन चुके हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जादुई फिल्म मेकर की। नाम है करण जौहर।

इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 1972 को, जब सपनों के शहर मुंबई में इस होनहार बच्चे का जन्म हुआ। बचपन से ही जो बच्चा फिल्मों के माहौल और कैमरे के बीच बड़ा हुआ हो, उसकी आंखों में कुछ अलग करने के सपने तो होने ही थे। किसे पता था कि साउथ मुंबई की गलियों से निकलने वाला ये लड़का एक दिन अपनी जादुई सोच से पूरे बॉलीवुड की परिभाषा बदल देगा और दर्शकों के दिलों पर राज करेगा।

करण जौहर को विरासत में सिर्फ फिल्मों की समझ नहीं मिली, बल्कि वो अच्छे संस्कार मिले जो आज भी उनकी हर फिल्म में दिखाई देते हैं। उनके पिता यश जौहर, जो खुद फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े और सम्मानित निर्माता थे, और उनकी माँ हीरू जौहर ने करण को हमेशा अपने सपनों को पूरा करने का हौसला दिया। अपने माता पिता के लिए करण का जो अटूट प्यार और सम्मान है, वही भावनाएं उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती हैं।

साल 1998 में जब पहली बार करण जौहर ने डायरेक्टर की कुर्सी संभाली तो बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच दिया। वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है। राहुल, अंजलि और टीना की इस प्रेम कहानी ने युवाओं के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि प्यार दोस्ती है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि प्यार का मूल मंत्र बन गया। अपनी पहली ही फिल्म से करण ने यह साबित किया कि उनके पास वो हुनर है जो आम कहानियों को भी खास बना देता है।

इस फिल्म के बाद करण ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर और यादगार फिल्में बनाई। उन्होंने कभी खुशी कभी गम जैसी बड़ी पारिवारिक फिल्म दी, जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि अपने माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। फिर चाहे कभी अलविदा न कहना के उलझे हुए रिश्ते हों, मैंने मिस खान का गंभीर संदेश हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का यूथफुल अंदाज हो या ऐ दिल है मुश्किल जैसी फिल्में, उनकी हर फिल्म समय के साथ दर्शकों के दिलों में बसती चली गई।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
8: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं निर्माता निर्देशक करण जौहर। बहुत कम लोग जानते हैं कि करण सिर्फ कैमरे के पीछे ही जादू नहीं चलाते, बल्कि कैमरे के सामने भी उतने ही सहज रहे हैं। उन्होंने अपने अभिनय सफर की शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान के दोस्त रॉकी के सीधे साधे रोल से की थी, और सालों बाद फिर बॉम्बे वेलवेट में एक विलेन बनकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। आइए सुने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत।

जब हौसले बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। करण जौहर की दूरदर्शिता का सबसे बेहतरीन उदाहरण बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अस्त्रों की इस अनोखी और जादुई दुनिया को पर्दे पर उतारना एक रिस्क था, लेकिन करण ने इस पर पूरा भरोसा जताया। इस अद्भुत सिनेमाई अनुभव के लिए उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि करण जौहर को अपने करियर में अलग अलग फिल्मों के लिए कुल 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, जो उनके बेहतरीन काम पर देश की मुहर है।

करण जौहर के खाते में 8 शानदार फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। इसमें एक बड़ा मुकाम तब आया जब उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्म शेरशाह के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बनी इस फिल्म ने हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर दी। सिनेमा में इसी असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी नवाजा है। ये सभी सम्मान उनकी उस कड़ी मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने पिछले 30 सालों से इस इंडस्ट्री को दी है।

बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी करण जौहर का जलवा किसी राजा से कम नहीं है। उनका मशहूर टॉक शो कॉफी विद करण सालों से दर्शकों का पसंदीदा शो बना हुआ है, जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। इसके अलावा कई शोज में वे निर्णायक के रूप में अपनी हाजिर जवाबी से लोगों के चहेते बन गए हैं।

फिल्मी पर्दे से अलग करण की असल जिंदगी भी बहुत प्रेरणादायक है। वे सरोगेसी के जरिए दो जुड़वा बच्चों यश और रूही के सिंगल फादर बने और अपने पिता यश जौहर और माँ हीरू के नाम पर ही उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा। अपनी माँ के साथ मिलकर वे आज एक अच्छे पिता का फर्ज निभा रहे हैं। हमारी यही कामना है कि सिनेमा का ये चमकता हुआ सितारा आने वाले समय में हमें और भी कई बेहतरीन और यादगार फिल्में देता रहे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पहला गीत सुनवा रहे हैं अभिजीत सावंत की।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि

0: किससे मांगू?
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: ललित के गीत और संगीत निर्देशन में पेश है फाल्गुनी पाठक के स्वर में गुलदस्ता कार्यक्रम का अगला गीत।

0: राजू सिंह के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।
1: मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी जगदलपुर है। 11:55 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस संबंध में की गई

0: संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाले ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 31 मई तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान आम उत्पादन की नई तकनीकों, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आज से जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में शुरू हो गई है। कल 29 मई तक चलने वाले इस ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं में 23 से 25 जून तक प्रवेश लेना होगा। वहीं दूसरी चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल 29 मई से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रूप नारायण सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके निवास पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। दिन के 12 बजे हैं।
2: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।

0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम पाटा वेनार में अब सुनिए ध्रुवी लोकगीत। गायक कलाकार हैं पार्वती और साथी।

पार्वती और साथियों के स्वर में अभी आपने सुने ध्रुवी लोकगीत। कार्यक्रम था पाटा वेनार। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: তো বহিনমান, মাই তো সামিয়া দেখুন অমরলে, আর তুমি বলে সামিয়া দেখুন রেডিও কাটা বসলা সতি নে। তো আলে ঘর দ্বার কার্যক্রম সুন্তর সপায় বহিন মন কে মেরেলা করে সে খুবে খুবে জোহার। আর রেডিও কাটা বসলো নোনি বাবু মন কে কসন বুলকো আতা, তো রেডিও কাটা বসলো সপায় নোনি বাবু মন কে মচো বাটলে খুবে খুবে মায়া। তো বহিন মন, তুমি তো পেজ খাদলা সোতি, আর পেজ খাউন ডান্ডিক সিতর চায়নে বিষয় সত নে। তো বহিন মন, আজি তো খুবে গাম তপ হয়েছে নে, আমি দেখুছে কি আজিকালি চো গাম খুবে হয়েছে, তো আমচো জিও পেজ কে খাকি পানি কে খাসন লাগেছে। তো বহিন মন, আসন গাম নে যেসন কি 12 বাজলে ধরুন বাতে 4 বাজে তক জন পেরা বেঙ্গনি কিরণ হয়েছে হুন খুবে হয়েছে, তো উন আমচো জন দেহ হয়েছে উনচো কাজে আচ্ছা নি রহেছে, তো উন ঘামলে আমকে কন্ডিক বাঁচত রয়েছে। আর আমচো দেহনে কসন বললোনে আমি গাম তপনে ভুলুয়া, তো আমচো দেহনে পানি চো কমি বলে ওন যায়সে, তো উন কমিকে পুরা করতো কাজে আমকে খুবেলে খুবে পানি পিত রায়। আর আমি তো সপাই লোক ঘরে পেজ বানাওছে নে, এ পেজ বলে আমকে কন্ডিক পিহলোনে মনকে কন্ডিক খুবে শীতর লাগেছে, আর খুবে মনকে আচ্ছা বলে লাগেছে। তো বহিন মন, পেজ বলে আমকে পিতে রত রায়। বহিন মন, আমি দেখুছে আমচো গাঁওনে তিকুর বলতো জিনিস বলে রহেছে, এ তিকুর বলে গাম বেড়া আমচো দেহে কাজে খুবই আচ্ছা হয়েছে, তো সাঁজ বেড়া উনকে বিগাউন সঙ্গাউন রাতো রায়, আর সক্রিয়া সক্রিয়া বিহানে উনকে কনিক শরবত বানাউন নহলে ঘুরুন বাতি পিতো রায়, আর কোনি কোনি উনকে পালু বানাউন বলে পিসোত নে, তো উন বলে আমচো দেহে কাজে খুবই আচ্ছা হয়েছে। বহিন মন, এচো সঙ্গে সঙ্গে আমকে আচ্ছালে বাত পেজ খাতো রায়, আর জোন মৌসুমি ফল হয়েছে জোন এ মৌসম নিয়ে আমকে জোন ফাঁক পরমন মিরেছে উনকে বলে খুবই আচ্ছালে খাতো রায়, আর বাদ শাক বলে আচ্ছালে খাতো রায়, আর পানি তো আমকে খুবই পিতো রায়, আর আমচো গাঁও পাড়ানে তো আন্ডি বলে আমকে মিরেছে, তো আজকালি হান্ডি নিয়ে জোন পানি রয়েছে উন খুবই শীতা রয়েছে, তো উনকে পিলোনে আমকে খুবই আচ্ছা লাগেছে। তো বহিন মন, আমি দেখুছে কি আমচো ঘরনে 2-3 পিঁড়ি চো লোক রেসত নে, আম রহুন বাতি আমি খুবই আচ্ছালে জীবনা করুছে। তো বহিন মন, আমি দেখুছে কি আমচো পরিবার বড়ে রলো নে, আমকে উনচো পালন পোষণ করতো কাজে খুবই জিনিস লাগেছে নে, আজকালি জন খরচা হয়েছে উন বলে খুবই হয়েছে, আর আমি দেখুছে কি শাক ডালে ধরুন বাতি পেট্রোল ডিজেল লে ধরুন বাতি জোন আমচো জীবনা চো জরুরত চো জিত্র বলে সামান মন হয়েছে উন বলে মহাঙ্গা উন যায়েছে, তো আমকে জীবনা খরতো কাজে খুবই কঠিনাই চো সামনা করুক পড়েছে, তো আমচো পরিবার জিত্র নানি রহেছে আমকে সপায় লোক চো কপড়া আয় লতা আয় নাহলে পড়াই কাজে আয় পিলা মঞ্চো পড়াই আয় লিখাই আয় নাহলে উন মঞ্চো আগে চো জোন ভবিষ্য হয়েছে উনচো তৈয়ারি করতো কাজে আমকে আচ্ছালে সাধন মন জুয়াউক করতো কাজে বলে আসানি হয়েছে। তো বহিন মন, আমি পরিবার নিয়োজন বলুন বাতি গোট মনকে শুনুছে, এচো মতলব হয়েছে কি জন ঘর চো দম্পতি রহসোত বললোনে জন মেহরার আর জন মনুক ঘর চো রহসোত উনমন আপলো ইচ্ছালে আপলো ঘরনে কিত্রো পিলা জিলা সঙ্গাউক সকোত উন মঞ্চো বিচার উনমন বসুন ভাতি গরে করসোত উনচোলে কায় কি উনমনকে জিত্রো বচ্চা চো উনমন লালন পালন করুর সকোত উত্রোই বচ্চা উনমন করসোত, তো আসন করলো নে উন মঞ্চো পরিবার নানি বল রহেছে আর পরিবার চো জোন নিয়োজন বললো নে উন পরিবার চো জোন খরচা হয়েছে আর বলে জোন জিনিস হয়েছে উনসো কাজে উন মনকে খুবই আচ্ছা নগদ আর সাধন উন মনকে জুয়াতো কাজে সময়া বলে মেরেছে। আর আমি দেখুছে কি জোন মন পরিবার নিয়োজন করছো উনচো পরিবার মঞ্চো আর্থিক স্থিতি কন্ডিক ঠিক হয়েছে বললো নে পরিবার নি পিলা ঝিলা মঞ্চো পরবরিশ করতো কাজে উন মঞ্চো জীবনা করতো কাজে উন মনকে পড়াতো কাজে লিখাতো কাজে উন মন আচ্ছালে প্ল্যানিং করসোত। আর জোন আমি দেখুছে কি পরিবার চো জীবনা চো স্তর জোন আয় উন পহিলে আর আচ্ছা ওন যায়েছে, আর মা আর বাচ্চা জোন রহসোত উন মঞ্চো জোন স্বাস্থ্য রহেছে উন খুবই আচ্ছা রহেছে, আর 2-3 সাল চো বীচ নে অন্তর বানাউন বাতি জোন বাচ্চা আনসোত তো उन ले माता और जन बच्चा रहे से दोनों चो स्वास्थ्य ने खूबे सुधार बले हुए से और परिवार नानी रलो ने नानी परिवार होलो ने जीवना तो और नंगत हुए से ची और जोन मेहरार मन घरे रह सोतने उन मन के आप लो जोन सपना बल रहे से कई कई मेहरार मन चो की मैं दुकान खुलवाएं मैं सिलाई चो दुकान खुलवाएं नहाले मैं ब्यूटी पार्लर खुलवाएं नहाले कई नानी वो बड़े हो बिजनेस करवाएं उसन मेहरार मन चो कई सपना बल रहे से ने तो उन सपना के पूरा कर तो का जी उन मन के समिया बले मेरे से और उन जो सपना हो से उनको पूरा कर तो का जी उन मन के जो साधन जो पड़े से उन बले कर तो का जी उन मन के आसानी हो से। तो बहन मन आमी देखो से आजी काली तो सपाई जिनिस मन जो ना खूबे महंगा उन जाए से ने शिक्षा बले महंगा उन जाए से नहीं आज काली जोन मन पढ़ू जाओ सो पिला जिला मन उन मन जो आना जाना ले धरुन बाती काफी पुस्तक ले धरुन बाती सपाई चीज खूबे महंगा उन जाए से ने और स्वास्थ्य बले स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य दे तो काजे बल्ले आजकाली खूबे मेहनत मसागत करू पड़े से। तो नानी जब आम चो परिवार नानी रहे से तो आम के ये सब कर तो काजे कंडिक आसानी होए से और आम चो परिवार चो जोन स्तर रहे से उन पहले खूबे अच्छा हो जाएं दे। तो बहिन मन आम चो असनी गोट बात तो रहे से जी मंतर आम चो लगे अदाय गोटक जहाला आसे ये जहाला के आमी सुनू
1: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेन इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोइतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर की ता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: तो बहिन मन ए नंगत गोट की तो आमी सुन लू ने मांतर अदाय समय आवली से भेंट वार्ता चू और आजी आम जो संगे असोत बहिन भक्ति चावड़ा जोन एसजी चो सदस्यात और उन मन की भेंट कर सोत बलबीर सिंह कच्छ।
4: घर द्वार सुन तो बहिन मन आजी आम तन गोटुक जवान लेकी इली से अरमन संग में गोट बात करने से ये मन बल्ले ने कई जिनिस मन बनावात काय काय बनावात ये मन जानवा तो सब ले तुझे नाम और गांव चो नाम सांग।
5: जय जोहार।
4: जय जोहार।
5: मुझे नाम भक्ति चावड़ा है। मैं परचिन पालने रही हुए टोटा पारा।
4: अच्छा।
5: मुझे मम्मी पापा चो नाम बलराम चावड़ा और विभा चावड़ा है। ये जो बिजनेस आये ये मम्मी चो आये और अमी बहिन मन उनचो मदद करवा और अमी पापड़ और सेव चिप्स ये सब बनावा साबूदाना आलू ये सब जो और 4 साल पहले अमी शुरू करू रहा हूँ।
4: अच्छा।
5: और हाँ और केक बले बनावा।
4: अच्छा। भक्ति चावड़ा ये सांग दक बले तुझ माए बाप चो जो काम है उनकी तो आगे बढ़ाई से बोल है कि नहीं।
5: हाँ।
4: तो ये पापड़ बल तो कई किस्म चो बने से।
5: हाँ। एक साबूदाना चो बने से साबूदाना टमाटर चो बने से जीरा बने से खिचिया पापड़ बने से जो चावल ले बनवाए और बस।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: तो ये
5: और सेव वाले बनवाए। अच्छा। उन वाले साबूदाना आलू चो बनवाए।
4: अच्छा।
5: हाँ ये सब धूप थाने सुखाते रहे।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: तो ये चो कहीं साचा वगैरह हो से भी ना।
5: नहीं नहीं ये सब कढ़ाई थाने और असन उनचो पाटा बले हुआ है। पापड़ जैसे खिची पापड़ आए हुन चावल आटा ले बनवा है तो उनके एक बेलून बाती और असन करुआत।
4: अच्छा।
5: हाँ।
4: फिर उनके सुखाते
5: सुखाते रहे। अच्छा। और जैसे सूख ली तो दूसरे दिन पाछे पैक करून संगाउन देते रहे।
4: अच्छा।
5: और 3-4 दुकान मना से तो उन थाने जैसे उन मन आम के फोन करुआत की आम के जरूरत आए तो उन लगे पहुँचा दुआत।
4: अच्छा। जैसे आजकल अलग अलग मूंग चो पापड़ उरद चो पापड़ अवेलेबल हाँ, हाँ।
5: नहीं नहीं हुन मन नहीं बनाओ हाँ। खाली ये खिचिया पापड़ साबुदाना ये हाँ, सब
4: अच्छा हाँ। और काय बोललीस केक बोले बोललीस
5: हाँ केक बोले बोले अच्छा। जो बेकरी केक मिले हुआ है हुन आमी घरे बनाऊँ हुन बोले 3-4 साल होली आमी बनाऊ से
4: अच्छा
5: हाँ। और जैसन बोलवा चॉकलेट केक पाइनएप्पल केक स्ट्रॉबेरी ये सब बनाऊँ
4: अच्छा हाँ। ते जो का सामान काय काय लागे से
5: केक का जे एक प्रीमिक्स हुआ है उन प्रीमिक्स आने आम के लिखलो रे हुआ है कि ये डालतो रहे पानी डालतो रहे और तेल डालतो रहे और उन पाउडर के मिक्स कर देते रहे और 45 मिनट में उन केक बनुआ है और जैसा नहीं ठंडा हुआ है उनके बाद ने एक क्रीम हुआ है व्हिपिंग क्रीम उनके बोलते रहे फिर हुन थाने डिजाइन विजाइन बनाऊ जैसन कस्टमर बोलुआ है वैसा नाम डिजाइन करू दे
4: अच्छा हाँ बोले ने आगे ग्राहक मन सांसद बोले जो दुकान भी था ने तो भी था मन सांसद
5: हाँ और ये केक जो तो आस पड़ोस ने खूबे आसोत और जैसे दूर दूर बले आसोत बस्तर थाने जगदलपुर थान चो उन मन बले आम के ऑर्डर दे हुआ है
4: अच्छा
5: उन मन के आम चो घर चो टेस्ट अच्छा लागू है
4: अच्छा बोले पूरा थोक ने बनान बाती दे साज बोले
5: हाँ सुबह दे हुआ तो ऑर्डर फ्रेश फ्रेश आमी बनाऊ दे हुआ उन मन
4: अच्छा पूरा शाम तक बन
5: शाम तक बनाऊ दे हुआ
4: अच्छा
5: और पापड़ तो स्टॉक कर संगा हुआ आमी अभी जैसे बरसात आए तो सब दुकान ने स्टॉक संगा हुआ तो आमी पहले बनाऊ संगा हुआ
4: अच्छा
5: लेबर हुआ है लेबर करुआ है फिर
4: अच्छा केक होली और काय बोललीस
5: केक और पापड़ वगैरह
4: अच्छा
5: ए मम्मी जो बिजनेस है आमी हम थाने मदद करुआ
4: अच्छा पर ये जो पूरा काय काय सामान लागे से बना तो काजे बोलो कहीं पापड़ चो केक चो जसन की औजार हाँ। हिसाब ने बोलो सामान हिसाब ने
5: औजार हिसाब भी जसन केक आए केक थाने एक अवन हुआ है अवन थाने बनातो रहा है नहीं तो गैस थाने बने बलू है कढ़ाई ने और बीटर लागू है उनके फेट तो काजे केक जो हुआ है और क्रीम बले जो रहे उनके बले फेट तो काजे बीटर लागू है और हुंचो बले सामान रहे हुआ है जैसे स्पैचुला वगैरह रहे हुआ है केक जो क्रीम आया अच्छा ले फैला तो काजे
4: अच्छा।
5: डिजाइन बना तो काजे अलग अलग प्रकार से नोजल ले हुआ है और पापड़ काजे जैसे बड़े बड़े तपे कढ़ाई मन सब रे हुआ नी हुन थाने बना हुआ
4: अच्छा।
5: और गोल बीती चम्मच वगैरह रे हुआ है और झिल्ली मन लागू है क्योंकि जैसे खिचिया पापड़ है उनकी बेल तो काजे खाले एक झिल्ली और ऊपरे एक झिल्ली संगातो रहा है अच्छा। नहीं तो हुन चिपके हुआ है
4: हाँ अच्छा।
5: तो जैसन हुआ है फिर उनके एक चादर थाने उनके सुखा हुआ
4: अच्छा
5: और पंखा चुखाले
4: तो दक भक्ति ये तो अच्छा घोट के सांगलिस तुम चो जो परंपरा हिसाब ने बोलो तुझ माए बाप चो जो धंधा है बोलो हुनर है उनके तु बोले सिक्स से भी तो ये जो काम किया जैसे कि तू तुझ मम्मी बनवा है बोली सुन कहाँ कहाँ प्रशिक्षण वगैरह धर ली
5: नहीं उन पहले बले बनाते रहे उन जो शौक आए पहले ले घर का जे बनाते रहे फिर उनके सन लागली कि नहीं मौके बले कमाते रहे करके घर का जे और कुछ शौक बले आए तो उनका जे उन खुद फिर सोच ली कि नहीं लेबर पहले खुद कर ली एक साल उनके बाद फिर लेबर संगा ली और कर उन खुद व्यापार के बढ़ा ली
4: अच्छा
5: और ये थाने मुझे पप्पा बले पूरा सहयोग कर लो
4: अच्छा तो ये सब काम के लगात काजे कितलो मजदूर मन आसुबे
5: एबे तो चार आसे
4: चार आसे हाँ। अच्छा तू बल्ले ने जैसन की जगदलपुर बोललीस बस्तर बोललीस हाँ। और कहाँ कहाँ मांग आसे जो
5: जैसन पापड़ मनाए आम जो दूर दूर आसे पहचान ने हुन मन बले एक हार खाद ला स्वाद हुन मन के अच्छा लागली तो हुन मन दूर दूर ले बुलावत
4: अच्छा।
5: कि आम के पापड़ होते रहे जैसे रायपुर आए राजनगांव आए नागपुर आए और दुर्ग आए जैसे जगदलपुर होली या दंतेवाड़ा होली तो ऐसा दूर दूर बले आसे
4: अच्छा।
5: मंगा हुआ था
4: अच्छा।
5: एक हार अच्छा लागली तो घर परचन पालनी चाहे और उन्हीं लगे आम जो पूरा सामान रहे और सामान बले एकदम साफ सुथरा रहे हुआ है हर चीज जो ध्यान संगा हुआ हमें कभी बले असन परेशानी नहीं ली से क्या कोई नहीं बोलो से क्या असन होली से सामान था ने गड़बड़ तो हाँ
4: अच्छा कोनी दक्षिण की परचन पाल ने कहीं उतार दुकान वगैरह आसन खोल
5: नहीं दुकान नु है घर स्थाने आसे
4: अच्छा
5: घर स्थाने ऑफिस आए हुन लगे पूरा स्टॉक करवा आमी
4: अच्छा
5: हाँ और जोन बले असन लागू है तो मम्मी चो फोन थाने फोन नंबर सब चो लगे आसे हुन थाने करवाए और मंगावत।
4: अच्छा जसन की कई नाम संगला सास का उंचो
5: नहीं कई नाम नु है
4: असन हां
5: घर उद्योग है।
4: अच्छा घरेलू उद्योग
5: हां
4: अच्छा कई पापड़ चुनाव कई केक चुनाव का असन
5: कई नहीं कई नहीं संगाली से।
4: अच्छा अच्छा बोले घरेलू उद्योग घर ने बनान बाती भिक्षा
5: जी जी हां
4: हां हां दक तुई काय करसे से भी जाले
5: मैं बे तीसरा ईयर ने आसे बीबीए करे से बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एबे मोचो परीक्षा होली से तीसरा साल छो तो तीन साल कंप्लीट।
4: अच्छा हाँ तू बोले ने दक भक्ति चावड़ा तू इतलो अच्छा बोले ने तू चो जन माए बाप चो जन हुनर है पढ़ाई लिखाई संग संग का है कि उनके बोले सीखते जाए तो उन आगे भविष्य ने तू अनुभव होले ने अच्छा काम यू कह सके मंत्र एवे जसन की तू पढ़ाई सारलीस बोले आगे काय कर से काय विचार छो
5: आगे मैं मम्मी चो तो मदद करें दे हमेशा और जैसे बाहर चो दुनिया चो अगर काम मैं सीखे से तो मुके घर चो काम बले सीख तो जरूरी है हुन बले खूबे जरूरी है। और एबे जैसे ये मुझे तीन साल होली तो हुन चो बाद ने मैं डिजिटल मार्केटिंग सोच ले से।
4: अच्छा अच्छा
5: उन ये लगे नहीं हो जगदलपुर ने हुन चो काजे बाहर या रायपुर या बाहरी दुनिया बाहरी
4: अच्छा
5: जाना पड़े।
4: अच्छा डिजिटल मार्केटिंग ने काय वैसे अभी तुक मालूम आसे होती
5: हुन थाने काय हुए जैसे ग्राफिक वगैरह आए जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में दख हुआ टीवी थाने सब हुन सब डिजाइन हुआ है और जैसे मैगजीन वगैरह बले आमी दख हुआ न्यूज़पेपर तो हुन थाने एडिटिंग वगैरह हुआ है।
4: अच्छा
5: तो हुन सब सीखते और बीतती रहुआ है हुन थाने हुन एक साल चो बले आमी डिप्लोमा धरुक सकू।
4: अच्छा ये तो बहुत अच्छा है मतलब खुद जो अगर बिजनेस आसे उनके बड़ा बोल सका
5: हाँ।
4: नहीं तो कोई संस्था ने बोल काम कर तो का जाए
5: हाँ। और हम जो बाड़ी बोले आए तो हुन जो बिजनेस पप्पा दख हुआ है।
4: अच्छा हाँ। बाड़ी बोल लेने
5: फार्म हाउस खेती बाड़ी।
4: अच्छा हाँ। काय फसल आ जाले
5: एबे तो काम चले से सब रोटर वगैरह वगैरह सब चले से तो खीरा या बैगन सन संगा हुआ।
4: अच्छा तो बोले तुम बोल उता बोल लागू है खेती बाड़ी में
5: हाँ जरूरत लागली तो हुन लगे बोले देखो
4: है
5: हाँ।
4: अच्छा बोले ने तू चो माए चो और बाप चो दोनों चो काम सीखते जाए से
5: हाँ सीखते जाए से
4: हाँ हाँ हाँ तू दक भक्ति चावड़ा तो इतना अच्छा पढ़सीस बोले सीखसीस बोले दक ये भी जवान लेके आस तू चो उम्र खूबी आसे
5: हाँ।
4: तो कहीं गीत वगैरह बोल जाने
5: हाँ जाने
4: काय की ताल गाउन सुनाऊं दक
5: हरवी ने तो नहीं जाने
4: गुजराती जाने
5: हाँ जाने
4: हाल गुजराती गीत सुना
5: ए माँ चो गाना है माँ काजे मुई गाय से
4: हाँ
5: तो

0: धन्यवाद।
1: तो भक्ति द कितलो अच्छा, तो भले पूरा काम के जन चुछ माय बाप चु काम छु जन
0: हाँ।
1: कर तो बीतिया हुनर के तु सीखते जाए असन नौजवान लेका लेके खूब आसवत मानतर का है कि आप लोग जन घर चो जन पारंपरिक काम है
0: हाँ।
1: उनके हीनस्ता समझुआत करुणुआत
0: हाँ।
1: बोले ने आज ही तुझे संग गोट बात कर तो काजे असन लोग मन काजे गोटोक प्रेरणा आसन है बाट
0: हाँ।
1: आसन है जरूर
0: हाँ।
1: सुन सोताल उन मन बोले पढ़ा लिखा करते करते बोले आप लोग जन धंधा पानी आए
0: हाँ।
1: घर चो जन परंपरा धंधा पानी आए
0: हाँ।
1: उन मन के बचा तो काजे आगे ये दे और इतना अच्छा गीत बोले कौन बती सुना लेस
0: हाँ।
1: तो आमचो रेडियो सुन तो भाई बहन उन बाटले और आमचो आकाशवाणी परिवार बटले बोले तो चो भविष्य काजे आमी शुभकामना देव से खूबे खूबे धन्यवाद जुआर।
0: जय जवाहर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो बहिन मन ए नगद गुड बात क्या मी सुन दू ने तो ए रला बहिन भक्ति चावड़ा जोन आप लो बहिन मन संगे मिसुन बाती आप लो जोन माँ जो बिजनेस आए उनके बड़ा तो काजे खूबे मसागत खर्चोत और उन मन के भेंट करते रहोत बलबीर सिंह कच्छ ने तो बहिन मन उसने ही आमचो गांव पारा ने बले आमचो परिवार ने बले खूबे हुनरमंद लोग मन रहसोत तो उनके आगे बढ़ा तो काजे बले उसने मसागत कर लो ने खूबे अच्छा रहे दे तो बहिन मन ए तो रली नंगत गोट बात मंतर आमचो मुंडरा ने गोटक गीत गोविंद बलदका दे से तो आले ए गीत मन की आमी सुनू गीत कुड़िया मन की आमी पाचे चिताऊँ।

Martita Furo, Nego Sini Gajor, Nego Nevo Sila, Gita Mongra.

हाँ बहिन मन, खूबे नंगत खूबे सुंदर गीत ने तो ए गीत के गाउरला बालमती और उनचो संगवारी मन। तो गीत कुड़ीन बहिन मन जो गीत मन के बले आमी सुन लू और नंगत नंगत गोट बात बले होली, एच संगे संगे मचो जातोर समया बले होली से। तो जातोर पूरे घर द्वार कार्यक्रम सुनतोर सपाए बहिन मन के मैं रैला करे से खूबे खूबे जुहार।

0: घर द्वार ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन का एक बजने को है। थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है।

0: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामी की पेड़ा खाड़ा चौगोट।
2: दादा दीदी मन मांडमा का किसान दादा मन चुकमा तो सबले अधिक मन करती सा गए। मांडबांगा ने जो लाल रंग रहे से हुनाम के दवाई ओसो काजे काम पड़े से। मांडबांगा ले विटामिन सी बल्ले मिरे से हुन मांडबांगा के आम साग ले लगाउन बल खाएसु और काचा खाद ले बल खूबे नगता है। हुनाम चो देह काजे बल लाभ दे से। मांडबांगा चो कमानी करतो काजे तापमान 20-28 डिग्री रहतो रहे। अधिक गर्म होले ने बूटा के नुकसान आए। ये चो नगद बाढ़ती काजे बूटा ने 10 बोड़ा पानी रखातो खूबे नगता है। ये चो कमानी तुम्हें साल भर ने केबेज कर रुक सकस मातर इथा पानी नगद दखातोर खूबे जरूरी है। दादा दीदी मांडबांगा चो कमानी करतो काजे करिया भुरभुरा माटी, रेतीला माटी और लाल भुरभुरा माटी होले ने बूटा नगद बाड़ू है। ये चो नगद बाढ़ती काजे माटी चो पीएच मान 7-8.5 रतोर आए। मांडबांगा चो कमानी 2 किस्म चो हो से। पहल तो आए देसी किस्म चो मांडबांगा और दूसरा है संकर किस्म। देसी मांडबांगा बल्ले कई प्रकार चो रह से जसन की हिसार अरुण, पंजाब छुहारा और अर्का विकास और अर्का सौरभ, काशी अमृत और पंत टमाटर, काशी और पुसा। उसने हाइब्रिड किस्म ने बल्ले 2 किस्म चो फसल रह से सीमित बड़वार और असीमित बड़वार। सबले पहल सीमित बड़वार चो किस्म ने रश्मि, रूपाली और अजंता पूसा हाइब्रिड 2, मंगला वैशाली, मैत्री, स्वर्ण वैभव और ऋषि। असीमित बढ़वार आए दूसर हुंचो की सीमाए नवीन, सोनाली और लेरिका रत्ना। बूटा मंडा तो काजे बेड़ा के नगद तैयार करतो रहे। सबले पहेल बेड़ा के जोतुन माटी के भुरभुरा बनातो रहे। हुंचो पाछे पैनी मन छेकतो रहे। पल्हा के रोपतो रागे बेड़ा के कल्टीवेटर संगे बले जोतुन भूई के नगद तैयार करतो रहे। बेड़ा के आखरी समयाने जोतलो ने बेड़ा चो माटी ने 200 से 250 कुंटल गोबर खत के भूई ने माटी संगे नगद मिसातो रहे। और दादा दीदी दखा नगद कमानी करतो काजे माटी संगे पोषक तत्व चो रूप ने 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलो पोटास बेड़ा ने आखिरी जोताई करतो समय ने मिसातो रहे। देसी मांडबांगा चो फसल काजे बीजा 200 से 150 ग्राम प्रति एकड़ और हाइब्रिड किस्म चो फसल काजे 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ बीजा लागे दे। मांडबांगा चो कमानी ने पल्हा के बुनतर पहिल बीजा संगे 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडा जिम के प्रति किलोग्राम बीजा संगे मिसाउन बीजा बुनतो रहे। पल्हा बारलोर एक हफ्ता आगर होलर ने डाइथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी ने मिसाउन बूटा ने छिस्तो रहे। बूटा मंडा तो काजे माटी ने 0.75 मीटर ओसार और 5 से 10 मीटर लाम और 15 से 20 सेंटीमीटर डेंग पैनी बनातो रहे। बेड़ा ने समय समय ने तुम्ही मांडमांगा चो कमानी करुक सकास। समय बल्लो ने जे बरसात चो फसल तुम्ही करतो काजे बीजा के जून और जुलाई ने बुनून पल्हा के तुम्ही अगस्त ने मंडाउक सकास। शीतकार बेरा सितंबर चो पल्हा के तुम्ही अक्टूबर महीना ने रोपुक सकास और जनवरी चो बाड़लो पल्हा फरवरी ने रोपतो बतर होइसे। और दादा दीदी तुम्ही बूटा के मंडा तो बेरा गोटक गोट नगद ध्यान दिया। बूटा ले बूटा चो दूरिया हिसाब ले लगा। बूटा ले बूटा चो दूरिया 45 सेंटीमीटर बना तो राय और बूटा के उतरती पहर के 3 बजे चो हुन पाग लगा लो ने पल्हा माटी ने नगद बसे दे। बूटा रोपते खन तुरते खिनिक खिनिक पानी झपातो रहे। हुंचो पाछे समय समय ने पानी के तुम बेड़ा ने झपाउन दियास। मांडबांगाचो फसल के बाढ़ती काजे बूटा खाले ओदा रतर खूबे नगत आए और मांडबांगाचो फसल ने पानी कम पड़ले बूटा खाले सूखतो ने बूटा ने धरली मांडबांगा जो ने फाटून जावाए जोन ले फसल के नुकसान होय से। फसल के नुकसान होतले बचात काजे नगद पानी संगे संगे 800 ग्राम बोरेक्स के 550 लीटर पानी ने मिसाउन प्रति हेक्टेयर छिटतो रहे जोन ले मांडबांगा के फाटतर ले तुम्हें बचाव सकास। मांडबांगा चो फसल पाकलोर बाद देसी किस्म चो फसल के टूटातो समय पल्हा बुल्लो बेरा ले 90 से 100 दिन चो मंजीर होले ने मुरियातो रहे और हाइब्रिड किस्म चो फसल के टूटाऊ 70 से 80 दिन चो मंजी मुरियातो रहे। देसी मांडबांगा चो फसल ने 120 से 150 कुंटल प्रति एकड़ फसल मिरे दे तुमके और हाइब्रिड फसल ने 250 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर कमानी होय दे। तो दादा दीदी मन ए तो रही मांडबांगा चो रोग राई नगद कमानी चो गोट।
1: कृषि समिति बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। दिन के 1:10 हुए हैं और हवाओं में घुलने लगी है आपके पसंदीदा गानों की मीठी सी खुशबू। हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम श्रोता सुमन। जी हाँ, ये वो समय है जब हम और आप मिलकर सजाते हैं फिल्मी गीतों का खूबसूरत गुलदस्ता। आपके खत, आपकी पसंद और हमारे पास मौजूद सुरों का खजाना। तो शुरू करते हैं आपकी रेडियो साथी आशा दुल्हानी के साथ आज की पहली फरमाइश फिल्म लव स्टोरी से। आवाजें हैं अमित कुमार और आशा भोसले की, गीतकार हैं आनंद मिलिंद और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। पसंद करता है धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, इशिका यादव और तेजल यादव। महादेव घाट अमलेश्वर से ये हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। कोली नांदेड़ से आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। हथनीवारा भाटापारा से ये हैं चोवाराम वर्मा, मुकेश वर्मा, दुलारी वर्मा और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा। जिला कवर्धा से आप हैं राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह नेताम, दक्षप्रिय महामाया और गीत सरगम नेताम। अर्जुंदा बालोद से आप हैं दिनेश यादव, साधना यादव और मचुआ बालोद से ये पत्र आया है रिंकू राफ्टी और अयांश राफ्टी का। ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से ये हैं पोषण बंछोर, चंद्रकरण, प्रीति और छाया बंछोर। और मोपका भाटापारा से अगला पत्र है दयालु राम वर्मा, तेजराम वर्मा, सहदेव रामजी और चिरंजीवी वर्मा का। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफ्फर डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। नवागढ़ कटई से ये हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। नयापारा भिरई से श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, ईश्वरराज सूर्यवंशी, श्री चंद्रकांत सूर्यवंशी, कुमारी प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी। ये पत्र आया है चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नेंदास शीला दीवान, ओम प्रकाश रुक्मणी, जयप्रकाश प्रीति दीवान, सिद्धांत सौर्य और कुमारी सानवी का। ये अगला पत्र है प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा का। वरुण जौलका से ये पत्र आया है महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे का। मालेगांव से यहां पे दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका और गजानन घायल। कुम्हार गली कोलगांव से अगला पत्र आया है पांडुचंदन, उषा चंदन, रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश और संतोष चंदन। साथ ही है पांडुरंग कुम्हार। मछली गोदाम केतिमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह और धनबाद झारखंड से ये पत्र आया है अमित कुमार सिंह, प्रियंका और बेबी समृद्धि का। झाझा बिहार से आप हैं संजीव कुमार, पूजा सिंह, रवि आरती सिंह और पटना बिहार से भुवनेश्वर और लिल्लू सिंह। जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आप हैं देवनारायण साहू, योगिता, चंचल रानी साहू, गीतिका, उमाबाई, गंगाराम साहू और त्रियांश कुमार साहू। ग्राम बुड़गहन से ये हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। डूंडी लोहारा संबलपुर से आप हैं गौतम कुमार उर्वशा, डामीन, लक्की, तुलसी, ऐश्वर्या और याशिका उर्वशा। पाथरडी महाराष्ट्र से ये हैं अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। हट्टोद बाजार लाहौद से ये हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। वार्ड सिमगा से ये पत्र आया है रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव का। और देवपेट वाशिम से ये हैं राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, रजनी भावसार, राजू भावसार और स्नेहल। वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। और ग्राम भिलोरी भावनालाग जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से अगला पत्र है मास्टर देवरत साहू, राघवेंद्र साहू, बेबी विधि दीपिका साहू, कविता षष्टि साहू, बेबी सिद्धि साहू और मास्टर हेमंत कुमार साहू का। और गांव रतनपुर से ये पत्र आया है भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविन्द्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन नायक का। दिल्ली शहर मोरीगढ़ से यहां पे कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। और ग्राम बेलरगांव से ये पत्र आया है मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन का। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से ये है मानिकराम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम, हरिशंकर, प्रशांत और रत्नेश प्रजापति। और ग्राम कालापारा सरगुजा से आप हैं रामचंद्र गुप्ता और पांडेराम रजवाड़े। जमशेदपुर से अगला पत्र है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी और सोनू भाटिया का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से यहां पे टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। और कालका से यहां पे शुभचंद्र बजाज, बिट्टा और साहिल बजाज। ये अगला पत्र है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और सुनीता शर्मा का। जवाहरगंज जबलपुर से आप हैं जिनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन और सत्येंद्र जैन। और धुराबांधा भाटापारा से ये पत्र आया है प्रमोद साहू, देव कुमार, नेत्राम और भूपेंद्र साहू का। दंतेवाड़ा बचेली से अगला पत्र है बलराम सेन, इंदू सेन, पुष्पराज, रितिका, पोषण और भुवनेश्वर सेन। महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप हैं सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी और ओंकार शर्मा। चूड़ी लाइन भाटापारा से ये हैं अब्दुल मजीद कुरेशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। और हटरी चौक भिलाईगढ़ से ये हैं खीकराम देवांगन, रेनू देवांगन, प्रियंका और रजनी देवांगन। तीवरता डबरीपारा से यहां पे हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम और जागेंद्र गजेंद्र मरकाम। अलगीडांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से ये हैं जोहित यादव, विपिन यादव, आयुषी और श्रीमती फूलजी यादव। बागभैरा भदरसी से अगला पत्र आया पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन का। और मोरबा भिलाईगढ़ से ये हैं देवलाल कर्ष, कामनी कर्ष और यश कर्ष। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से। छत्रपति संभाजीनगर से यहां पे राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। मदनपुर कवर्धा से ये पत्र आया है श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू का। आप सभी के पसंद पर लीजिए, सुनिए ये गीत फिल्म लव स्टोरी से।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: श्रोता सुमन में आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया और मोहम्मद रफी का गाया फिल्म गबन का गीत। इस गीत की फरमाइश आई है, ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेनु, दिव्यांशी, रोनिका एवं रागिनी यादव। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक एवं तन्वी गोहर। और धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है कौशल किशोर, संगीता, हर्षित एवं वैभव मट्टू का। वार्ड नंबर 3 रामभटा रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, लक्ष्मी जयलक्ष्मी, ऋषभ अंश लक्ष्मी और रानी दीपा लक्ष्मी। समडील नवापारा से अगला पत्र है मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे, दीपक और श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। कासम कॉलोनी सनावत से ये पत्र है यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और काशिफ मीना का। कामठी नागपुर से अगला पत्र है श्रीमती किरण शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, आशीष और अमृता शर्मा का। खांडवी बुलढाणा से ये हैं दिलीप राम धाड़े और स्वराज राम धाड़े। और रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप हैं उदय भानपाल, जय हिंद पाल, प्रतीक्षा विमलेश्वर, दिव्यांश बघेल। थिलोरी अमरावती से आप हैं सुनेना पवन भोंडे और तनुज पवन भोंडे। और पीपल नीमचौक अमोड़ा केशकाल छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया है सुनील यादव, श्रीकुमार यादव और तनिष्का यादव का, साथ ही हैं नौबत यादव। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। और बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से अगला पत्र है संतोष कुमार राव, भारती राव, वेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा का। शिवाजीनगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से आप हैं राजेश खोबर खेड़े, शिवसागर खोबर खेड़े और इंद्राबाई खोबर खेड़े। रोहतक हरियाणा से आप हैं अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, साहिल, प्रिंस बोट और अंशिका बोट। और साथ हैं सीताराम कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और बबीता बोट। ये अगला पत्र है गोगांव जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफ्फार खत्री का। और नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता और रेखा वर्मा। और ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये हैं कालीचरण कुशवा, श्याम कुमारी, सुखदेवी, सन्नी और सोनिया। अगला पत्र आया है पारून विश्रामपुरी जिला कोंडागांव से प्यारी दास मानिकपुरी, शिव कुमारी, खिलेश्वर नमिता मानिकपुरी का। जनकपुरी सहारनपुर से ये हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। रानीगांव नगरी जिला धमतरी से आए खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया है सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता और वेदेही जोशी का। गांव खेड़ावाड़ी हिंगोली महाराष्ट्र से ये हैं शाजी बोट के, नंदा बोट के और हनुमान बोट के। और जवाहरनगर दुर्ग से ये पत्र है आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े का। पन्ने बुजुर्ग पले टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम, आशीष विश्वकर्मा और तारा देवी विश्वकर्मा। कलानौर से ये पत्र आया है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। और लक्ष्मीपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से ये हैं तीजन सिंह मरावी और देवलाल मरावी। और ग्राम फारसी हिसार से हैं राजकुमार डुड्डी, सौरभ डुड्डी और प्रमोद कुमार डुड्डी। ये अगला पत्र है बनबगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और करीना और साथ हैं अंजलि सारवा भूट चौराहा बुलंदशहर से ही हैं पंकज सिंह चंचल सिंह रशिका आकृति और वंशीराज सिंह और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से यहां पे उदयवान ठाकरे ग्रंथ ठाकरे गोरी ठाकरे दीपक नवीन शिखा नीलिमा और चंद्रभागा ठाकरे यमुनापुरम बुलंदशहर से ये हैं धीरेन्द्र सोलंकी सुनीता सोलंकी निष्ठा शौर्या और मून सोलंकी और कस्बा गुन्नौर से यहां पे फारूक अली खान फैजी फराज फरहान फरीन फारिया और ताहिरा। ये अगला पत्र आया है ग्रामबीर खेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल मलखान सिंह पाल सुधांशु हिमांशु प्रांशी निवेदिता ज्योति मानसी सुदीपा और सुशीला पाल का। जमानिया जिला गाजीपुर से ये हैं सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल दीपक और स्वाति जायसवाल और साथ ही हैं एसपी जायसवाल डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर नाजिया हसन आफिया हसन इब्राहिम और सद्दाम और बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर शोभा तई मानकर श्लोक कुमार और दीपाली और बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर शशिकला दामोदर साधना और सुमेध। कल्याण मुंबई से अगला पत्र आया है किशोर हिवराले सुजाता हिवराले प्रतीक और प्रतीक्षा का और बुलढाणा बरवड बकाल महाराष्ट्र से यह नारायण हागे जय दिव्या और कमल हागे हनुमानगढ़ राजस्थान से यहां पे रज्जाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान और इरफान खान और सहारनपुर से ये पत्र आया है राधा नामदेव अपर्णा अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा का। गौना जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से यहां पे कैलाश नारायण नामदेव दीपक नामदेव द्रौपदी रामदेवी अखिलेश कुमारी लखनलाल आकाश और रानी परी नामदेव। चंडीगढ़ से अगला पत्र है सतीश अनेजा और विमला अनेजा का और जाखोद राजस्थान से आप हैं शंभुदयाल खटक और विमला देवी खटक। सोरे जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं संतोष नामदेव अभय अनिल अजित अनीता ज्योति संजना और भारती नामदेव। साथ ही हैं पूर्वी रूही शक्ति भक्ति अनु अनन्या आदर्श दीपक और लव नामदेव। ग्राम मामड़पाल दरभा से ये हैं गणपत बघेल मनीष बघेल और अनंत बघेल। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अगला पत्र है नेत्रपाल सिंह वंश पवार अंश वेदांश वंशिका और जस्सी पवार का। तहसील अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से आप हैं दीपक शाह के ज्योति और सक्षम। गांव हीरावरी फाजिल का पंजाब से आप हैं सुभाष गोदारा विमला गोदारा इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। गांव खोखरा वाली अनूपगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान से ये हैं विनोद बारासा विकास विशाल रोशनी और शगुन बारासा। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। वाडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी अरोड़ा और आरती अरोड़ा और बुर्ज हनुमानगढ़ पंजाब से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश और डॉक्टर मदनलाल वर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ये हैं पीएस नहावकर निर्मला नहावकर विशाल नहावकर और नारायण इंगले और गजवा नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये हैं नरेंद्र सुथार मनोज सुथार और हिमांशु सुथार। आर्यनगर खोखा भिलाई छत्तीसगढ़ से यहां पे उत्तम सिंह जंगेल मोरज जंगेल अनिल कुमार अजित कुमार आयुष और नंदिनी जंगेल और जसपुर उत्तराखंड से यहां पे रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम सिद्दीकी रिफाकत मोहम्मद रिहान और समरीन परवीन। ग्राम छिंदड़ी पुजारीपारा जिला कोंडागांव से ये हैं सेतुराम चक्रधारी मंगतीन चक्रधारी आशीष और अस्तिका चक्रधारी और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से ये हैं राकेश पप्पू सेन धर्मेंद्र सेन और पिंकी सेन और बड़ा बाजार उदयपुर से आप हैं गोपाल तंबोली कांता तंबोली तिलक किरण और सक्षम तंबोली। और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये पत्र आया है मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल मानवी सीमा तनवीर ऋतिक मोहिनी और लक्ष्य सोनी का। हिल स्टेशन खंडाला से आप हैं आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे और मित्रनगर भी शहर महाराष्ट्र से ये पत्र आया है विकास बंसोड़े रेखा अदिति और वैभव शिंदे का। तेलंगाना निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख भाव शेख इकबाल नूरजहां बेगम और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से अगला पत्र है मोहम्मद इसा खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा का। सामरगांव महाराष्ट्र से ये पत्र है रघुनाथ नारे पुष्पताई नारे श्रीधर नारे और मीनल नारे का। ग्राम वडगांव डीके बुलढाणा महाराष्ट्र से यहां पे वासुदेव बोदवड़े माधुरी बोदवड़े और आकाश बोदवड़े और अनूपपुर मध्य प्रदेश से अगला पत्र है जयमंत्री केवट अंजलि केवट रुद्राणी और कृष्णा केवट का। देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ बनारस से ये पत्र है बाबू यादव मनसा यादव दुर्गेश सीमा अन्नू और अरुणेश यादव का। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से अगला पत्र है सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विनी मंगलाबेन और सुषमा कपूर का। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से यहां पे मुन्ना भगत और गुड्डी भगत और लोरमी गोल बाजार खपरीकला छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार सोनी सुनीता खिलेश नेहल पीहू छोटी दानिश दीक्षा संजय पूजा पूर्वी और पुलकिता। लोरमी छत्तीसगढ़ से यहां पे नारायण खांडे रजनी तुषार और समीर खांडे और जटपुरा पनवाड़ी महुआ से ये हैं देवी दीना इरवार सुनीता कपिल दिनेश और पूजा और पाखुड़ झारखंड से अगला पत्र आया उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशु तासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का। गांव टुंकिया तहसील सेणधनी जिला बालोतरा राजस्थान से यहां पे कृष्ण कुमार डाबी भूगत कुमार डाबी राधा देवी विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी और ग्राम परसठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से अगला पत्र है रोहित यादव पंकज यादव अंगद आयुष आर्यन बेटा और आदर्श यादव का। ग्राम नागर कोहला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये हैं बबली साहू जगराम साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू और डबराभारा सौंगा मगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ से कोमल सेन तोषण सेन विनायक रीना और पिंकी सेन संत गाड़गे नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से अगला पत्र है अनिता गाठोड़े रमेश राव गाठोड़े और लोकेश गाठोड़े का। और ग्राम धनोरा जगदलपुर बस्तर से ये हैं वी पूनम नायडू प्रीतम साजन के मास्टर ऋषि शिवांशी और अभिषेक नायडू और वरुण जामटी से अगला पत्र है मुकेश कासलेकर का। राजनगर मधुबनी बिहार से आप हैं नवीन सिंह ज्योति सिंह श्वेता स्वाति सुशांत और चुलबुल रानी। प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत फिल्म गबन से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आइए सुने फिल्म सरगम का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनीकर और धीरज सवासेरे। डोंडी लोहरा बालो छत्तीसगढ़ से ये हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डोली बेबी, पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। किकिर मेटा बेलहारी पाटन से आप हैं संतोष शर्मा, रुकमणि शर्मा और गुरामी डोंडी लोहरा बालोद से ये हैं पीयूष नेताम, ज्योतिबाई नेताम और कोमल नेताम। ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये हैं योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश कुमारी, अंजलि सारवा। बीड शहर से आप हैं रणजीत कुमार थोरात, रामकिशन गणपत थोरात और गबरू पहलवाल थोरात। दयानंद नगर नादेड़ से आप हैं प्रकाश जैन और तिरुपति नगर से आप हैं संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। लालमाता सुदामानगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से आप हैं हर्षित, रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से ये हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति और थनक्ष आरू साहू। पिपरिया से ये पत्र आया है कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता का। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से ये हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार और दीक्षा कुश मूड़त। ये अगला पत्र आया है बलोदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल का। मेघाबारा लोरमी से ये हैं मनोज कुमार साहू, कुसुमलता, कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू। और तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से ये हैं ओम प्रकाश नेमा। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तान्या। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरग, जैतिक बिरग और मीका बिरग। गांधीग्राम से ये हैं प्रवीण सोनी, अहमदाबाद से कंचन सोनार और कुसुम और कंडला बंदरगत से ये हैं जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जैनेश। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से ये हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। गांधीनगर गुजरात से ये हैं सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा राठौड़। साथ हैं प्रज्ञानंद देवांगन, गायत्री, यशस्वी और यशवर्धन। दौलतबाग मुरादाबाद से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, पारिस तपस्या और करिश्मा कामले। एमआईडीसी चंदननगर सतारा से ये हैं सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमेण वाघमारे। और वारणा शाहपुर कोल्हापुर से ये हैं विजय चव्हाण, तेजस्वी चव्हाण, अंकिता, अनिकेत और माई चव्हाण। लच्छनपुर से ये हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये हैं रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा और बेबी स्वाति माखीजा। कतियापारा जूना बिलासपुर से ये सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्या आदि देवांगन। और बम्मर चाटाडीह से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की और बेबी मीनाक्षी देवांगन। इंदौर मध्य प्रदेश से ये हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परिसंजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। छत्री तालाब अमरावती से ये पत्र है साधना रानी गुप्ता, कविता गुप्ता, नेहा और कोमल गुप्ता का। देवरी भाटापारा से हम ये अगला पत्र है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री का। तालुका उमरखेड़ से आप हैं गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक पोपलवाड़, प्रियंका, लक्ष्मीबाई और भारत धुले। ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, ईशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा का। राजनगर मधुबनी से ये हैं राजकुमार गुप्ता, विनीता, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। और छपरा दालदली बाजार से संजय, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु। और सीतामढ़ी महावीर स्थान से आप हैं प्रभात गुप्ता, अरविंद, मंटू और निक्की। नसवाला चौक मलकापुर से ये पत्र आया है संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, सतीश सराफ और जगदीश तांवट का। धनोरी तेलीवाला से आप हैं निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। और छोटी बलिया करजत से अगला पत्र है अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले और नुरेशा बेगम फूलवाले का। और कापासेड़ा नई दिल्ली से ये नशीन आजाद, आमना परी और मंजूर फिरोज रजा। पुणे से ये हैं प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे और जरूर वरुड़ से अगला पत्र है बाबा साहेब वाड़ोदे और मीनाक्षी चर्पे का। हाईस्कूल पारा फरसगांव से हरीश साहू, मेघा, पायल, राजीम और नवीन साहू। और पाटरकवणा से ये पत्र है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची, अनुश्री और धनश्री बुरांडे का। और बल्लार शाह से ये हैं सूरज जी लोड़े, प्राची लोड़े और एकलव्य लोड़े। ताज मंजिल लकड़बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। और बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा रोशनी और अजय गंगराड़े। और अहमदपुर खेगांव खंडवा से ही हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, संभर और वेदिका फूलमाली। गोल बाजार बक्सर से ये हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।
बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाशवीर राजपूत और डोंडी लोहरा वालों से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप और जेल रोड रायगढ़ से हैं लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय और दुबिया, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। बोरसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। दतरेंगी से अगला पत्र है विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदुगा और बंगला मटिया बालोद से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशुमला और आशुतोष अंगारे और भरी टोला डोंडी बालोद से हैं नमित कुमार गौतम, पीहू प्रियंका, नीतू और मुरली गौतम। फिल्म सरगम का गीत सुनिए आप सभी की पसंद पर।

अब पेश है नक्श लायलपुरी की रचना, संगीत खयाम का है। फिल्म दिले नादान के इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। सुनना चाहते हैं

बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया है नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंती, नेहा देवी, टिकेश्वरी साहू और रुद्रांश प्रताप साहू का। गीदम रोड जगदलपुर से यहां पे टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जय राव, भाग्य लक्ष्मी राव, नानू श्रवण राव, कीर्ति राव आनंद और मनीषा राव। उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये पत्र आया है अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, प्रिंस एकाश गवाणकर और टुकटुक गवाणकर। आकाश हाइट्स भादुरा नागपुर से ये हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर। शिवाजी चौक राजिम से अगला पत्र आया है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और किश श्रीवास्तव का। अमरपुर पेंड्रा से ये हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि दिशा और लवी श्रीवास्तव। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से आप हैं गजानन येले, नवदीप येले और शेडी वडने रकुला से ये पत्र आया है बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर का। शीतलानगर दुर्ग से अगला पत्र है शिवचंद्राकर और भगवान चंद्राकर का। चितलवाड़ी अकुला से ये पत्र है अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश और अधीरा इंगले का। सीमंधर पार्क वीरमगाम से आप हैं अजित, प्रेमिला, भावेश, सन्नी, हेतल, कृष्णा और जैमिन भावसार। जमशेदपुर से अगला पत्र आया है अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार और भीमखोज तरपोंगी से ये हैं संतोष गुप्ता, हितेश होमेश गुप्ता और लक्ष्मी प्रतिमा गुप्ता। बकावंड से अगला पत्र है गिनुराम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा, सुभाष, मणिराम और गजमती बघेल। महामायापारा ग्राम दरचुरा से आप हैं फिरंत साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। दुर्गा चौक जूना पानी सनावत मध्य प्रदेश से ये हैं कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरालाल बड़ोले, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन। जलगांव से ये है डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक और अश्विनी भूतेकर। गांव चुहलदा बागपत से ये संजय ढीगे, नमन मुस्कान, कुणाल, मास्टर मुनीर खान और अब्दुल सत्तार अब्बासी। ग्राम लोहारी जिला खंडवा से ये हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला और गायत्री धंजे। और खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वेद, रानी वेद, महिमा और नीतू वेद। तहसील नादुरा से सोपान ताड़े, विजय ताड़े, अमोल आणी और सरिता ताड़े। और नादुरा से ही हैं वसंतराव भोजने, सुनंदा, राजू और सोनू भोजने। बिलासपुर से ये पत्र आया है चन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी का। अगला पत्र है उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से प्रकाश त्रिसुनिया, विकास त्रिसुनिया, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या का। धरसीमा से आप हैं छेंदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से ये हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। सब्जी मंडी बुलढाणा महाराष्ट्र से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजू बाबा और आयजा एनम। और अघनपुर धर्मपुरा बस्तर से ये हैं डी वनिता राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी सोमशेखर नायडू, डी अक्षय कुमार नायडू, डी दुर्गेश कुमार नायडू और डी रोजा देवी नायडू। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से ये हैं कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्ताफा खान, राहू भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग। अकुला से ये रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। मोटका माफी जिला खंडवा से अगला पत्र है जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। ग्राम भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाषिनी चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से ये हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। और ये पत्र आया है ग्राम भगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। ग्राम दरचुरा से ये हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। बदलापुर मुंबई से विजय वडालकर, लता वडालकर, आजिंक्य वडालकर। और अंबरनाथ मुंबई से आकाश रेलकर और वैष्णवी रेलकर। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से ये पत्र आया रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। और भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से ये पत्र आया है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा का। छत्रपति संभाजीनगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर और अंशुमन और ओवी। रोहासी से ये पत्र आया है डगेसराम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव कुमार साहू। और दतरेंगी से यहां पे मनोज कुमार, सूरज कुमार और सागर कुमार साहू। उमरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से यह मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान और अबान अब्बासी। हिच्छा महासमुंद से अगला पत्र है अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव और भीषम दास मानिकपुरी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से ये हैं चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा, वान्या सिंगरोल। और बेमेतरा से ये पत्र आया है सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत सारथी और वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी का। बड़ा बांबू गांव सुपाही साही से आप हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन। और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। चांदनी चौक गढ़ी पंडरिया से ये पत्र आया है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र सेन और खुशी रौनक सेन का। भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ, शौर्या और शुभम जैन। झुमरी तलैया से ये देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले और छकुली इंगोले। और बैठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा और चटोदा सारा गांव से आप हैं सुजान वर्मा, सौदरा वर्मा और आयुषी कृत वर्मा।

युवा से ये पत्र आया है। यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। और ये पत्र है छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौर, गौतम इंगोले का। और अशोक नगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से हैं पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत फिल्म दिले नादान से।

कार्यक्रम श्रोता सुमन का अंतिम फरमाइशी नगमा अभिजीत और साधना सरगम के युगल स्वर में फिल्म जिगर से। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशी पत्र आए हैं। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये हैं राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से ये पत्र आया है। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजरानी और हिना कौसर का। गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ये हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया और साथ ही रिजवान खान, आशिया, सभिया, अनस और रेहान। भाटापारा छत्तीसगढ़ से यहां पर रामकुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश कार्तिक और युवराज राउत। जसपुर उत्तराखंड से ये पत्र आया है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाकत रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रियान और माहिरा नूर का। जामरून से ये हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज और कुमारी साध्वी जोशी। नेहरूवाड भाटापारा से अगला पत्र है प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र और तेजल साहू का। और मोहनपारा अकलतरा से यहां पे अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू। भाटापारा से ये हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भ्रघु, विनय ठाकुर और सोनाडी से ये हैं सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा। तालुका नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट और श्रीरामपुर भोकर से हैं हरीब भाऊ बिड़वे, श्रावण अनीता बिड़वे। गौतमनगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। नाज मंसिल महसूल सीतामढ़ी से हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममतरानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। पोटिया कला दुर्ग से ये पत्र आया है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू का। अनारकली बाजार जगराव से ये हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्छ पाठक। चार मीनार चौक गंडी पंडरिया से आप हैं दरियानमल अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी और झूलेलाल चौक तिलदा से ये हैं हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला दादी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से अगला पत्र है गुरविंदर सिंह पादा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। घंटाघर चौक खंडवा से अगला पत्र है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का। पेंशन बड़ा रायपुर से आप हैं रोमनाथ यादव, वंदना, सूर्यप्रकाश, शीला कनक, गुनगुन और तन्मय यादव। और भाटापारा से आप हैं दानसिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। सरवानिया महाराज जिला नीमच मध्यप्रदेश से आप हैं गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार। जतुका किशनपुर से ये हैं आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। सहारनपुर से ये हैं आशा नारंग और सुरेश नारंग। जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता ऋषवन साहू और मास्टर रंजीत साहू। और ग्राम लोहगढ़ ठाकरावाला जिला फिरोजपुर से ये हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल, अविराज गुरमान और पोत्रा गुरनूर सिंह। मोती गार्डन भाटापारा से ये हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू और युग कुमार झेरिया। हनुमानगढ़ राजस्थान से ये हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेस नायक और शोभा नायक। आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ और शाइना शर्मा। और तीन महुआ खापरखेड़ा जिला रायसेन से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती, ममता और गोमती साहू। महाराष्ट्र बीड शहर से ये हैं प्रकाश पगारिया, पराग प्रदीप, केशव पटेल और सरला प्रकाश। ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और लल्लन मिश्रा। कंवरकौलिन बढ़वा से ये हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली। सुभाष वार्ड भाटापारा से अजय यादव, श्रीमती पार्वती यादव, गिरीश कुमार और प्रेरणा यादव। और गणेश नगर बिलासपुर से ये हैं अशोक कुमार, श्रीमती अनिता यादव, प्रिंस कुमार और गब्बर यादव। ग्राम सौंगा मगरलोड से यहां पर फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन। और ये पत्र आया है रावेर से अर्शद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी का। और ग्राम मोहत से आप हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई, परू मुबारक बारे और तैमूर बारे। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से आप हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। मोताला महाराष्ट्र से आप हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गोरी, ओम और आदिनाथ वाद्य। वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि, निधीश, मायरा सुरोशे। और डोंबिवली मुंबई से भावना यादव, अधीश, स्मित गोरे और श्रियांश गोरे। पटेल नगर मलोड पंजाब से दीमक रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। और गांव कुम्हारहेड़ा जिला सहारनपुर से सैयद मसूर, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया। और लौंडीगुड़ा बस्तर से चंदन नाग, हरीश नाग, मोतीराम धोरे, दुखू राम, उदयनाग। दरभा बस्तर से रामघर कश्यप, रामघर बघेल, रामगढ़

0: And technical glitches in CBSE Class 12 examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. He was speaking to media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi. The minister said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels.
1: बच्चों को transparently अपने mark के बारे में जानकारी मिले.
2: Children should receive transparent information about their marks. Through scan copies, the answer sheets should reach them transparently. This is a provision under the OSM system. For the first time in the country, CBSE has implemented this system. Some discrepancies have come to notice in it. I take responsibility for this and it will be corrected properly. We will make sure that no genuine query raised by any student remains unanswered.
0: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate, CUET-UG, 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid al-Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates, whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month, will be released soon. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said the country has ample food stocks due to relentless efforts of the country's hard-working farmers. Mr. Chauhan was speaking at the inaugural ceremony of the two-day National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi today. The minister highlighted that the estimated food grain production in the country this year is over 376 million tonnes, which is 5.3% higher than last year. The minister also said the two-day event will help in setting a roadmap for the welfare of the Kharif agriculture sector. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Spanish counterpart, José Manuel Álvarez, on the sidelines of the informal meeting of the EU Foreign Affairs Ministers, Gymnich, in Cyprus today. In a social media post, Dr. Jaishankar said the meeting involved discussions on the next steps for trade, technology, defence and people-to-people ties between India and Spain. Dr. Jaishankar also appreciated Mr. Álvarez's views on ongoing global and regional developments. The External Affairs Minister reached Cyprus today to take part in the meeting. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation from the post. He will submit his resignation this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed about Mr. Siddaramaiah's decision after attending the breakfast meeting hosted by Mr. Siddaramaiah for his cabinet colleagues at the Chief Minister's residence today. Mr. Patil said the move came following directions from the Congress High Command. He also announced that Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar will take over as the new Chief Minister. Mr. D.K. Shivakumar was also present in the meeting. More from our correspondent.
3: The symbolic hug by Siddaramaiah and D.K. Shivakumar during the breakfast meeting today said it all. It drew curtain on the speculation about the resignation by Siddaramaiah. Chief Minister Office has informed that Siddaramaiah will go to Lok Bhavan at 2:30 p.m. today and address media persons at 3 p.m. In the absence of Governor, who is on tour, the resignation will be handed over to the Secretary. The longest serving Chief Minister, including a full 5 years term from 2013-18 and 3 years in this second term since May 2023, Siddaramaiah will hand over reins to D.K. Shivakumar finally for a remaining period of 2 years. Swearing in and cabinet reshuffle remains to be decided now. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: The Bharatiya Janata Party today announced the appointment of new state unit presidents for 3 states and national capital Delhi. BJP National President Nitin Naveen has appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief, and Keval Singh Dhillon will be the new President of the Punjab BJP. Abhishek Dev Roy has been appointed as Tripura BJP President. The West Bengal government has intensified measures against illegal infiltration under its Detect, Delete, Deport policy. Our correspondent reports that infiltrators are being detained and deported to Bangladesh after completion of legal formalities. Officials said around 50 Bangladeshi nationals were reported at the Hakimpur checkpost in Swarupnagar of North 24 Parganas today, seeking to return home. Around 350 people are currently housed in 3 holding centres in the area awaiting deportation. Security and surveillance have also been strengthened in border areas to check illegal infiltration. In Bihar, 8 people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for severe heat wave conditions over eastern Madhya Pradesh and Vidarbha today. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. The Met Department further predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry for the day. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. Home Minister said, a fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar dedicated his entire life to the service of the motherland. The festival of sacrifice, Eid ul-Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervour and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid ul-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. In the national capital, main congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Reports of Eid prayer congregations are also pouring in from other parts of the country. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. In West Bengal, lakhs of devotees offering prayers at mosques and Eidgahs. Our correspondent has the details.
4: In Kolkata, the Eid prayers were held at the Brigade Parade Ground instead of the traditional Red Road. At the historic Nakhoda Mosque, prayers were conducted in 2 sessions, ensuring roads remained clear. The state government has strictly enforced the old Calcutta High Court directive, urging peace and discipline during the festivities. Millions gathered at more than 5,000 mosques and prayer grounds in Murshidabad. In Malda, the state's second largest congregation took place at Sujapur's Noy Mauja Idga. Large gatherings were also reported in Nodia, North 24 Parganas and South 24 Parganas, with women joining prayers in many locations.
5: Shondipan Dashgupta, Akashwani News, Kolkata.
0: Cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid ul-Azha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
6: In Bhopal, thousands gathered at the historic Tajul Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down 4 Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last 8 after Thailand's world number 2 Kunlavut Vidithsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D. K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
7: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
7: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
8: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
7: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
9: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
7: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
10: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
7: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यानची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
6: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
7: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
11: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
7: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
12: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
7: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में

0: का ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं हल्बी बोली में हमारा दैनिक कार्यक्रम कला और कलाकार। दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

0: जोन गोटोए से उन तो रहे से ची आम संगे और गीत गोबिंद इतरो अच्छा आसे कि लोग मन गीत गाउन गाउन कितरो काम सरुन जाए से आम के पता बल नहीं चले ने और गीत सुन लो ने आम चो मन के बले खूबे अच्छा लागे से कसन बल्ले आम चो जीवनाने बले जुड़ली से आम चो दुख ले बले जुड़ली से आम चो सुख ले बले जुड़ली से और जोन गीत गा तो लोग चो जोन आवाज रहे से उन बले कितरो अच्छा रहे से और उन मन संगीत संगे इतरो सुंदर बांसोत गीत के की सपाई लोग जो मन के खूबे अच्छा लागे से। तो भाई बहन मन एज तो गीत गोविंद जो गोट रहे से ची मानतर आम चो लगे आसे अदाय गोटक जाहला ए जाहला के आमी सुनू।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाई समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक तो आपन मन सपाई सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
8: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज सुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
0: हाँ, तो भाई बहन मन ए नंगत नंगत गोट मन की तो आमी सुन लो ने। तो भाई बहन मन आमी देखू से कि आमचो जन माटी हो ऐसे आमचो देश जो माटी ने इता कितरो बड़े बड़े महान महान कलाकार मन जन्म धरला सुतने। तो उन मन आप लोग कला ले आप लोग कला के और नंगत बनाला आप लोग कला ने खूबे मेहनत मसागत करुन बाती आप लोग कला के और नंगत और सुंदर बनाला और कला जगत ने आप लोग खूबे सेवा दिला। तो उसनी गोट कलाकार आज आम चो संगे गोट आमी उन कलाकार चो गोट गोटावा उन मन चो नाम आए नर्मदा प्रसाद टेकाम जोन गोंड कला ले संबंधित आसोत। नर्मदा प्रसाद टेकाम मन खूबे प्रसिद्ध गोंड कलाकार रला जोन आप लो आदिवासी कला और माटी बल्लो ने प्रकृति चो बाना बनाते रला। उनमन जो जन्म 1956 ने पंटागढ़ मध्य प्रदेश जो डिंडोरी जिला ने बलून गोटुठान रली उता उनमन जो जन्म होन रला। गोंड जनजाति कला शैली जो मुख्य कलाकार उनमन रला। नानी बेरा नर्मदा प्रसाद टेकाम जी जोन रला उनमन नानी बेरा गाय चरातो समिया ने रेती ने बाना बनाते रला। उनमन के रेती ने बाना बनातुर खूबे मन रला ने फिर रहुन भाती भीती मन ने बाना बनाला। उनमन जो कला केसन 1983 ने भोपाल ने भारत भवन बलून गुटकठान आसे उता सपाई लोग जानला। उनमन जो जोन पेंटिंग रहे से उन जंगल और प्रकृति जो नाम जो रान रहे से रान और पेड़ पौधा उनमन जो ऊपरे उनमन जो पेंटिंग बल्लो ने उनमन जो बाना रली और चढ़े चढ़ूम और पक्षी और जनावर मन जो बाना उनमन बनाते रहोत। एचो संगे संगे उनमन खूबे आम जो जोन देवी देवता रहसोत पेनपुर का बलू से हामी उनमन जो बल्ले बाना उनमन बनाते रहोत और उनचो संगे जोन गुण लोक कथा होए से उनमन जो बल्ले उनमन बाना बनाते रहोत। 2006 ने मध्य प्रदेश सरकार बाटले सीकर सम्मान बलि उनमन के मेरला आप लो कलाचो महंता का जी। उनमन जो जोन काम रहे से आदिवासी लोक कला परिषद संगे बले उनमन जो काम रली और उनमन जो पेंटिंग भारत और विदेश ने बले प्रसिद्ध होली। नर्मदा प्रसाद टेकाम आदिवासी लोक कला और तुलसी साहित्य अकादमी मन बाटले बले प्रकाशित करला। डॉक्टर धर्मेंद्र परे चौधरीवासी पुस्तक गुण देवलोक ने खूबे देवी देवता मन जो बाना उनमन बनाला। उन बाना ने बाहरी बटोरन देवी जोन गरीबी और दुख के दूर करे से उनमन जो बाना बले उनमन बनाला। एचो संगे संगे जोन 64 दिशा ने नियंत्रित आसे उन देवी चो बले बाना उनमन बनाला। ये देवी संगे संगे उनमन बांगरी देवी गल्हाड़ी देवी तिप्ताहीन देवी बदावन देवी समृद्धि देवी चो बाना बले बनाला। नर्मदा प्रसाद आपलो चित्रकारी काजे खूबे व्यापक यात्रा करला और वर्तमान ने आदिवासी लोक कला परिषद ने कलाकार चो रूप ने खूबे योगदान दिला। नर्मदा प्रसाद टेकाम मंचो कला और उनमंचो योगदान काजे आमचो देश ने और देश चो बाहरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने खूबे मूल्यवान उनमंचो जगह हुए से यूरोप और अमेरिका जसन देश ने उनमंचो कला चो खूबे मांग आजीबले हुए से। तो भाई बहन मन ए मन रला नर्मदा प्रसाद टेकाम जोन गोंड कला ले संबंधित रला। तो आमचो नंगता और अच्छा गोट तो आसे मंतर आमचो लगे गोटक गीत गोविंदा से आले ए गीत के आमी सुनू फिर आमी गीत कुड़िया मन के चितावा।

हाँ तो भाई बिन मन ए सुंदर गीत के तो आमी सुनलू ने। तो ए गीत के गाउरला बलबीर सिंह कच्छ और उनचो संगवारी मन। तो भाई बहन मन हमचो गुट बात बले होली और नंगत नंगत गीत गोविंद बले होली और ए चो संगे मचोर जातो समिया बले होली से। तो जातुर पूरे कला और कलाकार कार्यक्रम सुनतोर सपाए गांव करिया भाई बहन सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैरेला करे से खूबे खूबे जुहार। दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र,

हल्बी बोली में अभी आपने सुना कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव और मोबाइल ऐप पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी हैं। शाम 4 बजे हमारी विशेष सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड है मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूं। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुंचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफर से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है। अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF

0: 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई, और विगत कई दशकों में आज सीआरपीएफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे, और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है सीआरपीएफ। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे बीएसएफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, सीआईएसएफ वाइटल इंस्टॉलेशंस में है, और एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो सीआरपीएफ ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक सीआरपीएफ ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज सीआरपीएफ ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का सीआरपीएफ ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो सीआरपीएफ को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूं कि सीआरपीएफ सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस बल का पार्ट हूं, मैं इस बल का हिस्सा हूं, और मुझे यहां कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी, होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070, इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुंचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार है भेजिए जरूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, एमबीए इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली सीआरपीएफ। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ। मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज ए चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: क्या बात है। आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस जमाने में, अब तो इन्फॉर्मेशन की क्रांति है चारों तरफ, आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोजगार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन सीपीओस कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से यूपीएससी ने लिया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्जाम निकालती है। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीन चार पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीजें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और यूपीएससी की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नजर बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर, आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर, सीआरपीएफ ओनली इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल वीआईपी सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस।
0: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
1: इसमें एनएसजी और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है, बाकी ये जितने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और इन सब की सिलेक्शन उस यूपीएससी के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है, और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहां कितनी वैकेंसीज है उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं। तो एंट्री लेवल है जो क्लास वन गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं।
0: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, ये खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
1: मैं एमबीए करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी। तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे, तो उस पर बातचीत हुई दूरभाष फोन के माध्यम से, लोगों ने बताया तो बधाइयां आनी शुरू हो गई। और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात, तो काफी बधाई संदेश आने लगे। और फिर यहां मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में, सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया।
0: वाह, क्या बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
1: निसंदेह है बहुत खुशी के बहुत है। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूं, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था।
0: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, इसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके एमबीए या फिर आप मान लीजिए आपके जब अपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता सीआरपीएफ तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
1: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो जहां भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में।

0: वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट एक अलग अलग अलग तरीके का निखर कर आता है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था वो मुझे बहुत हैंडी रहा। सीआरपीएफ में भी यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपनी
0: हाँ बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहां पे भी मुझे और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो। तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल की और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी
1: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आतुर हूँ आपसे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें। तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूंगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो CRPF उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो CRPF के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। CRPF एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। CRPF को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। CRPF को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 200 से ज्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, CRPF के बलिदान और योगदान का जो रिकॉग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि CRPF को एक काफी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का, जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती है।
0: जी, निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं CRPF ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए, CRPF में हमारा चूंकि मूवमेंट काफी फ्रीक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा, फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफी पॉपुलर गेम है जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूं, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूं और मैं खेलता हूं जवानों के साथ में।
0: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहां बन जाती होगी, क्योंकि वहां अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना।
1: क्या बात है।
0: तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन सीआरपीएफ में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको सीआरपीएफ ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो सीआरपीएफ का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पीनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा सीआरपीएफ की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और सीआरपीएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें सीआरपीएफ की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और सीआरपीएफ ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौकों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहां का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
0: वाह क्या
1: बात। तो एक काफी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा और दो मौकों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
0: वाह क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
1: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है और आप उसको जीते हैं और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफी अच्छा अनुभव रहा है।
0: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है मुझे ऐसा महसूस होता है, सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है
1: जी,
0: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
1: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में, उस दौरान सारे मीडिया के साथ जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहां यह बात भी बताना चाहूंगा कि मीडिया में जब मैं वहां PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
0: बात है 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
1: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहां ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहां उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी, तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूं तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूं, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूं।
0: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह ये होता था, एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था, तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे, तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूंगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज ऐसी एक्टिविटीज में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो वो ना करें, तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है, कैसा होता है?
1: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में, एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड, तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी।
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहनकर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूं कि ये एक बड़ी यूनिक है, आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
0: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जो आपके भाव पढ़ रही हूं, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्य निष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी जबानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुंचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी जिंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशंस पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूं, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, और मैं थैंकफुल हूं।
0: जी, निश्चित रूप से। और कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी जिंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहां आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहां पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी जिंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: हाँ। तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी, और मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएन

0: FM रेनबो प्रोग्राम को लेकर विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीत माला लेकर आते थे, और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतजार करते थे और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी। तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताजा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए।
1: बिल्कुल जी। और ये जो सफर है ये बहुत ही सुखद सफर है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
1: बिल्कुल
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में जरूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को जरूर खेलों से आप जोड़कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
0: निसंदेह।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
0: धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदन शील रहने का आग्रह किया।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जाने आज के कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 5:05 पर समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। संध्या 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम यू वाणी। संध्या 6:35 पर जगन्नाथ और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। 7 बजे हमारा क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा बस्तर के स्वर। 7:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम डांडामाली में रात्रि 8 बजे आज हम आपके लिए लेकर आएंगे कोया और साथियों के स्वर में धुरवी लोकगीत। कार्यक्रम पिलामन काजे गोट रात्रि 8:30 पर प्रस्तुति होगी शंभु नाथ नाग की। वार्ता कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा रात्रि 9:15 पर वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। कार्यक्रम घुमकली में आज रात 9:30 पर आनंद लीजिएगा नंदोराम भारती और साथियों के स्वर में बत्री नाटगीत का। रात्रि 10 बजे सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम फिल्म संगीत रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब जानें कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम चिंतन सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा साध्वी सुमन श्री का। श्री रामचरित मानस का गायन प्रसारित होगा प्रातः 6:25 पर। कृषि सामयिकी कार्यक्रम बेड़ा खाड़ाचो गोट प्रातः 6:35 पर एवं दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में कल प्रातः 6:40 पर सुनिएगा दंतेश्वरी आयापाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति करियाड़ी और साथी। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का प्रसारण होगा प्रातः 7:05 पर। आकर्षण होगी चर्चा एवं आज के अतिथि और होगी सुमधुर फिल्मी गीतों से सजी मधु रिमा। प्रातः 9 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। प्रातः 10 बजे कार्यक्रम होगा गुलशन। गुरुदुम कार्यक्रम में कल प्रातः 10:30 पर सुनिएगा

0: शिवराम नाग और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रातः 11 बजे। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम रुसरुसा में हम लेकर आएंगे लोक गाथा चंद्रकांत राजा का तीसरा भाग। गायिका होंगी शांति और साथी। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: श्रोता मन, समसामयिक विषय उपरे आधारित कार्यक्रम संगे मैं शंभुनाथ नाग रेडियो सुनतोर भाई बहन मन आजी चो हम चो ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा चो 150वीं जयंती बरक चो उपलक्ष्य ने आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम उपरे केंद्रित आसे। भगवान बिरसा मुंडा चो 150वीं जयंती बरक चो उपलक्ष्य ने एतवार 24 मई के नई दिल्ली चो लाल किला मैदान ने जनजाति सांस्कृतिक समागम चो आयोजन करला। ये कार्यक्रम ने मुख्य अतिथि चो रूप ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल होला। जनजाति सांस्कृतिक समागम ने देश भर ले जनजाति प्रतिनिधि युवा सामाजिक कार्यकर्ता और पारंपरिक समुदाय चो लोग मन बले रला। समारोह के संबोधित करते श्री शाह बल्ला कि ये समागम जनजाति मन चो महाकुंभ चो रूप ने एतोर कई बरक तक जान दे। हुनमन बल्ला कि भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समाज के आपलो संस्कृति धर्म और जल जंगल जमीन चो रक्षा चो संदेश दिलासोत। श्री शाह बल्ला कि उलगुलान आंदोलन ले अंग्रेज मन के धुरला चटातोर काम हौ रहे और हुनबेरा संचार चो सुविधा नीरलो बाद बले झारखंड ले गुजरात तक पूरा भारत ने जनजाति मन के भगवान बिरसा मुंडा ये संदेश दिला कि हमचे धर्म सही धर्म आए और हमचो रान बन उपरे कोचे कब्जा हौक नहीं सके। हुनमन बल्ला कि वनवासी अगर आज विचार करून धर्म चो रक्षा कर तो संकल्प के धरलो ने ये संकल्प हम के आपलो संस्कृति और देश ले जोड़ून संगाए दे। केंद्रीय गृह मंत्री स्पष्ट करला कि समान नागरिक संहिता बल्ले यूसीसी चो कोनी पाबंदी वनवासी समाज उपरे नी लगे दे और एचोले कोनी बले जनजाति परंपरा ले काई खिलवाड़ नी होय दे। केंद्रीय गृह मंत्री बल्ला कि जोन नक्सली हिंसा लागून 40,000 ले आगर जनजाति लोग मंचो जीव गेली से केंद्र सरकार 50 बरख जूना नक्सलवाद के खत्म करून दिली से और आज हम चो देश नक्सल समस्या ले पूरा मुक्त होली से। श्री शाह बल्ला कि जोन लोग वनवासी समाज और जनजाति मंचो बाढ़ती के थेबाउन बसुन रहत हुन मन के हमें खत्म करलू से। गोटोक जमाना ने नक्सली ले लड़तो काजे जहां सुरक्षा बल मंचो कैंप लगुन रहे हुन मन ने 70 कैंप मन के शहीद वीर गुंडादुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र ने बदलतोर काम नरेंद्र मोदी सरकार कर ली से। श्री शाह बल्ला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति कल्याण के आगे बढ़ातोर काम कर ली से। आगे चो सरकार चो समय जनजाति मंचो कल्याण काजे कुल बजट 28,000 करोड़ रुपया रहे जेके एपचो सरकार बढ़ाउन 1,50,000 करोड़ रुपया कर ली से। केंद्रीय मंत्री बल्ला के प्रधानमंत्री गरीब संताल परिवार ले इलो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाउन सपाई जनजाति समाज चो कल्याण चो काम करला से होता है। अटल जी चो समय ने झारखंड और छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य बनला और आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने जनजाति समाज चो मुख्यमंत्री बनला से। श्री शाह बल्ला की वनवासी मंचो ये आंदोलन एतुर दिने जनजाति लोग मन के बचाउन संग आए दे संगे संगे हम चो माटी संस्कृति और धर्म ले बले जोड़ून रहे दे। हनुमन बल्ला की तुई और मैं गोट की रखता हूँ अई मंत्र संगे वनवासी कल्याण आश्रम मुख्य सेवक बनुन जनजाति सेवा चो अखंड यज्ञ चलाला से। श्री शाह बल्ला की जनजाति लोग भ्रम ले बाचोत भेदभाव करतो लोग के चिताउन एक सोर होन बरक 2047 ने विकसित और समृद्ध भारत बनात और बांटने आगे बढ़ोत। राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम के संबोधित करते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्ला कि जनजाति समाज दुनिया के प्रकृति संगे संतुलित बाढ़ती चो बाढ़ दिखाऊ सके। मुख्यमंत्री बल्ला कि जनजाति समाज भारत चो सांस्कृतिक आत्मा चो सबले जूना और जागृत रूप आए हनुमन जनजाति भाषा संस्कृति और परंपरा चो संरक्षण उपरे जोर देते बल्ला कि राज्य सरकार गोंडी हल्बी और सादरी जैसन भाषा मन ने मूर चो शिक्षा के बढ़ावा दय से। श्री साई बल्ला की आदि परब बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसन आयोजन जनजाति पहचान और प्रतिभा के राष्ट्रीय मंच दय से। मुख्यमंत्री बल्ला कि बस्तर ले सरगुजा तक देवगुड़ी जैसन पारंपरिक आस्था चो केंद्र चो संरक्षण और विकास चो काम के

0: जोर लेकर शोध। हनुमान बल्ला की जनजाति समाज को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षित करतो सोजे परंपरा के बचा तो काजे नुहाए बल्कि ये तोर पीढ़ी मन के आप लोग जड़ ले जोड़तोर और हुंचो पहचान के बरसक बनातोर बांटने गोटोक माई मोर ढांका आए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार, प्रस्तुति थी शंभुनाथ नाग की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम यू वाणी।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ बात हो रही है आपके कंपेयर साथी रंभा जोशी से।
1: और मैं हूँ आपका कंपेयर साथी योगेश चौधरी, जो आज फिर कुछ नई प्रेरणा भरी बातें और थोड़ी मस्ती लेकर हाजिर हूँ। आप सभी को हमारा अभिवादन और नमस्कार।
0: योगेश,
1: हाँ,
0: आज इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है ना।
1: हाँ,
0: पढ़ाई, जानकारी, मनोरंजन और बातचीत सब कुछ एक क्लिक पर ही उपलब्ध होते हैं।
1: लेकिन दोस्तों, जहाँ तकनीक के कई फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी सामने आ रहे हैं। कई बार लोग इंटरनेट पर दिखाई देने वाली चीजों को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं।
0: सही कहा तुमने। और आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और ऑडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जो देखने और सुनने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे नकली होते हैं।
1: हाँ रंभा, तकनीक की मदद से अब किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरे और वीडियो को इस तरीके से बदला जा सकता है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, इस तकनीक को डीपफेक कहा जाता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाई जाती है।
1: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की फोटो या वीडियो लेकर उसमें दूसरे व्यक्ति का चेहरा जोड़ दिया जाता है या आवाज बदल दी जाती है। देखने वाला आसानी से धोखा खा सकता है।
0: यही कारण है आज डीपफेक समाज के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसका उपयोग गलत जानकारी फैलाने और लोगों को भ्रमित करने के लिए भी किया जा रहा है।
1: सही कहा, कई बार लोगों मजाक में मनोरंजन के नाम पर ऐसे वीडियो बना देते हैं, लेकिन बाद में यही किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: खासकर युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय भी युवा ही रहते हैं।
1: दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर चीजें सच्ची नहीं होती। किसी भी जानकारी को मानने से पहले उसकी पुष्टि करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और यदि किसी वीडियो में चेहरे की हरकत अजीब लगी या आवाज मिल ना खाए या बात असामान्य लगी है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए।
1: साथ ही हमेशा विश्वसनीय समाचार और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।
0: और अगर कोई संदिग्ध वीडियो मिले तो उसे बिना जांचे परखे आगे शेयर बिल्कुल ना करना चाहिए,
1: क्योंकि एक गलत वीडियो किसी की छवि और जीवन दोनों प्रभावित कर सकता है।
0: दोस्तों, तकनीक अपने आप में गलत नहीं होती, उसका सही और गलत उपयोग इंसान के हाथ में होता है।
1: यदि AI और डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की भलाई के लिए किया जाए, तो यह बहुत लाभदायक साबित हो सकता है।
0: इसीलिए जरूरी है कि हम तकनीक का उपयोग जिम्मेदार और जागरूकता के साथ करें
1: और अपने दोस्तों, परिवारों और समाज को भी डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक करें,
0: क्योंकि जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज की पहचान होते हैं।
1: तो दोस्तों, आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम सोशल मीडिया का उपयोग समझदारी से करेंगे और केवल सही जानकारी को ही आगे बढ़ाएंगे।
0: जब हम जागरूक रहेंगे तभी तकनीक हमारे लिए वरदान साबित होगी, नुकसान नहीं।
1: और यही जागरूकता हमें सुरक्षित, समझदार और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाती है।
0: डीपफेक से रहे सावधान, सच की करे पहचान, जागरूकता और समझदारी ही है डिजिटल सुरक्षा की शान।
1: तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर।
0: दोस्तों, आज आप सुनेंगे आज के फनकार में प्रसिद्ध गीतकार समीर के लिखे कुछ गीत। साथ ही आप सुनेंगे खेल समाचार में खेलों से जुड़ी कुछ जानकारी।
1: साथ ही आप सुनेंगे कविता लेखिका जोशी से और सामान्य ज्ञान की कुछ बातें। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के फनकार की ओर, जिसमें आज हम बातें करेंगे फिल्म जगत के प्रसिद्ध गीतकार समीर अंजान की।
7: दोस्तों, समीर का जन्म 24 फरवरी 1998 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनके पिता अंजान भी प्रसिद्ध गीतकार थे। समीर का वास्तविक नाम शीतला पांडे है, लेकिन वे समीर के नाम से प्रसिद्ध हुए।
6: बचपन से ही समीर को कविता और गीत लिखने में रुचि थी। उन्होंने वाणिज्य विषय से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका मन लेखन और संगीत की दुनिया में ही लगता था। बाद में वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए।
7: आइए दोस्तों, सुनते हैं ये गीत। फिल्म तेरे नाम से बोल है समीर के, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने और अपनी मीठी आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: उनकी पहचान फिल्म।
1: दोस्तों, मुंबई आने के बाद समीर को शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा। कई वर्षों की मेहनत के बाद उन्हें फिल्मों में गीत लिखने का अवसर मिला।
0: उनकी पहचान फिल्म दिल और आशिकी के गीतों से बनी। इन फिल्मों के गीत अत्यंत लोकप्रिय हुए और समीर रातों रात प्रसिद्ध हो गए।
1: सुनते हैं ये गीत फिल्म साजन से। बोल है समीर की, संगीत है नदीम श्रवण का और अपनी आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

दोस्तों बातें तो होती रहेगी और हम आपको प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाएंगे। आइए अभी सुनते हैं खेल समाचार में खेलों से जुड़ी कुछ जानकारी।

0: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ मुकाबलों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार कई युवा खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: भारतीय एथलीट सीरीज 2026 के आगामी मुकाबले जून महीने में गुवाहाटी, पुणे और लुधियाना में आयोजित किए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में देश के कई युवा खिलाड़ी हिस्सा लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होगा। भारत सहित कई देशों के खिलाड़ी इस बहुखेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: एशियन अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप 28 मई से हांगकांग में आयोजित होने वाला है। भारतीय युवा एथलीट इस प्रतियोगिता में देश को प्रतिनिधित्व करेंगे और पदक जीतने की उम्मीद जताई जा रही है।
0: जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता सिडनी में आयोजित होगी। भारतीय सटलर इस टूर्नामेंट में भाग लेकर विश्व स्तर पर अपनी रैंकिंग मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आज के खेल समाचार में बस इतना ही।

0: दोस्तों बातें हो रही थी प्रसिद्ध गीतकार समीर की। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध गीतकारों के साथ काम किया और हजारों गीत लिखे। उनके गीतों में सरल शब्दों के माध्यम से गहरी भावनाएं व्यक्त होती हैं। यही कारण है कि उनके गीत लोगों के दिलों को छू लेते हैं।
1: समीर ने नजर के सामने धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, तुम दिल के धड़कन में रहते हो जैसे अनेक सुपरहिट गीत लिखे। उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
0: आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म आशिकी से अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में। बोल है समीर के और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: दोस्तों, गीतों को देते हैं कुछ पल के लिए विराम और सुनते हैं कविता पाठ में लेखिका जोशी से उनकी कुछ कविताएं।
1: नमस्कार श्रोतागण, मैं लेखिका जोशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी कुछ चुनिंदा रचनाएं, कुछ एहसास और कुछ दिल से निकले शब्द। और अब अपनी पहली प्रस्तुति में मैं आपको एक ऐसे रिश्ते से रूबरू करवाना चाहूंगी जो हमारी जिंदगी में बिना आवाज किए अपनी एक खास जगह बना लेता है। दोस्ती, एक ऐसा रिश्ता जो कई बार बिना किसी वजह के बस दिल में उतर जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं ही आ जाते हैं और देखते ही देखते दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही नर्म, सच्ची और दिल को छू लेने वाली भावना लेकर आई हूं, मेरी कविता अनकही दोस्ती। कुछ लोग न जाने क्यों अपने से लगते हैं, बिना वजह दिल के बड़े करीब से लगते हैं। मालूम नहीं क्यों, क्या उनमें अच्छा लगने लगता है, एक पल बात करते करते रोज बातों के सिलसिले बनने लगते हैं। फिर वही अनकही सी राहत दिल के आस पास बसने लगती है।

नाम इस रिश्ते को दिल दोस्ती कहने लगती है। धड़कनों में उसकी मौजूदगी हल्के से गूंजने लगती है। वो शोर नहीं, बस प्यारी सी हंसी ठिठोली होती है। थके हुए दिन में भी दिल को राहत सी बोली होती है। दिन के कुछ पल साथ जीते हैं हम, मगर न जाने क्यों कुछ कमी सी लगती है। फिर से फोन पर बातें होने लगती हैं, जैसे दिल को उससे जुड़ने की आदत सी लगती है। फिर बिन कहे एक दूसरे की बातें समझने लगते हैं, जैसे एहसास शब्दों से नहीं खामोशियों से गुजरने लगते हैं। आंखों आंखों में इशारों में बातें होती हैं। ये दोस्ती है ही ऐसी जो कैसा भी वक्त हो उसे हल्का कर देती है। थकान के पीछे छुपी मुस्कान को भी बाहर ले आती है और दिल पर रखे बोझ को पल भर में हरा कर जाती है। दोस्ती कहकर दोस्ती नहीं की जाती, ये वक्त के साथ बस हो जाया करती है। दिल के दरवाजे बिना खटखटाए खुल जाया करते हैं और अपनेपन के रिश्ते खुद ब खुद बन जाया करते हैं। अब मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में जिंदगी की उन राहों की बात करना चाहूंगी जहां इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन मंजिल बार बार हाथ से फिसलती हुई लगती है। कई बार सपने बोझ बन जाते हैं और उम्मीदें भी थक कर चुप बैठ जाती हैं। फिर भी दिल के भीतर कहीं एक छोटी सी रोशनी जो हिम्मत की जलती रहती है। ये कविता उसी संघर्ष, उसी ठहराव और उसी नई उम्मीद की बात करती है जो हर सुबह हमें फिर से आगे बढ़ने का कारण देती है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है धूप की तपिश में। धूप की तपिश में इंतजार यूं ही टंगा रह जाता है। कदम तो चलते हैं राहों पर, मगर जवाब कहीं खो सा जाता है। सुबह की वो पहली किरण हाथों में फाइल लिए घर से निकल पड़ते हैं कदम हर दिन, कोशिश करते रहते हैं, मगर हाथों की ये लकीरें जीवन में रोशनी ला पाती नहीं। कभी योग्यता नहीं तो कभी अनुभव नहीं कहकर ठुकराए जाते हैं। मन भर जाता है निराशा से, कदम कई बार आगे बढ़ने से कतराते हैं। जवाब बनने की चाहत अक्सर अधूरी सी रह जाती है। सपने कहीं थक कर सो जाते हैं और जिंदगी बस एक सवाल बनकर रह जाती है। कदमों से ज्यादा मन की थकान भारी लगती है। नए दिन की शुरुआत फिर से उम्मीद भर देती है, जो हिम्मत देकर टूटते हुए भी खुद को बिखरने नहीं देती है। अब अपनी अगली प्रस्तुति में मैं जिंदगी की उस तस्वीर की बात करना चाहूंगी जो कभी आसान लगती है तो कभी बिल्कुल अनजानी और उलझी हुई। जीवन कई बार सवाल भी देता है और कई बार जवाब भी छुपा लेता है। कभी रिश्ते हमें जोड़ते हैं तो कभी वही दूरियां बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। मन के भीतर चलती ये खामोश जद्दोजहद हम सबके जीवन का हिस्सा है। कभी ठहराव, कभी आशा, कभी उलझन और कभी नई दिशा की तलाश। इन्हीं बदलते एहसासों को शब्दों में पिरोकर मैं अपनी अगली कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है जिंदगी एक पहेली सी। ये जिंदगी एक पहेली सी लगती है, जितनी सुलझती है उतनी ही कभी उलझी सी लगती है। न जाने कब क्या खड़ा मिले किस मोड़ पर, कभी हारी हुई सी और कभी जीती हुई सी लगती है। वो कदम जो लड़खड़ाते हुए संभल जाया करते हैं, कभी कोई सवाल सीधी सी तो कभी बड़ी भारी सी लगती है। वो मन जो उदासी से भरा हो कभी, उस अंधेरे कोने में जैसे कोई उम्मीद की जलती लौ सी लगती है। रिश्ते यहाँ जिनके न जाने कितने नाम हैं, जुड़ते हैं कभी प्रेम से और कभी

के बीच दूरियां सी लगती है। किसी का मन जो कितने वजहों से छोड़कर उन्हें आगे बढ़ जाता है, लेकिन कभी अधूरी दास्तां में छपी वही कोई तस्वीर सी लगती है। वो बदलते हर वक्त के एहसास जो कितने रंगों से भरे हुए हैं, कुछ के जज्बात गहरे और कुछ के हल्के हल्के से लगते हैं। अनजाने चेहरों में भी कभी कोई अपना और कब अपनों में परायापन लग जाता है, क्योंकि चेहरे यहाँ जैसे एक नकाब में ढके हुए से लगते हैं। किस चेहरे के पीछे छिपा है क्या, ये कौन जान पाया है? चेहरा कोई दर्द को और कोई अपनी असलियत को मुस्कान के पर्दे से ओढ़े हुए से लगते हैं। क्या हो अगर दर्पण सूरत के साथ किसी की सीरत भी बयां कर जाता, मगर दर्पण भी बाहरी खूबसूरती ही दिखाता है, अंदर की हकीकत तो अक्सर छुपी सी लगती है। जिंदगी के हर दिन में एक नया पन्ना खुलता है, किस पन्ने में क्या लिखा है इस बात से सभी अनजान होते हैं। अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हमें उन दिनों की ओर ले जाती है जहां मासूमियत ही हमारी सबसे बड़ी पहचान थी, हमारा बचपन, वो समय जब जिंदगी बिना बोझ की, बिना किसी चिंता के चलती थी। छोटी छोटी खुशियां ही दुनिया का केंद्र थी और हर पल में एक नई चमक छुपी रहती थी। ये कविता उसी बीते लम्हों को छूती है जो समय बीत जाने पर भी हमारे भीतर मुस्कुराहट छोड़ जाते हैं। प्रस्तुत है मेरी अगली कविता, बचपन की खुशबू। कभी कभी वो बचपन के लम्हे यादों के झरोकों से झांकने लगते हैं, सवर जाता है वो वर्तमान वक्त भी, मन के एहसास गुदगुदाने जो लगते हैं। क्या जिंदगी थी वो, बेपरवाह सी, अल्हड़पन की, चुलबुलेपन की, थोड़ी सी शरारत भरी सी। वो वक्त यूं ही आंखों के सामने तस्वीर बनकर जैसे ठहरने से लगते हैं। वो सुबह जिसके होते ही, वो कच्चे रास्ते पर जहां बिना सोचे समझे कदम दौड़ लगा जाते थे, ना कोई फिक्र, ना बोझ, ना आने वाले कल की चिंता, बस एक छोटी सी दुनिया और उसमें हम पूरे के पूरे हुए लगते थे। कभी पतंग का धागा, कभी बारिश की बूंदें, कभी माँ की पुकार, कभी दोस्तों की खिलखिलाहट, चारों तरफ गूंजने लगते थे। आज जब जिंदगी की भीड़ में खुद को ढूंढते हैं तो लगता है कहीं दूर से बचपन पुकार रहा हो और कह रहा हो, वापस आ जाओ जरा, तुम्हारे हिस्से की थोड़ी सी मासूमियत अब भी दिल में उसकी चमक बिखेरते हुए से लगते हैं। अब मेरी अगली और आज की अंतिम प्रस्तुति में है तकनीक, एक ऐसा शब्द जिसने हमारी जिंदगी को नई रफ्तार भी दी है और कई मोड़ों पर थाम कर रोक भी दिया है। एक तरफ यही तकनीक हमारे कामों को आसान बनाती है तो दूसरी तरफ इंसानों के बीच की दूरियां भी बढ़ा देती है। आज के दौर में बच्चों का बचपन स्क्रीन में सिमटता जा रहा है, जवानों की दिनचर्या मशीनों में खोती जा रही है और बुजुर्ग उन्हें अपने ही घर में अपने बच्चों का साथ कम मिल पाता है। इन्हीं बदलते हालातों को महसूस करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी अगली कविता, जिसका शीर्षक है तकनीकी दुविधा। तकनीक ने एक नई रोशनी दी, पर कहीं परछाई भी गहरी हुई। शहरों में कदम आसान हुए, पर गांव की राहें और उलझी हुई। बदलते वक्त के साथ कागज कलम का उपयोग कम हुआ, मोबाइल कंप्यूटर की दुनिया में हर दस्तावेज अब दर्ज हुआ। एक ओर तकनीक ने राहों को आसान बनाया, फॉर्म, टिकट, बिल, सब कुछ मुश्किल से आसान हो पाया, पर दूसरी ओर इसी ने दूरी का दरिया और गहरा कर डाला। एक ही घर में रहते लोग भी अब स्क्रीन पर ही

0: रिश्ता निभाने लगे निराला। बच्चे जवां तो सीख गए तेज उंगलियों से दुनिया चलाना, पर बुजुर्गों के दिल में अब भी हर बटन है अनजाना। कभी जो हंसी के ठहाके आंगन में गूंजा करते थे, अब स्क्रीन की रोशनी में चेहरों के भाव छिपा करते हैं। अब खेल तो हैं पर मोबाइल पर ज्यादा छाए, मैदानों की रौनक में वो पुराने कदम कम नजर आए। अब फैसला हम सबको करना है कि सुविधाएं हमारे साथ चलें या हम उनके पीछे भागते भागते अपनी दुनिया ही कहीं भूल चलें। धन्यवाद। आशा है मेरी इन रचनाओं ने आपके मन को कहीं ना कहीं छुआ होगा, कोई पुरानी याद जगाई होगी या कोई नई सोच दे गई होगी। इसी कामना के साथ मैं आज की अपनी प्रस्तुति को विराम देती हूँ। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ में कविताएं लेखिका जोशीशी। दोस्तों, आज के फनकार में हम बातें कर रहे थे प्रसिद्ध गीतकार समीर की। समीर ने लगभग 4000 से अधिक गीत लिखे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।
2: हाँ रंभा, और समीर की भाषा सरल और मधुर होती है। वे कठिन शब्दों का कम प्रयोग करते हैं, जिससे उनके गीत हर वर्ग के लोगों को आसानी से समझ में आते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मन से। बोल हैं समीर के, संगीत है संजीव दर्शन का, और अपनी आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्नि ने।

0: दोस्तों हम बातें कर रहे दोस्तों हम आपको और भी गीत सुनवाएंगे। अभी सुनते हैं सामान्य ज्ञान की कुछ ज्ञानवर्धक बातें।
1: पृथ्वी पर हर सेकंड लगभग 100 बार बिजली गिरती है। इसका मतलब है कि एक दिन में करीब 80 लाख बिजली की चमक होती है, जो वातावरण में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: मानव मस्तिष्क में इतनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उससे एक छोटा बल्ब चलाया जा सकता है। मस्तिष्क लगातार अरबों न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजता और प्राप्त करता रहता है।
1: इंसान के शरीर में मौजूद डीएनए इतना लंबा होता है कि यदि एक व्यक्ति के सभी डीएनए को सीधा फैलाया जाए तो वह सूर्य तक कई बार आने जाने जितना दूरी तय कर सकता है। यही शरीर की सबसे जटिल संरचनाएं में से एक है।
0: दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्यूसिया कहलाता है और यह फूल लगभग 1 मीटर तक बड़ा हो सकता है और इसे कॉर्फस फ्लावर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तेज गंध आती है।
1: मानव शरीर में लगभग 37 मिलियन कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं मिलकर शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों को सही तरीके से कार्य करने में सहायता करती है। वैज्ञानिक के अनुसार हर सेकंड लाखों कोशिकाएं नष्ट और नई बनाए रखती है। आज के सामान्य ज्ञान में बस इतना ही।
0: दोस्तों हम बातें कर रहे थे प्रसिद्ध गीतकार समीर की। दोस्तों समीर के सबसे लोकप्रिय और रोमांटिक गीत रहे हैं मेरा दिल भी कितना पागल है, सांसों की जरूरत हो जैसे, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, चल प्यार करेगी नजर के सामने जिगर के पास, जैसे कि समीर के गीतों में प्रेम विरह खुशी और जीवन की भावनाएं सुंदर ढंगों से व्यक्त होती हैं। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म कुछ कुछ होता है से। बोल है समीर के, संगीत दिया है जतिन ललित ने और आवाज है उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: दोस्तों आज के युवावाणी में बस इतना ही। चलते हैं इस वादे के साथ, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब के लिए अपने कंपेयर दोस्त योगेश चौधरी को
1: और मुझे यानी रंभा जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्ण पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में समाचार अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: जयपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायत माला मिली गौण खनिज निधि के हिस्सा। प्रदेश में लागू हो ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य अन्य जगह में मनाए जावा थे। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ सरकार है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ला मजबूत करे बर जिला पंचायत माला घलो गौण खनिज निधि में हिस्सा दे के आदेश जारी कर दे। खनिज साधन विभाग के मुताबिक गौण खनिज मल्ले मिलैया राशि के वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच तय अनुपात में करे जाही। ये निधि के उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसन विकास काम में करे जा सकही। मुख्यमंत्री उसने साह कही नहीं कि यह फैसला ले पंचायत मल्ला आर्थिक मजबूती मिली और ग्रामीण विकास काम में तेजी आई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कही नहीं कि भारत के किसान मन के मेहनत के सेती देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह संबोधित करत श्री चौहान बताइने कि यह बछर देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन ले ज्यादा है, जो उन पांचों बछर की तुलना में 5.3% ज्यादा है। श्री चौहान कहने कि 2 दिन के ये सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण पर एक रोड मैप तैयार करे में सहायक हो ही। ये सम्मेलन के उद्देश्य अब यह खरीफ ऋतु पर रणनीति में विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्दी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू करे जाही। ए बारे में काली रायपुर में खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अगुवाई में राज्य स्तरीय कार्यशाला रखेगी। बैठक में श्रीमती कंगाले है कहने की केंद्र सरकार अवैया खरीफ बछर में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम ला प्राथमिकता के संग लागू करे के दिशा में काम करत है। एक हर बार राज्य के राइस मिल मन ला तकनीकी रूप ले अपग्रेड करना जरूरी हो ही। ओमन आश्वस्त करीन है कि मिलर्स डाले दे गए सुझाव और समस्या के परीक्षण करके जरूरी प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे जाही। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ अशोक कुमार पंडा अपन भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी के परिचालन, उत्पादन, वित्तीय स्थिति और विकास योजना मन के समीक्षा करी। ए दौरान मन संयंत्र प्रबंधन लक्ष्य निर्धारित करे, सुरक्षा मानक ला मजबूत करे और उत्पादन में सुधार ऊपर विशेष ध्यान दे के निर्देश दिन। पत्रकार मले गोट बात करत श्री पंडा कहने कि राव घाट परियोजना छत्तीसगढ़ सेल और पूरा देश भर महत्वपूर्ण हवे। राव घाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद हवे। एखर ले देश ला लौह अयस्क मिली और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारी क्षमता ला घलो मजबूती मिली। श्री पंडा सेल के भविष्य के योजना मन के बारे में बताइने की कंपनी है अवैया 4-5 में अपन उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन ले बढ़ा के 35 मिलियन टन हर बछर करे के लक्ष्य रखे है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत अवैया कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी है देश भर के अपन 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज मन में बीमित श्रमिक मन के लयिका मन पर 700 सीट आरक्षित करे है। एक हर बार ऑनलाइन आवेदन करे के आखिरी तारीख 31 मई ले बढ़ा के 21 जून कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के मुताबिक ये आरक्षित सीट में योग्य उम्मीदवार के चयन नीट यूजी परीक्षा के माध्यम ले करे जाही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विद्यार्थी मन ला आश्वस्त करे है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE डहर ले शुरू करेगी नवा ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले एक प्रगतिशील साधन आए। श्री प्रधान नई दिल्ली में CBSE अधिकारी मन के संग बैठक के बाद ये बात कहीं। CBSE कक्षा 12वीं के परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगति और तकनीकी खराबी ला लेके श्री प्रधान स्वीकार करी है कि कुछ एक मुद्दा आगुआ है। ओमन विद्यार्थी मन ला आश्वासन दे है कि पुनर्मूल्यांकन के दौरान जम्मो शिकायत मन के समाधान करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने भाग में मनाया जावत है। त्याग और बलिदान के ये तिहार ला मुस्लिम समुदाय के लोगन मन ईदगाह और मस्जिद मन में विशेष नमाज अदा करी। ईद उल जुहा हजरत इब्राहिम डहले खुदा के आदेश के पालन करत अपन इकलौता बेटा के कुर्बानी दे के सुरतामा मनाए जाते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद उल जुहा में देशवासी मला बधाई दीन है। आज महान क्रांतिकारी और चिंतक वीर दामोदर सावरकर के जयंती हवे। ये मौका में मुख्यमंत्री सुदेश साह और मला श्रद्धांजलि अर्पित करीन। श्री साह कहीने कि भारत की स्वाधीनता पर अपन जिंदगी समर्पित करैया वीर सावरकर के अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और अटूट संकल्प के अमर कहानी हवे। विपरीत परिस्थिति में घरों राष्ट्रहित के प्रति उखर अटूट प्रतिबद्धता अवैया पीढ़ी निरंतर प्रेरित करत रही। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल है बरसा ले पहली जम्मू सड़क के मरम्मत कर ओला गड्ढा मुक्त करे के निर्देश दिन है। रायपुर परिक्षेत्र के दोनों मंडल के स्वीकृत निर्माणधीन और निविदा प्रक्रिया के प्रगति के समीक्षा के दौरान श्री बंसल अधिकारी मल्ले कहने की स्वीकृत काम के प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक भेजे जाही। ओमन निर्माण काम के गुणवत्ता के संगे संग समय सीमा में पूरा कर लेला कहीं संगे संग अनुविभागीय अधिकारी मल्ला लेके प्रमुख अभियंता तक जम्मू अधिकारी मल्ला हर मंगलवार मुख्यालय में रहे के घलो आदेश दिन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 के संशोधित तारीख और प्रवेश पत्र जारी कर दे है। NTA के मुताबिक परीक्षा 31 मई 6 और 7 जून के रखी जाही। ईद उल जुहा के से 3 तारीख में बदलाव करे गए है। NTA हा बताई है कि 31 मई के परीक्षा देवैया उम्मीदवार मन के प्रवेश पत्र जारी कर दे गए है। 6 और 7 जून के परीक्षा बार प्रवेश पत्र जल्दी से जारी करे जाही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में काली 29 मई ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। 3 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे कहा करही। उन्हें समारोह के पगरैती मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करही। ये मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल माई पहुना के रूप में मौजूद रही। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डहर ले आयोजित ये महोत्सव में आम के आने आने किस्म के प्रदर्शन लगाए जाही। 31 मई तक चलेगा ये महोत्सव के दौरान आम उत्पादन के नवा तकनीक प्रसंस्करण और विपणन संबंधी विषय ऊपर विशेषज्ञ डहर ले मार्गदर्शन दे जाही। प्रदर्शनी हरेक दिन मंझनिया 12 बजे ले रतिया 9 बजे तक आम लोगन मन पर खुले रही। अब थोड़ी समाचार मौसम के। प्रदेश के मौसम में काली ले बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार बताई कि ये बेरा एक ठीक चक्रवाती घेरा झारखंड में बने हैं। उन्हें एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश ले आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। एक असल प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। काली उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में हवा गरेर और गरज चमक के संग वर्षा होने की संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में करा गिर सकत है। काली ले अवैया 4 दिन तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभावित है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायत मल्ला मिली गौण खनिज निधि के हिस्सा। प्रदेश में लागू हो ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने जगह में मनाए जावत है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धरमैया स्वपदात् औपचारिक रूपेण त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। डीके शिवकुमारः नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन पदभारं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम आरक्षक दलाय राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदत्तवती। अत्रान्तरे सिक्किम राज्यं पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। होर्मुज जलडमरु मध्यस्य समीपे आक्रमणान्तरं अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये अवसादः वर्तितः। गृहमन्त्री अमितशाहः गान्धीनगरे जनसभायाम् अवैध प्रवासिनां देशात् निष्कासनार्थं सर्वकारस्य दृढसंकल्पं पुनः प्रत्यपादयत्। अपि च बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां पीवी सिंधुः तथा च लक्ष्य सेनः सिंगापुर ओपन इत्यस्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धरमैया इत्यसौ अद्य लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः स्वयं प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभारं ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 37.1% अधिक विधायकानां समर्थन सहचारेण कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतिना स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् प्रोक्तवान् यत् सः राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। सिद्धरमैया इत्येषः 23.2000 वर्षे द्वितीयवारं कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सञ्जातः। इतः पूर्वं सः 23-18 यावत् मुख्यमन्त्रित्वेन कार्यम् अकरोत्। सः राज्ये 8 वर्षाणां कार्यकालद्वयं पूरयित्वा सर्वाधिक समयमुपविशता मुख्यमन्त्रित्वेन गौरवम् अर्जितवान्। मुख्यमन्त्रित्वेन वित्तमन्त्रित्वेन च तेन राज्यस्य 17 आयव्ययकानि उपस्थापितानि। तस्य त्यागपत्रेण राज्ये सुदीर्घकालतः जायमानः सत्तासंघर्षः समाप्तः। अत्रान्तरे राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री डीके शिवकुमारः कर्णाटक कांग्रेस दलस्य वरिष्ठतमेषु नेतृषु कश्चन प्रमुखः अस्ति। 23.2000 विधानसभानिर्वाचने कांग्रेस दलस्य महत् विजये तेन प्रमुखा भूमिका निर्व्यूढा आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरक्षकबलाय बोधितवती यत् आरक्षाः अधिकं नागरिकाभिमुखा भवेयुः। सहैव समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रातः गंगटोकनगरे आयोजिते अलंकरणं संचलने सिक्किम आरक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय सम्बोधितवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किम आरक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: अत्रान्तरे उल्लास योजनायाः अन्तर्गतं सिक्किम राज्यम् आधिकारिक रूपेण पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। घोषणेयं यावत् गतदिवसे गंगटोकनगरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः इत्यस्याः गरिमामय उपस्थितौ सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे विहिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता, यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि, तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्ध विरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढ़तया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे चत्वारिंशदधिक त्रिंशत् कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमि प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्व आरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य सीबीएसई इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मन्त्रणां एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षा मंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकन प्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मंच वर्तते। सः नवदिल्ल्यां सीबीएसई अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् संबोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत, तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतन दिवस भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्ण आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, पीवी सिंधु, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिला तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां षोडश चक्रे पीवी सिंधु जापान देशस्य रीको गुंजी 21:09, 21:12 इत्यंकांतरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य एनके यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वारीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदितर शारनः स्पर्धायाः आरम्भे एव आहतो भूत्वा क्रीडांगणात् बहिर्जातः येन लक्ष्यसेनः आसयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं।
4: न शोर दिन रात न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: सुनो ना।
5: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
7: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700001-4242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242। सुनो ना।
5: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
7: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है जगन्नाथ और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।

0: आप सुन रहे थे जगन्नाथ और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: मिनट हुए हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

0: अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाली ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ अशोक कुमार पंडा ने अपने भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के परिचालन, उत्पादन, वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संयंत्र प्रबंधन को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और उत्पादकता में निरंतर सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पंडा ने कहा कि रावघाट परियोजना छत्तीसगढ़, सेल और पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। रावघाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद है। इससे देश को लौह अयस्क मिलेगा और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारित क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।
1: छत्तीसगढ़ के लिए, सेल के लिए और कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद है रावघाट, क्योंकि उसमें काफी रिजर्व्स हैं एंड वो रिजर्व्स को माइनिंग करते हुए कंट्री में अवेलेबल होगा आयरन ओर एज वेल एज भिलाई स्टील प्लांट का जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आएगा उसमें भी इसका योगदान रहेगा। इसलिए सेल का मैनेजमेंट का सारे फोकस इसके ऊपर है। ये रॉ मेटेरियल सिक्योरिटी होगा जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आ रहा है भिलाई में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: श्री पंडा ने सेल की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि कंपनी ने अगले 4 से 5 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है।
1: सेल ने अच्छा एफर्ट्स लिया है, डिफरेंट प्लांट्स में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है एंड कहीं कहीं पर आगे बढ़ गया है, बाकी जगह में ऑलरेडी अप्रूवल हो चुकी है। तो उसी हिसाब से हम लोग 20 मिलियन टन से 35 मिलियन टन में चले जाएंगे 4-5 साल में, ये हम लोग का लक्ष्य है।
0: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देशभर के अपने 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए 700 सीटें आरक्षित की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 21 जून कर दी है। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के अनुसार इन आरक्षित सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन नीट यूजी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। आज महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री साय ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले वीर सावरकर का जीवन अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और अट संकल्प की अमरगाथा है। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित के प्रति उनकी अट प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। महासमुंद जिले में हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए के एलपीजी घोटाला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ठाकुर पेट्रोकेमिकल अभनपुर के संतोष सिंह ठाकुर और सार्थक सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक खाद्य अधिकारी अजय यादव और मनीष चौधरी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जिले के बमनी धान उपार्जन केन्द्र में हुए धान घोटाला मामले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन केन्द्र प्रभारी गंगाधर जगत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 1.16 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के धान गबन का आरोप है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस समय एक चक्रवाती घेरा झारखंड में बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से तटीय आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने के आसार हैं।
2: मेघ गर्जन का गतिविधि जो है वो कल से प्रदेश में आगामी 2-3 दिन तक रहने की चांसेस है। कल उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर इस प्रभाव से तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि और वज्रपात होने के भी चांसेस है। लेकिन कल से लेके आगामी 4 दिन तक पूरा प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट आने की चांसेस है। गिरावट लगभग 2 से लेके 4 डिग्री होने की संभावना है।
0: इस बीच जगदलपुर में आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान जगदलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में ओले भी गिरे। इधर गरियाबंद जिले में देवभोग थाना क्षेत्र के माहौलकोट गांव में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। और राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI के रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन IR पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ राम राम नाड़मा राम राम।
1: हाँ राम राम दसर दादा राम राम।
0: हाँ एचओ संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और राम छो संग जो हो रिया संगवारी मन के मैं दसरू
1: और मैं अड़मा
0: हाँ मैं तू न करूँ से
1: राम राम।
0: और उन्हीं रेडियो कटा कटा नान नानी पीला मन बोल रही बात ने
1: आओ
0: उन नानी नानी पीला मन के हमी दोनों से बाट ले खूबे खूबे मया।
1: आओ तो दादा
0: के,
1: नेंड मन ले तले
0: हाँ
1: तो मन दिनल गले मन वा दादा लोट रेडियो के जन ओढ़किन मेले बातें लोग बातें कार्यक्रम पशवाइन लाए
0: हाँ।
1: माटा ओढ़किन मेले ज्ञान तद माट पशवाइन ने डाले ते मन वा
0: ज्ञान ध्यान से माटा खेत के केंजा लाए सियान माने संग है ने लटा माटा खेत के सियान माने खेत के कन पीला माने खेज तो
1: आओ तो ने डाले तेन मनलू ने लुटा ज्ञान तो माटा तेन पैस वत्तल है पर्यावरण और जनजाति इत कछु ने आदिवासी माने पर्यावरण तीन संग बाले संतुलन बना के मन तोड़े
0: मट्टा तगा माड़ा तगा मन तोर माने माने तीन बाता बाता सोच की तोर
1: है
0: आदि माटा तीन ने ना नार्दे ना मेटाते ना बाता बाता मेंदे बाता बाता सोचा की तो रही
1: आले तेन वेंडे मन आदिवासी जोन माने मन तोड़ू ओडु कोनी मुनिट के वेंडे माड़ा मेटा तीन एर दिन वेड़ दिन पुदला तीन इंदान ले सेवार्ज की सो वार रही तो नेंडु मन अली दे माड़ तीन मन वा रेडी के जनर दादल दीदी लोड किन कहता कलू मनवल आदिवासी माने बाते वन जाग तीन तीन धना दई वाले तेने इकीले या फिर अदु नेल दिन उड़ दो तल जाले तान सेवार जी की इसमें जो मनवले तान अगर उड़ दो ताले आड़ाले तेन बाते वेंडे वीतन दई बाते ये अचुटा तान वेंडे पुचके हुए तता तो इले तब मनलो पर्यावरण तीन मतलब प्रकृति तीन पुच की
0: प्राकृतिक ते पूजा की तोर मनवा आदिवासी माने बातकोटो माड़ा इन विन पूजा की तोर मध्याम बातकोटो आगा पर सब की तोरे
1: तो ये लेता जनजाति समाज में ता आडू इध जनजाति समाज तीन उड़ी मंजो आउर समाज जन में दे नखे कतन है दो माड़ा कुरुस का टीले पोदला वाट टीन जो लेकिन मनवा जो आदिवासी समाज में दे आदू मुनेट के बंदे माड़ा मेटा तीन उर्स तक कोनी उर्स कना दिन आड़ू बेचोर कोट मेटा तक मनता अचोर तीन के उपयोग की ता तान ले जा दग दुड़सो बेचोर लोन काम मनता बेचोर मन की जरूरत मनता अचोर तीन के
0: अचोर तीन के उपयोग की ता आओ मामा जनजाति समाज
1: है आओ इले तेने अवर मन समाज
0: तीन बेचोर जुवाड़ी पाड़ना बेचोर लोन पाड़ना अचोर ही उपयोग की तो रे
1: आओ आजकल मुनेट वेला ते कोनी आई वो फॉरेस्ट जो कहता विभाग वावे मत्ता छुटू मनवैया आदिवासी जनजाति समाज निला बेचोर काम वानु रचोर रे जाक लोन अटैचमेंट तान उपयोग कीनो रे
0: तो हड़ मदद हाँ नक्का निल टमेटा के तिराई बाले अजे माटा संगे संगे उन जाला बिन मेंदे
1: हाँ
0: ना होगा आ जाला तीन मिनट खेंज
1: आले केंद्रीय सीकल।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सीट तोड़।

0: हमने अद 28% मत्ता एच एस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वालेवा गाड़ी ना सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलत माट इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मोला तेने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मन चो विकल्प बनु रह दे।
4: सुनू कविता कविता है अल इद कविता तीन मंडे मन दादल गल
5: दादा दीदी मन तुमन सबके दादा जो काल बाटले जोहार। मैं एता कविता पाठ गाँव को लाई ले से मचो कविता पाठ के सुना काय बल्लो ने रान रलो ने तो हम चो जीवना है रान रलो ने हमके पानी मिरे दे लहरा मिरे से होने चो ऊपरे गोटक कविता लिख ले से उनके सुना रान रलो ने।

आम के मीरे से, रान रालो ने लेहरा पानी आम के मीरे से, रहतो काजे आम चो घर रुकले बने से, रहतो काजे आम चो घर रुकले बने से, पीला बे

नांगर जुआड़ी डोरी दावा रान ले मीरे से, गाड़ी टंगिया कटरी ढेटा रुकले बने से, गाड़ी टंगिया कटरी ढेटा रुकले बने से, भाजी बास्ता बोड़ा फुटू रान ले मीरे से, भाजी बास्ता बोड़ा फुटू रान ले मीरे से, डोकरा डोकरी धर तो बड़गी रुकले मीरे से, डोकरा डोकरी धर तो बड़गी रुकले मीरे से, रान ने आईग बारुआ नहीं आईग बुतावा, रान ने आईग बारुआ नहीं आई।

टोरा पाक फर रान ले मेरे से, महू टोरा पाक फर रान ले मेरे से, दोना चिपड़ी का जे पान रुक ले मेरे से, दोना चिपड़ी का जे पान रुक ले मेरे से, आईग बार तो काजे दारू रान ले मेरे से, आईग बार तो काजे दारू रान ले मेरे से, पिन तो कपड़ा लाता भले रुक ले मेरे से, पिंत तो कपड़ा लाता बले रुक ले मेरे से, जन्म मरण रुक संगे आए रुक के बचावा, जन्म मरण रुक संगे

0: दादा मन बूटा लगावा, दीदी मन बूटा लगावा।
1: दूसर कविता है, एक बले सुना। कसन बाले गागे से उनचो मुनिस बिता जुगे मंद खावा है, उनचो पे ये कविता के लिखने से एक सुना।
0: मुच भाग फुटली आया मंधा मिरलो मोके, मुचो कर्म फुटली बाबा मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके गोटो को ठगरा मिरलो मोके, मधा मिरलो मोके गोटो को ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फुटली आया मधा मिरलो मोके। पूरे नंगत सीधा रलो एबे होलो टेड़गा, पूरे नंगत सीधा रलो एबे होलो टेड़गा, दुई चिपड़ी भीतरे गेले बाग बनु आए लड़गा, दुई चिपड़ी भीतरे गेले बाग बनु आए लड़गा। लाटा फांदा काय झंझट काली के पेटलो मके, लाटा फांदा काय झंझट काली के पेटलो मोके, मोचो भाग फुटली आया मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फुटली बाबा मंधा मिरलो मोके। गोटोक नाई दुई नाई चार चार पीला, गोटोक नाई दुई नाई चार चार पीला, घरे मुठेक चाउर नियाय सगा बले इला, घरे मुठेक चाउर नियाय सगा बले इला। बाबा दिलो गोटक भांडुआ हुनके बले बिकलो, मोचो भाग फुटली आया मंधा मिरलो, मोचो करम फुटली बाबा मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके गोटक ठगरा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके गोटक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फुटली आया मंधा मिरलो मोके। बैल गेली बोकड़ी गेली कुकड़ी बले बिकलो, बैल गेली बोकड़ी गेली कुकड़ी बले बिकलो, रन भन घर के करलो मोंद खाऊक सीखलो, रन भन घर के करलो मोंद खाऊक सीखलो। इज्जत जमाए भाटी ने गेली लाज नी आए तुके, इज्जत जमाए भाटी ने गेली लाज नी आए तुके, मोचो भाग फुटली आया मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फुटली बाबा मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके गोटक ठगरा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके गोटक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फुटली आया मंधा मिरलो मोके। घरे रांदा नियाय मंतर दुआरे भैंसा बांधा, घरे रांदा नियाय मंतर दुआरे भैंसा बांधा, ताड़ी सल्फी नी छांडे नी छांडू आए लांदा, ताड़ी सल्फी नी छांडे नी छांडू आए लांदा। मंद बले से ये मनुक मोके छांड मोके, मंद बले से ये मनुक मोके छांड मोके, नहले मढ़ा भाटा ने उन भाती माई छांडे दे तुके, मोचो भाग फुटली आया मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फुटली बाबा मंधा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके गोटक ठगरा मिरलो मोके, मंधा मिरलो मोके गोटक ठगरा मिरलो मोके, मोचो भाग फुटली आया मंधा मिरलो मोके, मोचो करम फुटली बाबा मंधा मिरलो मोके।
1: ये और एक कविता के सुना, मनमोहनी बनोले के लिख ले से।
0: मनमोहनी रूपे तुचो खोपने मोंगरा फूल, मनमोहनी रूपे तुचो खोपने मोंगरा फूल, तुचो मायाने बया होले से घर के गेले भूल, तुचो मायाने बया होले से घर के गेले भूल। कारी चुंदरी कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, पंडरी रंग ने कजरी डोरा हाय फो बेरानी, पंडरी रंग ने कजरी डोरा हाय फो बेरानी, हुन डोरा चो बण लागली करे जाहुली चानी, हुन डोरा चो बण लागली करे जाहुली चानी, तुचो हिंडना मंजूर सन कनिया झूले झूल, तुचो हिंडना मंजूर सन कनिया झूले झूल। कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, नख ने चमके नख पालिस हाथ ने चूड़ी लाली, नख ने चमके नख पालिस हाथ ने चूड़ी लाली, माला पिंदली काय सुंदर टिकली कारी कारी, माला पिंदली काय सुंदर टिकली कारी कारी, नाखने नथनी हाय फो बे काने करन फूल, नाखने नथनी हाय फो बे काने करन फूल। कारी चुंदरी कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, गदरा देहने गुलाबी लुगा जम्फर गुलाबी, गदरा देहने गुलाबी लुगा जम्फर गुलाबी, पायने पायरी छमक छमक कर धन्ने चाबी, पायने पायरी छमक छमक कर धन्ने चाबी, तुचो रूप के दखुन मैं तो दुनिया गेले भूल, तुचो रूप के दखुन मैं तो दुनिया गेले भूल, कारी चुंदरी कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, मनमोहनी रूपे तुचो खोपने मोंगरा फूल, मनमोहनी रूपे तुचो खोपने मोंगरा फूल, तुचो मायाने बया होले से घर के गेले भूल, तुचो मायाने बया होले से घर के गेले भूल, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई, कारी चुंदरी सोन मुंदरी मोचो सुंदरी तुई।
1: मोचो कविता पाठ के तुमन मन सुनला, मोचो बाटले सबे मन के जय जोहार।
2: हेलो दादा,
3: ने कनेला कविता मत राई, कविता ना पे देर मत ता बाता
2: वंशारक्षण मत माड़ मेट तम वेहतले इद कविता तीन पोई स्वास मत्तर श्री दादा जोकाल। तो दसर दादा मनल को नीव कविता बद बद कने वेहतले अले मन गोंडो फाटा में दित पाड़ तीन मेंडे विशेषी कले अले
3: के
2: गीत

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संध्या के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जुहार रा इड मो जुहार
1: जुहार दोसर दादा जुहार
0: वाले पे आज मत्तिरा
1: हाँ ना ना चाहिए बेड़ा ना आज मत दादा ने क्यों बम पहुँचला
0: हाँ मोड़ा कोड़ा पहुँच मनवत्ती आए
1: ना मनाल को नहीं क्या जुहार बैठ की तलु है इन जमान वाले रेडियो के जन ओढ़ किन संग में जुहार बैठ की कले तेने संग किसान वाणी कार्यक्रम के जन ओढ़ उनकेर किसान दादा दीदी लोड किन नन्नड़मा
0: ना दसरू
1: मम्मी उड़ वाहल किन तो जुहार
0: तो अड़मा
1: हाँ दादा
0: नन कन इजे कन बेड़ा का डाटे बूता है अत्ता आज देखन बात कटो बेड़ा किन बिल बात कटो ईरी पारी पुटांते बिन जतना की ना दे
1: आओ इंजे बेड़ा बूतो ये तब दादा इंजे मुसुड़ों ना बात कछुने बेड़ा किन उड़ सीन उड़ेंगे बेड़ आगा बेड़ा गड़ा बात आते कन गड़ा किन उतरे पितीने द मोड नपने उत्तर ఇదైతేనే వేడ బూతో ఎత్త జాలే మనకి వేడ పెట్టి
0: అది కొన్ని వేడ తిన తయారు కీన దత్తాయి ముసుడు బతుకి కొన్ని ఉబాయి బతుకడు బీజమిక వీతనాథ్ నూక బతుకడు వీత వేతిత లాగిత వేంజి వీతత మున్నే మతలబ్ వెంజి వితాత మున్నే తే బాతుకొట్టు వెంజితిన్ ఉపచార్ కీనాది
1: ఉపచార్ కీనాది కచోని వెంజి నెల
0: నెల మెందే బా భూసా మెందే బా వాతాత్త అది బిత్తి మాటసెన్ మమ్ నన్న కిసాన్ బై బై మంతన అది మాటసెన్ కేతనా దై ఉపచార్ కిత్ కే కొన్ వీతనా వాలే
1: అంబేగాగా మనలు మన్వా కోయమానే పున్వోడు బుస్సాస్ మందన బహ్బాస్ మందన అది సప్తి వెంజికిన్ నర్కొండ నాస్ మందన దాడ్ పేర్కే అవికిను పత్త చెల్లె మాతే కి వెంజి వీతన్ లే మెందే కి బా
0: ఒప్పమెందే
1: అది సప్తి వెంజి వీతన మునెన్ వెంజికిను నాస్ తాసి మత్ కతు మనకి మాలూం పడే మాతే కి మనలు వెంజి కిన్ వీత తల్ కి వీత్ వాలే అడు వాలే తిన్ తానే సంగ్ సంగు మనల్ బెనోరే కృషి ఖేతి కిసాని కి నోడ్ బితల ఓడ్ సాయి బిడ్ మన్ వెంజి నెల ఒప్తావ్ కి ఒప్పో ఇంజ ఓడ్ కిమెట్ పూచ రుచ వన్ కి ఓ
0: పూచ రుచ కిత్ కే కొన్ మత్ మిక బాత్ కొట ఈ తోరే
1: ఆ
0: అదే మత్ ఇత్ కే కొన్ బీ జాతిన్ ఉపచార్ కి నా దై ఉపచార్ కిత్ కే కొన్ నావాజ వెంజితా వెంజీవా పేడేవా बीजा नेलटा मत के कोन बीतना
1: हाँ
0: है
1: हाँ आले तेने ने के मूल के तनोर दादा है अब नन वेजी बीती मत तनरा ना वेजी मोड़ियो अब वो मना लूप चर की वत कारण ते मोड़ियो मना के मालूम मनो इन वेजी नेले मनता की नेला मनो
0: नेल दे बैंड उपचार की ना
1: हाँ नेल दे बैंड उपचार की हुआ था दिगा नेल नेक गरम मंदना दादी सब ते बैंड वेजी मोड़े ना भाई अच्छा मतलब नेल दानुसार बैंडे वेजी किन उड़ी मन बीत हुआ था
0: నేల్తే ఉపచార్ కియా నా బెండ్ మాట అదే సాహాబే కృషి సాహాబే కెతి తోరే
1: ఓరే కెత తోరు అస్కే పేర్ కోడా మాట కిన్ కేంజి మన్ ఓడా మాట తే ఓడా అర్ధ తాకి మన్ మన కిన్ వెంజి వీతన దై వెంజి అయ్యి కోహ్లాయి వాత జనాయి నుంకయి అవి కిన్ వీతన దై అస్కే మన్ వ పసల్ జో హై అది మన కిన్ నెక్క దిద్ది దొరకత
0: దొరకిత
1: తో ఇవి మాట కిన్ మన్ వ కిసాన్ దాదా దిదిలి కేంజి ఆడనెల్ల బెనోన్ కె పుత్తనోన్ బితన్ పుచరు చెకి విడాడు तो दसर दादा इवकोन माटा किन मनल मन किसान दादा लगा एवीसी सित्तल इंजे मनगा जहला इंदन माठा मेंदे इविकिन मेंदे एवतीका
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कितां आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटाद बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूतते वेंड मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
0: हाँ तो अड़मा
1: हाँ दादा
0: ऐत कुन जाला मत्ता है
1: हाँ
0: ना किसान दादा दीदी वन केन तो रही
1: हाँ
0: ये आज संगे संगे ना वाएगा दिनाले ज्ञान दियान ता मोटरा पोइसमन वाह तो मैं ही
1: हाँ वाइनुला दिनाल के लिए मनु किसान दादा दीदी लड़कीन मेरे लिए बातें लग बातें जानकारी पोइस वाइनुला निन्न में डाले थे ने मौसम संबंधित जानकारी पोस्वत तलमनागा मौसम इतक चुने मुसु कालम डोई कालम आसुंता जानकारी इंज मुसुडे उधर रहता केत किसानी कीनत दे तो आदिने बालेत बिदनपन ते वेंजी बातावीत काता आसुंता उनके माटा किन के तले ने मनल भेट वार्ता तत्तल में दिला एक मंदिर डॉक्टर एच पी चंद्रा आरु वेन संग वेतन और बितल
0: लकमुरा मरका
1: अले इद भेट वार्ता तीन मंडे मनल मनव किसान दादा दिल्ली लग एवती का
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी बोड़ू बढ़ाए संग जोरिया संगवारी के मैं झिटकू करें से जुहार। तो हामी खेती बाड़ी चो संबंधित कहीं ना कहीं ज्ञान ध्यान चो गोड़ धरुने उसे तो आज ही उसने हामी हमचो बीच ने उपस्थित आसत हमचो विशेषज्ञ श्री एच पी चंद्राकर सर जो मौसम विभाग अधिकारी जगदलपुर चौथ। तो सर आपन जो मौसम विभाग में पदस्थ आसत जगदलपुर में तो सबले पहल सर आप मन के खूबे खूबे धन्यवाद हम जो प्रोग्राम ने ये तो काजे
7: आपको भी धन्यवाद।
6: हाँ सर तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि सर आपका परिचय आप अपने से देंगे आपका विशेष कार्य क्या रहता है आपके विभाग में उस नाम बताएंगे।
7: मैं एच पी चंद्रा मौसम विज्ञानी हूँ यही अभी फिलहाल पदस्थ हूँ। मूल रूप से जो हमारा विभाग है वो सबसे पहले जो काम करता है वो डाटा कलेक्शन का काम करता है उसके अंदर डाटा का फिर हम लोग कलेक्ट होने के बाद में उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद आज की परिस्थिति में कौन सी मौसमी तंत्र है मौजूद है
6: जी
7: उसके अंदर फिर हम पिछला मौसम को देखते हैं कि हमारा पिछला मौसम क्या था उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे का मौसम हो किस तरह से जाएगा। तो इस तरह से हमारा डाटा जो कलेक्शन का काम है
6: जी
7: वो किया जाता है उसके बाद में उस पर एनालिसिस होता है। एनालिसिस करने के बाद में फिर आगे है
6: जी
7: मौसम की घटना किस तरह से हो सकती है क्या होगी
6: जी
7: ये हमारा

0: जो पहले के जानकारी है
1: जी।
0: वो और तत्कालिक जो मौसम की तंत्र है वो जो स्थित है
1: जी।
0: वो दोनों को देख करके मौसम पूर्वानुमान को जारी किया जाता है।
1: अच्छा अच्छा सर, ये प्रतिदिन जो डाटा कलेक्ट करते हैं प्रतिदिन भेजते हैं या फिर इसका साप्ताहिक होता है या मासिक होता है, कैसे होता है सर इसको बताइए।
0: देखिए हमारे पास जो डाटा कलेक्शन है अलग अलग टाइप के हैं
1: जी।
0: एक तो जैसे जगदलपुर की हम बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे डाटा कलेक्शन का काम है होता है
1: जी।
0: तो यहाँ तीन यूनिट अभी फिलहाल स्थापित है। एक को हम लोग बोलते हैं सरफेस ऑब्जर्वेशन या सतही प्रेक्षण। इसमें
1: अच्छा।
0: दिन में 8 बार प्रेक्षण लेते हैं और उसको तत्काल ही संबंधित उच्च ऑफिस है उसको हम भेज देते हैं। दूसरा है RSRW बोलते हैं जिसमें कि ऊपरी हवा की प्रेक्षण के लिए
1: जी।
0: हम लोग उस यूनिट में काम करते हैं जिसमें ऊपर में जो हवा चलती है तो उसमें तापमान है
1: जी।
0: जल वाष्प की मात्रा है दाब है
1: जी।
0: हवा की दिशा है और हवा की गति है
1: जी जी
0: इस ये 5 एलिमेंट है वो हमको मिल जाता है जिसको हम तत्काल ही जो हेड ऑफिस है उसको भेज देते हैं। तीसरा
1: अच्छा।
0: यूनिट है
1: जी।
0: जो यहाँ पर AMS के नाम से जाना जाता है
1: जी।
0: तो इसमें है मुख्य रूप से जो एविएशन सेक्टर को
1: अच्छा
0: तत्कालिक मौसम की जानकारी देने के लिए
1: हाँ।
0: इस यूनिट का काम रहता है। ये सामान्यतः हर 1 घंटे में ऑब्जर्वेशन होता है
1: अच्छा
0: और यदि वॉच आवर चला तो
1: हाँ।
0: उस परिस्थिति पर हर आधे घंटे में ऑब्जर्वेशन लेकर के संबंधित जो ATC है एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको दे देते हैं जो पायलट से सीधा संपर्क करके वहां के तत्कालिक मौसम की जानकारी को वो साझा करते हैं।
1: अच्छा अच्छा बहुत अच्छी जानकारी दी सर। जैसे कि सर हम किसानों की बात करें तो किसानों को हम आपके मौसम विभाग किस तरह से मदद करते हैं, उनका विवरण कैसे रहता है सर, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए।
0: देखिए लगभग जो हमारा विभाग है मुख्य रूप से जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का ऑफिस है
1: जी
0: वो है मौसम केंद्र रायपुर है वहाँ पर एक कृषि बुलेटिन जारी होता है तो कृषि बुलेटिन में जो मौसम विभाग है वो मौसम का पूर्वानुमान देता है उसके बाद में उसको संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय में भेज दिया जाता है। वहां से फिर जो कृषि वैज्ञानिक हैं उसमें संबंधित क्षेत्र में क्या क्या किसानों को करना चाहिए
1: जी
0: किन परिस्थितियों में क्या दवाई छिड़काव करना चाहिए या बाकी जो जानकारी है
1: जी
0: वो सारे के सारे देते हैं और इनको दोनों को कंपाइल करके फिर उसको वेबसाइट में डाल देते हैं या फिर संबंधित जो कृषि विभाग है
1: जी जी
0: उसको भेज देते हैं तो कृषि विभाग है वो किसानों तक पहुंचाते हैं जिसका लाभ है वो किसानों को मिलता है।
1: अच्छा अच्छा जी। जैसे कि सर हम जानना चाहते हैं कि मौसम जैसे वर्षा ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु होती है शीत ऋतु होती है, ऋतुओं के अनुसार कैसे मतलब जानकारी एकत्रित करके हम किसानों को दे ताकि उन लोग अपने कृषि में ज़्यादा आमदनी अर्जित कर सके सर।
0: देखिए वास्तव में देखा जाए तो किसानों को 1 से लेकर के 3 दिन का उनको मौसम की पूर्वानुमान की जरूरत पड़ती है। उसका कारण यह है कि उनको बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से जो ये रहता है वो सिंचाई संबंधित रहता है अभी 1-2 दिन में पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा ये परिस्थितियां रहती है। दूसरी चीज है
1: जी,
0: कि पानी गिरेगा
1: जी सर
0: तो वो किस दिन गिरेगा जिसके कारण से उसको डाला गया खाद है या फिर डाला गया दवाई है
1: जी,
0: वो बेअसर ना हो जाए तो ये पूर्वानुमान है उन लोगों के लिए
1: जी,
0: बहुत ही ज्यादा फायदे का है यदि उस पर ध्यान दें तो। तीसरी चीज है कि हर सीजन में कुछ न कुछ मौसमी घटनाएं होती हैं जिससे दुर्घटना होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो किसान वर्ग है
1: जी,
0: वो प्रायः फील्ड में रहते हैं तो फील्ड में रहते हैं तो उस परिस्थिति पर उसके बचाव के कुछ उपाय उसको चाहिए क्योंकि वहां पर और कोई बचाने वाला या फिर और कोई घर नहीं है या कोई छत नहीं है जिससे वो बच सके
1: जी,
0: तो उसमें जो रहता है कि जैसे हम कहीं पर बाहर गए हैं वहाँ उस कंडीशन पर खेत में बैठे हैं गड़गड़ाहट हो रही है मेघ गर्जन हो रहा है मेघ गर्जन के साथ में जो बिजली गिरता है जिसको हम वज्रपात बोलते हैं तो वज्रपात गिरने के कारण से बहुत सारे लोगों की अकस्मात है वो मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत दुखदायी रहता है कि ये क्षणिक में ही ये घटना हो जाती है। दूसरी चीज है कि बस्तर संभाग में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ के जो यदि पानी गिरा तो जाहिर तौर पर नीचे की ओर बहुत तेजी से वो बहते हैं, तो इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो यदि अच्छी बारिश हो जाए तो उस कारण से फ्लैश फ्लड आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें कि जो नीचे में खड़ा व्यक्ति है या जानवर है या कोई घर है तो उसके बह जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो रहता है, तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि वो ध्यान दें कि हमको किस समय किस चेतावनी को जारी किया गया है, और उस चेतावनी का भले ही उस जगह पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो घटनाएं होते रहती हैं।
1: जी जी।
0: तो इसलिए बहुत ज्यादा चेतावनी को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसको थोड़ा ध्यान देकर के सतर्क होकर के खेतों में या जहां भी काम कर रहे हैं वो काम को करें।
1: जी जी, सही कहा सर आपने। कभी कभी ऐसे होता है सर कि कुछ क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखता है, कुछ क्षेत्र में नहीं दिखता है, तो इसी वजह से उन लोग लापरवाही करते हैं किसान, तो इस तरह से कभी कभी उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सही कहा। तो ऐसे सावधानी बरतेंगे तो उन लोग अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि सर, साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूंगा सर, जैसे मौसम और जलवायु में उसमें क्या अंतर हो सकता है?
0: देखिए, जो मौसम होता है उसमें मुख्य रूप से एक ही तत्व को देखा जाए तो उसमें पानी गिरना है, मौसम का मतलब पानी गिरने से है। लेकिन उसके अतिरिक्त तो जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की घटनाएं हैं, जो पानी ही गिरना नहीं, ओलावृष्टि भी है, या फिर बादल का आना है, या फिर गरज चमक होना है, या फिर अंधड़ चलना है, अंधड़ मतलब तेज हवा जो चलना है, तो ये सारी घटनाएं हैं
1: जी,
0: वो होती है। यदि जिस समय हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मौसम।
1: अच्छा।
0: अब यदि हम जलवायु की बात करें
1: जी जी,
0: तो ये मान लीजिए कि जनवरी के महीने में प्रायः ठंड रहता है, तो लंबे समय तक, लगभग 50 साल में, पिछले 50 सालों में उस जनवरी के महीने में किस तरह से मौसम है वो रहा है, तो उसकी जो औसत है उसको हम दर्शाते हैं, उसको हम जलवायु के रूप में जानते हैं। तो उसमें यही चीज होता है कि चूंकि ठंड के सीजन में मुख्य रूप से टेम्परेचर को देखा जाता है, टेम्परेचर मतलब ठंड की मात्रा है
1: जी,
0: अधिकतम को भी देखते हैं, क्योंकि उस समय कहीं दिन में भी इतना ज्यादा ठंड ना हो कि जिसके कारण से दिक्कत आए, इसको हम परिभाषित करते हैं शीत दिवस के रूप में या कोल्ड डे के रूप में।
1: जी जी।
0: तीसरी चीज है कि बारिश की संख्या, औसत दिनों की संख्या कितनी है। अब इसका मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो पर्यटन के लिए ज्यादातर उपयोग आता है। दूसरी चीज है कि ये जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं या फैक्ट्रियां चलती हैं या फिर जो यातायात के साधन है
1: जी,
0: उनके लिए ज्यादातर उपयोग में आता है।
1: हाँ हाँ जी। जैसे कि सर, आजकल देखा जाए तो आधुनिक युग में औद्योगिकरण बहुत हो चुका है और अंधाधुंध कटाई भी हो रहा है, इसके वजह से पर्यावरण में कितना प्रभाव पड़ रहा है सर? इसका मौसम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको बताइए थोड़ा।
0: देखिए, औद्योगिकीकरण ही केवल नहीं हो रहा है, चूंकि जैसे जैसे ये जो औद्योगिकीकरण है वो बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ लोगों के जो बसाहट या रहने रहन सहन बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है
1: जी।
0: तो बदलाव केवल आदमी की जिंदगी में नहीं हुआ है या जनसंख्या में ही नहीं हुआ है
1: जी।
0: उसके अतिरिक्त मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है
1: जी।
0: अब जैसे हम एक ग्लोबल वार्मिंग करके शब्द है
1: जी।
0: तो ग्लोबल वार्मिंग में होता ही है कि यदि हमारा जो पृथ्वी है उसके तापमान में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। यदि हम देखें तो सन 2000 के और उसके बाद में
1: जी,
0: चूंकि प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ, उसके अंदर फिर औद्योगिकीकरण में तेजी आया
1: जी,
0: रोड सड़क दुनियादारी के बनने लगे
1: जी,
0: तो उसके कारण से एक तो औद्योगिकीकरण के कारण वहां से निकलने वाली ऊष्मा है वातावरण में गया
1: जी,
0: औद्योगिकीकरण होने के कारण से बहुत सारे पेड़ पौधे भी कटे
1: जी,
0: औद्योगिकीकरण होने के कारण से जो घर बनने लगे तो उसमें भी पेड़ पौधे कटे, या फिर वहां जो घरों में है
1: जी,
0: जो ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी ऊष्मा तो आखिर में वातावरण में ही जाएगी ना
1: जी।
0: तो वातावरण में उसका भी जा रहा है। हम वाहन का उपयोग कर रहे हैं, पहले पैदल चलते थे, आजकल हम वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो ईंधन उपयोग हो रहा है, वो जो उष्मा उपयोग हो रहा है, अल्टीमेटली वातावरण में ही जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो

0: 2000 के बाद में लगभग लगभग तेजी से बदलाव आया है, और सन 2025 तक
1: जी
0: लगभग 16 बार
1: हम्म,
0: ग्रीष्म वर्ष के रूप में जाना गया है।
1: अच्छा, 2000 से 2000 से
0: 2000 से
1: 2025 तक।
0: लेकर के 2025 सालों में
1: जी
0: 16 बार है, जिसमें कि सामान्य ताप से काफी ज्यादा औसत तापमान है वो देखने को मिला है।
1: अच्छा, बढ़ती क्रम में दिखा है। जैसे कि सर, ऋतु के बारे में यदि हम उसको प्रकार में बांटे तो कितने प्रकार की हो सकती है ऋतुएं?
0: देखिए, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है एक अलग है,
1: जी
0: और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। इसमें है, मुख्य रूप से देखा जाए तो हम जनवरी और फरवरी के महीने को
1: जी
0: विंटर सीजन के रूप में या शीत ऋतु के रूप में जानते हैं। उसके अंदर मार्च, अप्रैल और मई के महीने को
1: जी
0: प्री मानसून सीजन के रूप में जानते हैं। उसके अंदर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसको मानसून सीजन के रूप में जानते हैं। उसके अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको
1: जी
0: हम पोस्ट मानसून के रूप में जानते हैं।
1: अच्छा, जी बहुत अच्छा जानकारी दी सर। जैसे कि सर, हम अभी कौन सी ऋतु चल रही होगी और इसमें हम क्या सावधानी बरतें और हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें इसके बारे में?
0: देखिए, ये है सामान्य बोलचाल की भाषा में ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन वास्तव में एक दूसरे कारण से इसको नाम दिया गया है
1: जी
0: प्री मानसून सीजन का।
1: हाँ
0: ठीक है, चूंकि
1: जी
0: मानसून के पहले का जो सीजन है मार्च, अप्रैल और मई के महीना,
1: जी
0: तो ये जो तीनों महीना है ये प्री मानसून के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज है कि ये प्री मानसून सीजन है, मुख्य रूप से इसमें सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है, चूंकि ग्रीष्म काल है तो गर्मी ज्यादा रहेगी, एक हो
1: जी
0: गई। दूसरी चीज है कि इस सीजन में अंधड़ चलने, ओलावृष्टि होना
1: जी
0: और वज्रपात होने की घटना है बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें है कि ये सीजन है, ये चार चीजों के लिए जाना जा रहा है। नंबर एक है कि गर्मी, नंबर दो है अकस्मात वर्षा है,
1: जी
0: तेज हवा चलना है
1: जी
0: और वज्रपात है।
1: अच्छा जी, जैसे कि सर काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि पहले गर्मियों में ज़्यादा वर्षा नहीं होती थी, लेकिन हम पिछले 5 साल की बात करें तो गर्मियों में भी अधिकतर वर्षा देखने को मिलता है, तो ये किस वजह से हो रहा है सर? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि प्री मानसून सीजन में बारिश नहीं होती है। होती है, पहले भी होती थी, आज
1: जी
0: भी हो रही है और आगे भी होते रहेगा। उसका कारण यह है कि जो भारत की भूमि है
1: जी
0: ये उत्तरी गोलार्ध में है, चूंकि सूर्य है
1: जी
0: ये उत्तरी गोलार्ध में रहता है, इसके कारण से ये ग्रीष्म ऋतु कहलाता है।
1: जी
0: दूसरी चीज है कि जो भारत की भौगोलिक संरचना है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उत्तर है वो पहाड़ से घिरा हुआ है,
1: जी
0: हिमालय पहाड़ है।
1: जी
0: तो इस सीजन में चूंकि बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण से
1: जी
0: कुछ मौसमी तंत्र बनते हैं, और तंत्र बनने के कारण से नमी है या तो अरब सागर से आता है, मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से आता है। यदि हम प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो नमी मिलता है
1: जी
0: इस सीजन में
1: अच्छा
0: वो है बंगाल की खाड़ी से मिलता है, और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ ऊर्जा है। वो ऊर्जा है, ये जितने तीन जो घटनाएं हैं, एक तो पानी गिरना है, दूसरी चीज है वज्रपात होना, अंधड़ चलना,
1: जी
0: और चौथी जो घटना होती है वो है ओलावृष्टि। तो
1: जी
0: ये चारों घटनाएं हैं यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलता है।
1: जी सर, जैसे सर ग्रीष्म लहर किस माह में ज्यादा होता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं?
0: देखिए, सबसे अधिक जो तापमान है
1: जी
0: वो है मई के महीने में होता है। तो ये मई के महीने में तभी परिस्थिति है वो बनता है जब यहाँ पर वर्षा की स्थिति कम हो। दूसरी चीज है कि यदि नमी ना रहे तभी ये घटना नहीं, ये घटना है ज्यादातर गर्मी हो बढ़ता है। अब गर्मी बढ़ने के लिए मुख्य जो फैक्टर रहता है ये है उत्तर पश्चिम से हवाएं आना चाहिए।
1: जी
0: दूसरी चीज है कि ये यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति रहना चाहिए जिसके कारण से जो धरती का जो गर्मी है वो ऊपर जाने से रुक जाए। तो ये जो रुकने के रुक जाए तो उस परिस्थिति पर यहाँ पर जो गर्म हवा है
1: जी
0: या जो हम विकिरण है जो अर्थ से निकल रहा है वो विकिरण है ट्रैप हो जाए, तो उस कंडीशन पर ग्रीष्म लहर या फिर बहुत अधिक तापमान की घटना है वो देखने को मिलता है। तो यदि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में देखें तो मई के महीने में सबसे ज्यादा होता है
1: जी।
0: दक्षिण में प्रायः दक्षिण मतलब बस्तर संभाग है चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ की ऊंचाई ज्यादा है इसलिए कभी कभार ही एक आध दिन के लिए ही ग्रीष्म लहर की स्थिति रहता है। और जो सरगुजा संभाग है जो भी पहाड़ी का क्षेत्र है चूंकि मानसून है वहां लेट से पहुंचता है इसलिए वहां पर प्रायः मई के अंत या जून के महीने में सबसे ज्यादा ग्रीष्म लहर की स्थिति है वो देखने को मिलता है।
1: और मैदानी इलाकों में भी ज्यादा देखने को मिलती होगी
0: चूंकि जो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है जिसमें कि दुर्ग संभाग है बिलासपुर संभाग है रायपुर संभाग है इसमें जो गर्मी के सीजन में है सबसे ज्यादा गर्मी देखने को ही मिलता है चूंकि वहां की ऊंचाई भी कम है
1: जी।
0: तो जो फैक्टर चाहिए तापमान को बढ़ने के लिए उसके लिए अनुकूल रहता है इसलिए ये जो तीनों है संभाग है इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी सर आपने। हमारे किसानों के हितों को लेकर हमने बहुत सारे प्रश्न किए और सबसे अंतिम में मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा सर। जैसे कि औद्योगिकरण बहुत हो रहा है और आधुनिकीकरण भी बहुत हो रहा है लेकिन अभी कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं सर जहाँ पे सुविधाएं नहीं है जैसे सूचना तंत्र नहीं है कहीं पे विकसित नहीं हुआ है गाँव तो उस जगह में ऐसे सावधानियाँ चीज नहीं पहुँच पाती उन लोग को ज्ञान नहीं हो पाता कि उन लोग मौसम में कैसे बचें उनको ऐसे कुछ उपाय बताइए सर जो मौसम को जानकर महसूस कर सकें कि आगे कुछ घटना घटने वाला है तो उससे कैसे बचे सर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी।
0: देखिए अभी फिलहाल चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है
1: जी
0: वो काफी विकसित तो किया गया है जिसमें कि मुख्य रूप से जो प्रयास किया जाता है कि हम मौसम केंद्र में वहां पर एक चेतावनी है वो जारी करते हैं। चेतावनी दो टाइप का रहता है कि एक तो हम 24 घंटे के लिए जारी करते हैं दूसरा है 3 घंटे में भी हो सकता है वो 1 घंटे में भी हो सकता है जहां भी परिस्थितियां हैं कि इस जिले में या इन शहरों में घटना हो सकती है तो उसको चेतावनी को तुरंत ही वो जारी किया जाता है। उसके लिए सबसे हम लोग जो उपयोग करते हैं वो सचेत करके है तो सचेत में हम लोग डाल देते हैं उसको उस वार्निंग को स्टेट गवर्नमेंट है उसको फॉरवर्ड करता है जिसको एसडीएमए बोलते हैं राहत आयुक्त के द्वारा संचालित होता है
1: जी।
0: वो जैसे ही प्रसारित करते हैं तो जहां जिस क्षेत्र में जो घटना होने की है
1: जी।
0: तो वहां के समस्त मोबाइल टावर में कार्यरत सभी मोबाइल में वो चेतावनी है वो जाता है। तो ये तो हो गया सीधा पहुंच जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां के लिए दिक्कत ही है बाकी जगह के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है
1: जी।
0: दूसरी चीज है कि यदि किसी आदमी के पास है स्मार्टफोन है या जो भी है एंड्रॉइड फोन है तो उस कंडीशन पर एक जो वज्रपात से सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में अकस्मात मृत्यु को देखा गया है तो इसमें जो है एक ऐप आता है
1: अच्छा
0: दामिनी करके ऐप है इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको स्थान का रजिस्टर करवाना है रजिस्टर करवाने के बाद में जैसे ही आप चालू करेंगे
1: जी।
0: तो वहां पर दिखाता है कि आपके चारों तरफ
1: जी।
0: 20 से 40 किलोमीटर तक में कहां कहां पर लाइटनिंग यानी कि बिजली चमक रहा है या गर्जन वाले मेघ बने हुए हैं जहां पर कि एक्टिव थंडर स्टार में चालू है तो वो दिखाता है। तो मतलब मुख्य रूप से मेरा कहने का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में न जाए जिस क्षेत्र में एक्टिव जो क्लाउड है जहां पर थंडर हो रहा है उधर हो रहा हो
1: जी, जी।
0: उससे बच करके रहें। एक तो उससे 3-4 घटनाएं होती हैं नंबर 1 है वज्रपात होने की नंबर 2 है अंधड़ चलने की नंबर 3 है
1: जी।
0: बहुत तेज बारिश हो सकता है या अंधड़ चल सकता है तो
1: जी, जी।
0: ये कभी कभी इससे ओलावृष्टि है चूंकि ये सीजन है ओलावृष्टि का है तो ओलावृष्टि भी होता है और कभी कभी ओला की साइज है काफी बड़ा हो जाता है तो आदमी भी घायल हो जाता है या फिर पशु पक्षी वो घायल हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो दामिनी ऐप है जिसको डाउनलोड करके सावधानी बरत सकते हैं।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस प्रोग्राम में समय देने के लिए। ऐसे ही कभी आपसे फिर से मुलाकात होगी सर तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी को धन्यवाद।
2: हड़मा
3: हाँ दादा
2: नक्कने लमाटा के पोइस मंजवास मत रही और माटा कुन ना मोड़ा थे माटा बिन मत्ता बात कुटो पाटा बिन मत्ता
3: आओ
2: पंड पाठा ना।

non leve ale. Poi spara chi le non leve.

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। कार्यक्रम डांडा माली में आइए सुनते हैं कोया और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

कार्यक्रम डांडा माली में अभी आप सुन रहे थे कोया और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पिलामन काजे गोट। प्रस्तुति होगी शंभुनाथ नाग की।

पीलामन चो गोट कार्यक्रम सुनतोर सफाय नानी बड़े पीलामन के मचो बाटले खुबे खुबे मया और चुमा। पीलामन आजी तुमी पीला आसास मांतर काली बड़े बाड़ा से और बड़े बड़े नगत नगत काम मन के करा से। तुम चो कर लो काम संगे तुम चो बले नाव होय दे और परिवार समाज देश चो बले नाव होय दे। नाव कमा तो काजे सुंदर सुंदर ज्ञान के सीखू पड़े से और दिन राती खुबे मेहनत मसागत करुन पड़ू पड़े से तेबे तुम्ही आप लो जीवन के सफल बनाऊ सका से। या आजी मैं तुमके असने इतिहास ने नाव कमालोर महापुरुष जो जीवन चरित्र के सांगेंदे ये महापुरुषात गुरु गोविंद सिंह जो आपलो देश और धर्म का जे जीवन भर लड़ला और आपलो पूरा परिवार के बलिदान करला। इतिहास कितले वीर योद्धा मंचो कहनी ले भरली से ये इतिहास के भय हमके दुख हमराय से तो के भय सुख दाय से और के भय महापुरुष दिली से। असने महापुरुष ने गोटक महापुरुष होला दसमेश गुरु गोविंद सिंह जोन सिख धर्म चो धर्म गुरु बले होला जे मंचो गोटोक हाथ ने तलवार तो गोटोक हाथ ने कलम रहे। ये मन साधु बले रहत और सिपाही बले रहत कमजोर लोग मंचो ढाल रहत और दुष्ट मन काजे काल रहत। आजी हमी तुमके असन संत सिपाही चो कहनी के सांगू से जे मन देश धर्म काजे आप लो पूरा वंश चो बलिदान देउन दिला। 22 दिसंबर सन 1662 ईस्वी के गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी चो घरे गुरु गोविंद सिंह जन्म धरला। गुरु गोविंद सिंह पीला बेरा चो 4 बरख पटना साहिब ने बिताला। ये बेरा हुनमन चो पिता असम ने धर्म प्रचार चो काम ने लगुन रहत। जेबे एमन चो पिता बोहोड़ला तेबे सन 1670 ने गुरु गोविंद सिंह आपलो माय बाप संगे पंजाब चो आनंदपुर साहिब नाव चो ठान ने अमरला। ये ठान ने 6 बरख ले गुरु गोविंद सिंह चो शिक्षा मूर होली। ये मन संस्कृत चो ज्ञानी बनला फारसी हुनमन चो कलम ने इली गुरुमुखी गुरु चो टोन ने चेगली तलवार ले गुरु चो चिन्हा होली। ऐ समय गुरु गोविंद चो पिता गुरु तेग बहादुर लगे कश्मीर चो पंडित मन भेंट होला और हुनमन के शरण पड़ला कि कश्मीर ने गाय गुरु और पंडित मन के मार सोत हिंदू मन उपरे कई प्रकार चो अत्याचार कर सोत। नवाब मन चो फरमान आए कि तुम चो धर्म ने कोनी असन महापुरुष के अनुनुभावा जोन हम चो तलवार चो पूरे इस्लाम धर्म के नी अपना तोर हिम्मत दिखाओ तो हमी कश्मीर चो हिंदू लोग मन के मुसलमान नी बनाऊ दे। ये गोट के सुनुन कश्मीर चो हिंदू और गाय गुरु मन चो रख्या काजे गुरु तेग बहादुर कश्मीर जाऊन नवाब मन चो तलवार चो पूरे उभुन इस्लाम धर्म के नी अपना तोर हिम्मत दिखाऊन शहीद हौन गेला। 29 मार्च सन 1676 ईस्वी बैशाखी चो दिन रहे ये दिन गुरु गोविंद सिंह के पंथ चो दसवां गुरु बनाला। गोविंद सिंह गुरु बनतो संगे तलवार के धारण करला हुनमन चो दखालो बाट अनुसार कई हजार सिख मन तलवार धरला। आनंद धाम तलवार चो खनक ले गरजली अप्रैल 1685 ने आनंदपुर राजा चो लागुन गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर छांडुन जाऊ पड़ली। गुरुजी आपलो दल संगे नाहक नाव चो ठान ने अमरला। पूरे चो 3 बरख तक गुरुजी ऐठान ने रला ऐठान ने गुरु गोविंद सिंह चो भेंट घाट मुगल मन चो सतालोर कई राजा मन संगे होली। ये सफाय राजा मन गुरु गोविंद सिंह चो संगवारी होला। गुरुजी सफाय बिखरलोर राज्य मन के एका करला और बल्ला कि तुम्ही सफाय चो शत्रु गोटकी आए तो तुमन मन भिने भिने काय काजी आसास दुश्मन चो हमला करतो के नीटा का और तुम्ही सफाय मिसुन मुगल सेना चो ऊपरे आक्रमण करुन दिया। गुरुजी चो आदेश पाऊन मित्र राजा मन
मुगल सेना चो ऊपरे आक्रमण करुन दिला। कई हजार सरदार मन बले ये युद्ध ने शामिल होला। सन 1687 ईस्वी ने नादोन चो लड़ाई होली। गुरुजी चो अगुवाई ने 12 राजा चो सेना मिसुन अलीफ खान चो सेना के हराला और आलीपाली चो सफाए ठान मन के मुगल सेना ले आजाद कराला। व्यास नदी चो रेटे गुरुजी आपलो बड़े सेना संगे 8 दिन तक थेबुन रहत। सन 1688 ने आनंदपुर चो रानी गुरुजी के फेर आनंदपुर एतोर गुहार कर ली। तेबे गुरु गोविंद सिंह आपलो सेना संगे आनंदपुर ईला। एतोर 20 बरक तक गुरुजी आनंदपुर ने रला। ये 20 बरक ने गुरुजी मन खंडिक बले आराम नी करला। पार्ले युद्ध कला के और नगट ढंग ले सीखला और आपलो भगत मन के बले योद्धा बनाला। कमजोर लोग के बल मिरली, निहत्ता लोग चो हिम्मत जागली। आपलो धर्म के कोनी बले परिस्थिति ने नी छांडून आपलो शत्रु संगे लड़ू सिखाला। गुरुजी मन चो सेना तैयार करतोर खबर मुगल राजा औरंगजेब लगे अमरली। औरंगजेब ये समय भारत चो दक्षिण क्षेत्र ने मराठा मन संगे युद्ध करते रहे। औरंगजेब गोटोक आदेश जारी करालो कि सिख मन के आनंदपुर ने जमा होक नी दिया बलून। एचे संगे पहाड़ी इलाका चो राजा मन बले गुरु के खतरा मानला। ऐ भीतरे लाहौर चो मुगल सेनापति दिलावर खान आपलो बेटा हुसैन खान संगे बड़े भारी मुगल सेना के आनंदपुर पठालो। मुगल सेना और पहाड़ी राजा मंचो सेना मिसुन भांति आनंदपुर ने आक्रमण करुन दिला। आनंदपुर के चारी कुतिले घेराबंदी करला। मांतर अदाय आनंदपुर चो सफाए लोग मंचो हाते तलवार रहे। मुगल आक्रमण चो जवाब देते आनंदपुर चो सफाए वीर मन मुगल सेना संगे लड़ला। ये युद्ध ने मुगल सेना के हराउन मुगल सेनापति हुसैन खान के मारुन दिला। अदाय गुरु गोविंद सिंह गुलाय पंजाब ने भिने भिने रतोर सिख मन के एका करतोर वाट बनाला। गोट की झंडा, गोट की दल, गोट की चीना सिख मंचो बरसक सेना रहो। खालसा पंथ चो नाव ले दुश्मन थरथराओ। सन 1699 बैसाखी चो नगद दिन रहे गुरु गोविंद सिंह पूरा पंजाब ने सिख मंचो महासभा चो ऐलान कराला। एक आदेश ने सिख मंचो बड़े भारी सेना गुरुजी चो चरण ने हाजिर होला। ऐ दिन खालसा सेना के बनाला। गुरु गोविंद सिंह पहला खालसा सेनापति बनला। केस, कंगा, कड़ा कृपाण और कछेरा सिंह मंचो चीना बनली। तलवार चो खनक चो मंजी 80,000 सेना चो पूरे गुरुजी गर्जुन बनला। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। तिलक और जनेऊ चो रक्षा ने हुन समय सिख मंचो तलवार हर हमेशा खुला रहते रहे। औरंगजेब चो लाख कोशिश चो बाद बले गुरु गोविंद सिंह मुगल शासन चो गुलामी के स्वीकार नी करते रहत। तीन हार आनंदपुर चो घेराबंदी करला। मांतर मुगल सेना गुरुजी मन के धरतो ने असफल रहत। मई सन 1704 ने मुगल मन 1,000,000 चो बड़े भारी सेना के जुहाउन 6 महीना तक आनंदपुर चो घेराबंदी करला। मुगल मन असन विचार करला कि 6 महीना तक आनंदपुर चो राशन पानी सरे दे तो गुरु गोविंद सिंह प्रजाहित काजे हम चो शरण ने आए दे। मांतर गुरु महाराज एक दिन राति बेरा आपलो सेना संगे आनंदपुर के छांडून निसकला। जेबे मुगल मन के ये गोट जान पड़ली तो हुनमन गुरु महाराज चो पीछा करला। ये उथल पुथल ने गुरु महाराज चो परिवार बिछड़ून गेला। गुरु महाराज चो दुई झन बेटा और हुनमन चो माए पीछे छुटून गेला। कई हजार सिख मुगल सेना संगे लड़ते लड़ते वीरगति पावला। गुरु महाराज संगे अदाय सिर्फ
40 सिख सैनिक बाचला जोन आगे बढ़ते चमकोर नगर ने अमरला। ये नगर ने गुरुजी डेंग बीती हवेली ने सेना के तैयार करला और गुरु महाराज स्वयं हवेली चो ऊपरे झंडा चो पूरे उभुन मुगल सेना संगे जुथ करला। मात्र 40 सिख सेना चो मुकाबला 10 लाख मुगल सेना संगे होतो रहे। बिहाने होते खन मुगल सेना हवेली ने आक्रमण करला। ये युद्ध

बिहान ले संझ बेरा तक चल ली ये युद्ध ने 40 सिख संगे गुरु गोविंद सिंह चो दोनों बेटा मन बले शहीद होन गेला। मांतर सिख सेना गुरुजी के सुरक्षित ठान ने अमराउन दिला। ये बाटे गुरु महाराज ले बिछड़लोर दोनों नानी बेटा मन जोरावर सिंह और फतेह सिंह के मुगल राजा औरंगजेब धरुन भाती जीवत जीवत भीतीचो भित्रे गाड़ून दिला। जोन थाने दोनों सपूत मन शहीद होला। अंत समय ने गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ गांव जाऊन दिव्य ज्योति ने समाला। सफाए सिख लोग के गुरु ग्रंथ साहिब के आप लोग गुरु मानुन साहिब के आप लोग गुरु मानुक बल्ला और ऐ ग्रंथ चो नियम अनुसार सिख धर्म के चलाऊ बल्ला। तेबेले सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र ग्रंथ मानुन एचे अनुसार चल सोत। तो पिलामन गुरु गोविंद सिंह चो इतिहास ले हम के ये सिख्या मेरे से कि कसन गुरु गोविंद सिंह आप लो वंश चो पूरा जीवन देश और धर्म के बचातो काजे लगाउन दिला। गुरु गोविंद सिंह आप लो संगे आप लो चारों बेटा आप लो मेहरार सब चो बलिदान करुन दिला। ए मंचो इतिहास ले हम के बले सीख तो राय। हम चो बस्तर माटी छत्तीसगढ़ और भारत माटी चो रख्या काजे आप लो जीवन के बले देव पड़ो तो पाटकुती नी गुश तो राय और भारत माए चो मान के शान के बचा तो राय। तो पिलामन कितलो नगद गुरु गोविंद सिंह चो इतिहास तुमन मंच मंजी अमराले अदाए मचो जातो बेरा होली तो मके दियावे विदा। तो जातो पूरे जमाए नानी बड़े पिलामन के मचो बाटले खुबे खुबे मया और

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन का जे गोट, प्रस्तुति थी शंभुनाथ नाग की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या एवं न्यूज 8:09 क्रमशः अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार

0: सरकार का संकल्प और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे

0: कान में न रहे।
1: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरी

0: सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
0: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
2: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
2: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ।

छत्तीसगढ़ रुख खुट लहरा पानी धकतुका जे सुंदर ठान एथा चो गीत एथा चो नाचा एथा चो शिल्प कला देश दुनिया ने जहाला होली से आदिवासी हल्का चो संस्कृति सभ्यता रीति नीति चो गुटुक अलग पहचान आसे। यही रीति नीति संस्कृति लोक कला परंपरा के बचाउन संगातो काजे सहजोन संगातो काजे एतो पीढ़ी तक जस चो तस अमरातो काजे देश दुनिया के छत्तीसगढ़ चो पुरखती चीन आवाना के अमरातो काजे छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध नियम ने संशोधन नियम 2022 बन ले आरु ए नियम हिसाब ने संस्कृति विरासत आरु परंपरा हिसाब ने व्यवस्था कर तो काजे बले ग्राम पंचायत ग्राम सभा के हक मिल ले। एचोले आमच लोकगीत लोकनाचा स्थानीय भाषा पुरखती ठसा कहनी साहित्य शिल्प कला के आमी नगत सहजोन संगाउक सकवा।

यही नियम हिसाब ने जनजाति संस्कृति ताना बाना धर्म चो रीति रिवाज पुरखत इतिहास लोक परंपरा स्थानीय भाषा शिल्प कला पुरखती बाजा मोहरी पुरखती खाजा चरवन देवगुड़ी संस्कृति के बचाउन संगातो नगत संगातो एतो पीढ़ी तक जस चो तस अमरातो आमचो ए रीति नीति के बरसक बनातो देश दुनिया के आमचो बरसक संस्कृति के दखातो काजे भले आम के हक मिरली से एचो काजे आमचो छत्तीसगढ़ चो आदिवासी समाज जनजाति लोग अदाय सरलगा काम भले करुक मुरियाला ए भीतरे धुरवा समाज मुरिया समाज हलवा समाज कोया समाज मुंडा समाज भत्रा समाज और कितरो समाज आपलो पुरखती रीति नीति के जस चो तस संगातो काजे आपलो गांव आपलो पंचायत आपलो जिला और छत्तीसगढ़ राज ने सरलगा काम करून ये रीति नीति के बचाउन संगातो उवाट करसो।

पंचायती राजने ये हक मिरतो लागून अदाय आमचो गंवर सिंगनाचा धुरवानाचा परबनाचा गुणदिनाचा डंडारीनाचा लेजा गीत खेल गीत मारी रसोना जगार गीत सुआ गीत बिया गीत जन्म गीत मरने गीत मुरित कला बांस कला आमचो भाषा बोली ठसा कहका पुरखती सिंगार बांगार अरु कितरो बाने के नगत जसंचो उसन बचाओ सकवा जमाए के बचाउन संघातो काजे सामाजिक संस्था के बले हक मेरले से सरकारी स्कूल मनने बले असन पुरखती काम के बचाउन संघातो काजे ग्राम सभा बलुक सके प्राइवेट स्कूल ने बले असन रीति नीति संस्कृति चो ज्ञान के सांग तो काजे ग्राम सभा बलुक सके असन पुरखती रीति नीति के जना तो काजे बचाउन संघातो काजे समाज बाटले चला तो संस्था मन के बले ग्राम सभा बलुक सके ग्राम सभा के आपलो भाषा बोली के बचाउन संगातो काजे हक मिरले से छत्तीसगढ़ चो हल्बी गोंडी कुड़क सादरी बिरहोर कमार भतरी दोरला बैगा धुरवा बोली के बचातो काजे बले ग्राम सभा के हक मिरले से ये बोली मन के बचातो प्राइमरी आरु मिडिल स्कूल ने त्रिभाषा बले तीन भाषा हिंदी अंग्रेजी आरु गोटोक स्थानीय बोली ने पढ़ा तो वाड़ बले सरकार करे से एके आगे बढ़ा तो काजे ग्राम सभा बले उवाट करुक सके।

आमच्यो रीतिनीती संस्कृती बोली भाषा शिल्प कला फुरकते गीत गोविंद के बचातो हक तो ग्राम सभा के मिरली से इतरेची नहीं आमचो जैव विविधता बल्ले खान पान रहन सहन के बचातो वार्ड बले प्राकृतिक संसाधन चो संरक्षण हक बले ग्राम सभा ग्राम पंचायत लगे आसे। ए भीतरे पंचायत चो ग्राम सभा पारंपरिक ज्ञान जैव विविधता सरलगा खान पान पोषण काजे काम ने आंतु जिनिस मन के बचातो काजे जुगे बनातो काजे नफा धरतो काजे वार्ड बनाओ सके। सरते जातो चढ़े चिंवर रांच जियात रुख खूट जड़ी बूटी के बचाउन संगातो काजे बले ग्राम सभा ग्राम पंचायत के हक मेरली से। जे विविधता हक भीतरे पशुधन रुख खूट नानी जीव आमचो पुरखती झोड़ी पुरखती तरे मुंडा के बचाउन संगातो हक बले आमचो ग्राम पंचायत ग्राम सभा लगे आसे। आमचो छत्तीसगढ़ चो अमुस्तियार नुआ तिहार दियारी तिहार दशहरा देव मंडई अरु कितरो तिहार भार चो बले अलग मान आसे। ए मन के बले बचाउन संगातो काजे आमचो पंचायत आमचो ग्राम सभा के बेरा पस्ता उवाट करते रतोराय। ए बले आमचो काम आरु हक आए।

ग्राम सभा ने असन वाट मन कर ले अमचु ज्ञान चु मुंडरा सुख शुभाती फूलवाड़ी असन महकुन जाए दे ये जमाए काम कर तो काजे जरूरी हुए से आमचू गाँव चो आमचू पंचायत चो।

ग्राम सभा जोन गांव च लोग पंचायत और ग्राम सभा चो गुण के जानो हुन मन के बले ग्राम सभा चो बैठक ने जाऊन नुआ काम और हक के जानतो राय। जे लोग ग्राम सभा बैठक के मेरलो हक के नहीं जानो हुन मन ग्राम सभा नहीं जाओ चले हुन मन समझो आपरो पाए ने अपनी टंगिया मारी होसो। आपलो हक के जाना पंचायती राज चो नियम के माना तेबी आमी आपलो काजे और आमचो एतो पीढ़ी काजे आपलो पारा ने आपलो गांव ने आमचो पंचायत ने उन्नति बाढ़ती चो नुआ नुआ बाढ़ बनाउ सकवा। गांव कारी चो बाढ़ती काजे मनुक पिला चो बाढ़ती काजे नारी जाति चो भलाई काजे एतो पीढ़ी लगे पुरखा लोग चो जस बाड़ो ये जमाए गोट के विचार करुन आमके आमचो पंचायत ने आमचो ग्राम सभा ने काम करतो राय। संविधान ने 73वां संविधान संशोधन होतो के गांव चो गोटक गोटक मतदाता बल्ले वोट भरतो लोग के मान मिरले से गरीबी रेखा चो लोग चो जीवना के ऊपरे आंतो काजे आम के खुबे हक काम करत उवाट आमचो पुरखती मानता के बचत उवाट ये जमाए आमचो काजे खुबे बड़े गोठ है। आमी आम के मेरलो हक के जानू गांव चो बाढ़ती सब चो बाढ़ती ये गोट के मानू और हरेक ने नाचुन गाउन गांव ने आमी रहूं। तो फिर एदाए जानू तो ग्राम सभा के आमचो हरेक उदिम काजे काय काय हक आसे।

जमा एक सुनलास नफा धरा आज गांव पारा चु बाड़ती काजे बनली पंचायती राज आज चु गुट एता थे बाऊ धरे से मोचो बाट नुआ भाग संगे फेर होयेंदे तुम चु संगे भेट घाट सेवा जुहार।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। वार्ताकार थे बलबीर सिंह कच्छ। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। घुमकली कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं नंदोराम भारती और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत का।

বেটা আঁকিনে না দকে।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ধনেশ্বর।

0: पतरे महिमा गोसाई
1: चका पतरे महिमा गोसाई
0: चका पतरे महिमा गोसाई
1: ढेंकानाल जिला कपिलासरे।

0: हे प्रभु आपण निजे भगवान एले हात ना दिया प्रभु आमे भगवान पाद दियो प्रभु से समय महिमा गोसाई हात के चाड़ी गोड़ लमायला भीतरे भीम बोई
1: महिमा
0: गोसाई चरण दर।

देखिला प्रभुंकर लीला जगन्नाथ रूपे गोविंद बाबा निजे महिमा गोचाइया नरसिंह बाबा को आदेश देले आड़ बंद पोखरी आकपनी धारी समस्त को बखल बना दियो बोली मन श्रद्धारे।

घुमकली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नंदोराम भारती और साथियों के स्वर में भत्री लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आदेश श्रीवास्तव के स्वर से और गीत रचना है श्यामराज की। आइए सुनते हैं यह गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आइए अब सुनते हैं समीर का लिखा और अदनान सामी का गाया गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं अजय पोहनकर का गाया गीत। गीत रचना है सुशीला पोहनकर की और संगीत से सजाया है अभिजीत पोहनकर ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है, जिसके गीतकार हैं इसरार अंसारी, जिस पर संगीत एवं स्वर दिया है अनूप जलोटा ने।

इसी के साथ गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार है मनोज मुंतशिर शुक्ला और संगीतकार है अजय अतुल। फिल्म का नाम है आदि पुरुष।

अगला गीत है फिल्म एनिमल से, आवाजें हैं अरिजीत सिंह की, गीत रचना है सिद्धार्थ गरिमा की और संगीतकार हैं श्रेयस पुराणिक।

आइए अब सुनते हैं बड़े मियां छोटे मियां फिल्म का गीत विशाल शर्मा की आवाजों में। बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन तैयार की है विशाल मिश्रा ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन के युगल स्वर में। गीत रचना है सईद कादरी की और संगीतबद्ध किया है अनुराग ने।

आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर 2 का गीत सोनू निगम एवं पलक मुचाल की आवाज में। बोल मनोज मुंतासिर के थे, संगीत से सजाया था मिथुन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है नीति मोहन, विशाल मिश्रा, सहनाज अख्तर, साहिल अख्तर और मिथुन की युगल स्वरों में। गीत रचना है सईद कादरी की और संगीतबद्ध किया है अनुराग ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है खान साहब एवं सांसद सचदेवा की आवाजों में फिल्म धुरंधर द रिवेंज से नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत है जिस पर तर्ज बनाई है सांसद सचदेवा ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। समाचार क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और

से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।